0: दिव्य दर्शन के इस पवित्र प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। हम लोग इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं अपने को समझने की, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म को समझने की, अपनी जिंदगी को जीने के एक अंदाज को समझने की। कुछ लोगों ने इसको बहुत गहराई से समझा, किस तरीके से हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, तो हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं चैती मैम। बाकी जाहिर से बात है, जैसा हमेशा हमारे प्रोग्राम्स का सिग्नेचर रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे मेहमान आपसे खुद ही बात करें, सम्मुख आएं। तो चैती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए, वेलकम करते हुए मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे जितने भी सुबह सुनने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं आज इस दिव्य दर्शन प्रोग्राम को सुनने के लिए, उनको थोड़ा बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं मैम?
1: जी, मेरा नाम चैती है, मैं नोएडा रहती हूँ और मैं करीबन समझ लीजिए 60 इयर्स के करीब हूँ मैं, और मेरा काम बेसिकली पढ़ाई है
0: जी।
1: टीचिंग है, पढ़ाना है, खुद पढ़ना है, कभी थोड़ी सी ज्योतिष का चर्चा कर लेती हूँ, और लाजी मेरा काम है साहित्य का, मतलब स्पिरिचुअल टेक्स्ट पे मैं पढ़ती रहती हूँ, मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत खूब, तो हमें जाहिर से बात है कुछ गहराई मिलने वाली है इस कंटेंट के बारे में दोस्तों। मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनली मानना ही है कि हम ऊपर से यानी कि ब्रह्मांड से बहुत कुछ सीख कर आते हैं, लेकिन जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, जो ग्रंथ होते हैं, फिर वो चाहे धार्मिक हों, चाहे समाज को समझने वाले कुछ लोगों ने लिखे हुए हों, उनको समझकर हमारी समझ और बढ़ती ही है। चैती मैम उस चीज में ठीक से पारंगत हैं, डूबी हुई हैं, लगातार अध्ययन कर रही हैं। तो चैती मैम, चलिए हमारी मदद कीजिए समझने में कि हम अपना जीवन इस धरती के ऊपर, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा, मतलब कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पर्शिया कुछ नहीं, नथिंग, हम इस दुनिया में अपनी जिंदगी को जीते हैं, तो कुछ नियम कानून या कह लीजिए बाउंड्रीज हमारे समाज हमको दे देता है कि देखो ऐसे जीना तो आपका जीवन सुखी रहेगा, उसको हम आध्यात्म कह देते हैं या शायद धर्म कह देते हैं। तो आपके हिसाब से जितना भी जानकारी आपके पास है, जितना भी आपने इन चीजों को समझा है, हमें आध्यात्म और धर्म के बीच का अंतर बताइए ना मैम।
1: धर्म है रहने का तरीका, धर्म किसी विशेष एक संस्था का नाम नहीं हो सकता। धर्म मतलब जो हमारे ऊपर ड्यूटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें दिए गए हैं, चाहे वो शास्त्रों के द्वारा हो, चाहे वो समाज के द्वारा हो, जिस भी स्थिति में हम हैं, अगर मेरी उम्र मान लीजिए 10 वर्ष की है, 25 वर्ष की है, इस दौरान हमको पढ़ाई करने में, मतलब हर एक तरह के लोग पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो युवावस्था है या बचपन है, जो ब्रह्मचर्य अवस्था है। ब्रह्मचर्य अवस्था में हम कोशिश करते हैं ग्रंथों को पढ़ने की या समझने की, कैसे जीते हैं, उसको धर्म कहते हैं, जीने का तरीका। और अध्यात्म है उसको अपने में आत्मसात करके उसको एग्जाम्प्लीफाई करना। हमने पढ़ने की कोशिश तो करी है, मेनू हमने देख लिया है, लेकिन चखा नहीं है, चखने की क्रिया को अध्यात्म कहते हैं।
0: भाई वाह, क्या बात है, बिल्कुल ही साधारण भाषा में आपने हमें समझाया है कि धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है, बिल्कुल ठीक है। ये फर्क आज हमें थोड़ा सा और क्लियर होने के बाद और साफ होने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे मैम कि आध्यात्म की प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास उसका हम कैसे करें और धर्म का अभ्यास कैसे करें, थोड़ा का दोनों को थोड़ा सा अलग अलग बताइए ना, 1 2 3 4 कुछ ऐसे नियम जो हमें आसानी से समझ में आ जाए और हम आसानी से अपना सकें।
1: देखिए, धर्म के जो 1 2 3 4 नियम होते हैं वो हमारे बड़ों से बूढ़ों से पता चल जाती हैं। जैसे कहते हैं सत्य बोलो, जैसे कहते हैं मेहमान आते हैं उनका स्वागत करो, जैसे कहते हैं झूठ मत बोलो, जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उनको धर्म के रास्ते में माना जाता है। हम अक्सर इसी को मानते हैं धर्म, कि चोरी नहीं करो, सत्य कहो, किसी और के धन को अपना धर्म धन मत कहो, फिर जो साफ सफाई है

0: जो शरीर की सफाई है, जो मन की सफाई है, उन सबको धर्म में मानते हैं। और अध्यात्म वो हो गया उसको प्रैक्टिस करने का तरीका। प्रैक्टिस कैसे करते हैं? अपने मन के सफाई से, अपने मन की सच्चाई से, जब हम जीवन की क्रिया को स्वतः ले लेते हैं, उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करते, जो जैसा आता है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन मन के सफाई, मन के सच्चाई के ऊपर खास ध्यान देते हैं, मन में शांति रहे, और उस शांति से ही हम जीवन में बर्ताव करते हैं, सबके साथ हम यूनिफॉर्म बर्ताव करते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर नीचे का फर्क नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और उसकी जरूरत भी है। टोपी को टोपी की जगह रहते हैं, जूते को जूते की जगह लगाते हैं, उन सब की इम्पोर्टेंस को हम बरकरार रखते हुए हमारी अपनी जिंदगी और साथ में सामने वालों के, हम अपने साथ सबको लेके, अकेले चलने चलने का मतलब धर्म नहीं होता, सबको साथ लेके चलने का मतलब धर्म होता है, लेकिन उसमें अपनी प्योरिटी, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें क्लैरिटी लाना, वो अध्यात्म है।
1: बहुत खूब, बहुत बहुत प्यारी बात, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिससे हम अध्यात्म को और धर्म को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। चैताली मैम, ठीक है, आपने तो इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स या स्क्रिप्चर्स या मतलब जो भी इन चीज़ों से रिलेटेड आपने काफ़ी सारा कंटेंट स्टडी किया है, फ़र्ज़ कीजिए आज आपसे बातचीत करके मेरा मन हो आए कि चलिए मैं भी थोड़ी सी स्टडी करता हूँ, कोई एक बुक पढ़ता हूँ, कोई एक, तो समझिए मैं बिल्कुल एलिमेंट्री क्लास में एक छोटा सा बच्चा हूँ जो अध्यात्म या धर्म या इस पूरी विधा को सीखना चाहता हूं, तो मुझे कुछ किताब या कोई ग्रंथ या कोई चीज सजेस्ट कीजिए ना।
0: सबसे पहले तो जो संत हमारे देश में हुए हैं ना, और केवल हमारे ही देश में नहीं, विश्व ब्रह्मांड में जो भी संत हुए हैं, उनकी जीवनी को पढ़ें, क्योंकि वही हमारे रास्ते में बन, जो हमारे रास्ते बने हैं वही हमारे मार्ग प्रदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक वही है। उनके जीवनी को पढ़े, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो मोहम्मद जी हो, या चाहे वो अपने ही हिंदू धर्म के कोई भी संत हो, और हमारे हिंदू धर्म के तो संत या किसी भी धर्म के संत हर गली, हर मोहल्ले में, हर प्रांत में मिल जाते हैं, हर भाषा में मिल जाते हैं। उनको अगर हम सही ढंग से पढ़ के केवल उन्हीं की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे हम स्वामी विवेकानंद को ले लें, चाहे हम गुरु नानक को ले लें, संत ज्ञानेश्वर को ले लें, या लालदेव को देख लें, किसी भी प्रांत से उनको देख लें, उनसे शुरुआत करें, तो पता चलता है उनकी जीवनी कैसी रही होगी। उनके हिसाब से अगर हम जरा जरा सी बात को लेकर चलने की कोशिश करें, तो हम हमारे पथ की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। हम धीरे धीरे कदम चढ़ाते, छलांग नहीं मारनी होती, धीरे धीरे। तो यही तो मेरे समझ में, इन इन संतों की जीवनी को पढ़ के ही हम अपने लिए अपना मार्ग बना सकते हैं।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो जाहिर सी बात है, बहुत एलिमेंट्री लेवल पर अगर हम इस दिशा में बढ़ने की कोशिश करें, तो जैसे मैम ने कहा है कि बहुत ज्यादा मतलब गूढ़ ग्रंथों में घुसने की जरूरत नहीं है, ये जो प्रबुद्ध लोग हुए हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, गुरु हैं, जिन्होंने हमें रास्ते दिखाए हैं, उनकी जीवनी ही पढ़ लें, तो वहीं से हमें शुरुआत मिल जाएगी।
0: जी
1: बहुत बढ़िया बात कही। तो मैम चलिए आगे बढ़ते हुए, देखिए मैं बड़ा स्वार्थी किस्म का इंसान हूँ, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके आपने जितनी भी स्टडी करी, आपने जितनी भी पढ़ाई करी ना, उसका फायदा बस मुझे 5 मिनट में मिल जाए। आपने तो सालों साल लगा दिए, लेकिन फिर भी बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस 5 मिनट में मुझे मिल जाए। तो मेडिटेट करने का, ध्यान लगाने का, गुम हो जाने का, शून्य में चले जाने का, किसी भी व्यक्ति से घृणा ना करने का, गुस्सा ना करने का, सिंपल से तरीके बताइए ना मैम। तो मुझे लगता है मेडिटेशन करें तो चलो जी माला फेर लेता हूं आंखें बंद करके, तो शायद कुछ शांति मिल जाएगी, तो ये कितना सच है मैम, और कोई रास्ता बताइए ना।
0: जी ऐसा है, मेडिटेशन एक प्रक्रिया है।
1: जी
0: जैसे हम खाना बनाते हैं, तो खाना जो परोसा जाता है उसके पीछे एक प्रक्रिया है। हम सब्जी लेके आते हैं, उसको धोते हैं, उसको गैस पे चढ़ाते हैं, उसको पकने के लिए टाइम देते हैं। मैं घर आलू लेके और आलू की सब्जी बनाऊं तो एकदम से मैं उसको टेबल पे नहीं ला सकती, उसके लिए उसमें गर्मी देने की जरूरत होती है, उसको ताप से उसको पकाया जाता है, मसाले से उसपे वो जो लेयर बनता है वही तो फिर फाइनल डिश बन के आती है। उसी तरह से जब प्रिपरेशन करते उसके पहले कोई प्रिपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर हम सारे दिन में हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने माइंड को देखें, तो हम दुनियादारी में इतने फंसे पड़े हैं, किसके घर में क्या चल रहा है, और कहाँ हम थोड़ी सी ग्रीड कर लेते हैं, कभी हम झूठ बोल के अपने ही स्वार्थ के लिए काम कर लेते हैं इन चीजों में। फिर अगर हम इसी में उलझ के रह जाते हैं, उसके बाद लगता है हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो मेडिटेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। मेडिटेशन के पहले भी जैसे योगा करते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, हर प्रक्रिया के लिए जैसे एक सिस्टम बनता है, मेडिटेशन के लिए भी वैसे एक सिस्टम है। और वो सिस्टम क्या है, हम एटलीस्ट दिन में अगर हम 8 घंटे 10 घंटे हम जगे हुए हैं, 10-12 घंटे हम वेकिंग स्टेट में हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते रहें कैसी हमारे दिन की दिनचर्या है, क्या क्या काम करते हैं और उस काम के पीछे हमारा मकसद क्या है। जब उस मकसद को हम सब अच्छे से समझ लेते हैं, फिर शांत होके बैठते हैं और शांत होके उन चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। छिपाना नहीं, अपने आप को अपने ही मिरर में देखना है। मेडिटेशन तो वो हुआ ना, शून्य में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम शून्य में बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। शून्य में अपने आप के हम अपने आप तो रहते ही हैं, उस अपने आप की पहचान होती है उस शून्य में। जो हमारे सामने आईना है, उस आईने में हम अपने आप को देखते हैं बिल्कुल आंखों में आंखें मिला के, छिपा के नहीं, और वो जो सच्चाई नजर आती है वो है मेडिटेशन मेरे हिसाब से।
1: बहुत खूब मैम, थैंक यू सो मच। सिंपल सा मेथड है मेडिटेशन, लेकिन उसको समझ कर करना, तो जैसे मैम ने बताया ना, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से कि भाई आलू काट के हमने पकाने के लिए चढ़ाए, लेकिन इमीडिएटली उसको टेबल पर थोड़ी ला पाएंगे। सो वी गॉट टू बी रेडी, थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन करके तब करेंगे ना। अब मैंने सोचा माला हाथ में आ गए और फटाफट मैंने दाने घुमाने शुरू कर दिए और मैं शांत हो जाऊं, नो, इट डजंट हैपन लाइक दिस, नो इट डजंट। सो देयर इज अ प्रोसेस। बहुत खूब मैम, यहां पर हम लोग एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक प्यारा सा भजन सुन लेते हैं, और फिर मैं वापस आता हूँ आपके पास।

बहुत सुंदर मैम। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हमें थोड़ा सा और गाइड कीजिए मैम। देखिए जमाना ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं ना मैम, दिव्य दर्शन प्रोग्राम है, अपने को समझने का, धर्म को समझने का, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने का वगैरह वगैरह, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस जमाने में टुडे, जो कि मतलब डिजिटल इरा कहा जाता है। अब मतलब आउट ऑफ द प्लेस ना हो जाए हम लोग बाहर, मतलब ऐसा ना हो कि जी हम पता नहीं कौन से प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम रहे तो इंडिया में रहे हैं या इस धरती पे। तो इस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड को या डिजिटलाइजेशन को यूज करते हुए हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में, धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में और किस तरह से अवेयर हों, और फिर मेरा मानना

0: आपने जब अभी बात कही ना पॉज की एंड ब्रीथ की, तो डिजिटल मीडिया से ही रिलेटेड मेरे को एक दिमाग में आ रहा था। मैम ऐसा नहीं है कि इनोक्यूलेटेड हूँ और सोशल मीडिया वगैरह से बिल्कुल डिटैच हूँ, ऐसा नहीं है। आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग अ रील, तो उसमें एक जानवर दिखाया गया था, वेरी फनी, चेहरा, सिर्फ चेहरा और कोई डायलॉग नहीं, नथिंग, जीरो, बट दैट एनिमल वॉज एक्चुअली जस्ट लुकिंग एट यू, मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन, आपको वो उसमें टकटकी लगा के देख रहा था। एंड लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, अप्रोक्सीमेटली कह लीजिए 10-12 सेकंड, उसके बाद लास्ट में नीचे लिख कर आया जस्ट ब्रीद। आई केप्ट ऑन वॉचिंग दैट कि अभी कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, एंड नथिंग हैपेंड, और नीचे लिख के आया जस्ट ब्रीद। आई मीन आई रियली लव्ड इट कि जिसने भी इस चीज को बनाया उसने क्या सोचा, हाउ ब्यूटिफुली थॉट कि यार लोग सांस लेना ही भूल जाते हैं 30 सेकंड्स के इंतजार में, तो रिलैक्स, टेक अ पॉज, जस्ट ब्रीद।
1: एब्सोल्युटली, एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज मैं बहुत घूमती रहती हूँ, जो चीजें जो हम भूल गए हैं, किताबें पढ़ना, अपने दिमाग प्रॉपर इस्तेमाल करना। जो मान लीजिए 40 साल पहले की अगर बात करें, 50 साल पहले डिजिटलाइजेशन जब इतना नहीं था, तब लोग किताबें पढ़ते थे। वापस से अभी कई कंट्रीज में किताबों का दौर नए सिरे से चल पड़ा है कि किताबें पढ़ो और अपनी इमेजिनेशन को तैयार करो। डिजिटलाइजेशन बुरी बात नहीं है, उसी को डिजिटलाइज करें ना, उसी पे काम करें। वंडरफुल कि डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ में अपनी इमेजिनेशन को भी कहीं ना कहीं बरकरार रखते हुए आगे बढ़े। इट इज जस्ट नॉट माई सेल्फ,

0: थैंक यू सो मच मैम. तो दिमाग में मेरे ये आई थी, आपने बातें किताबों की की, अब ये किताबें जो हैं मेरे भी दिल के बहुत बहुत ज्यादा नजदीक हैं, और मैं कुछ सच कहूं सनकीपन के लेवल पर जाकर दुखी हो जाता हूं कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं. तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेंज और आउट ऑफ द बॉक्स, या कह लीजिए थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर करने लग जाता हूं मजबूरी में. फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूं, और जैसे कहीं पर भी होता हूं देखता हूं 99% लोग फोन में घुसे हुए हैं, और वहीं पर मुझे कोई व्यक्ति या कोई लड़की या कोई बच्चा, कोई भी बंदा बुक पढ़ता हुआ नजर आ जाता है.
1: जी.
0: बहुत रेयर होता है वैसे ऐसा, लेकिन ऐसा हो जाता है तो मैं उनके पास जाता हूं. ऑटोमेटिकली मैं रोक ही नहीं पाता अपने आप को, उनके पास जाता हूं, सिर्फ इतना ही कहता हूं, एक्सक्यूज मी, आई वुड जस्ट लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, थैंक यू सो मच, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं इतनी भारी भरकम भीड़ में, यू आर द ओनली वन हु इज रीडिंग,
1: जी
0: प्लीज कंटिन्यू.
1: जी.
0: तो वो जो भी होता है वो पहले तो बड़ी अजीब सी निगाहों से मुझे देखता रहता है कि ये क्या क्या बोल रहा है ये. लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है.
1: इतना ही रेयर हो चुका है ये किताब, कि जो किताबें आजकल अगर आप किताबों की दुनिया में जाएं, किताबें वही हैं, किताबें भी बन रही हैं, बट somehow हम लोग ही उस तक पहुंच नहीं पाते हैं. हमको लगता है डिजिटलाइज्ड रील्स और ये चीजें इतना फास्ट मूविंग है कि दिमाग को पॉज करने का हम लोग टाइम नहीं देते.
0: जी.

0: पॉज के लिए भी, जैसे आप बात कर रहे थे मेडिटेशन की, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अपने पे समय लगाने की आध्यात्मिकता की, उस पॉज में हमको भी देखना है।
1: दैट इज
0: तो जब
1: वेरी
0: किताब पढ़ते हैं अपनी इमेजिनेशन को भी देखते हैं, किताब को बंद करके थोड़ी देर केवल शांत रह के उसको भी सोचने को, वो भी तो बेटर।
1: तो मैम ऑफ कोर्स, जहां तक किताबों की बात चल पड़ी है, मुझे तो ऐसा लगता है मैं किताबों के बारे में बात करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं। मुझे ठीक से याद पड़ता है मैम, एक हमारे मेरे जब मैं कॉरपोरेट में काम करता था, तो एक हमारे सीनियर थे, वेरी नाइस पर्सन, स्टिल ही इज देयर। उन्होंने मेरे को एक बुक दी, वेदांता। इट वॉज ऑफ
0: जी
1: कोर्स नॉट अबाउट एनी गॉड इन पर्टिकुलर, वेदांता।
0: जी
1: तो वो बुक मेरे पास कई सालों तक रखी रही। दो तीन बार मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ज्यादा क्लिष्ट थी कि मेरे सर के ऊपर से निकलती थी।
0: जी
1: खैर कुछ वक्त गुजरा, वही कहते हैं ना कि जब जिस वक्त आप उस चीज के लिए एलिजिबल बनते हो, तभी वो ज्ञान आपके पास आता है, उससे
0: बिल्कुल
1: पहले नहीं हो सकता। तो वक्त आया, उस बुक को पढ़ा, अचानक वो बुक समझ में आ गई और अमेजिंग थी। तब मैंने आउट ऑफ शियर रिस्पेक्ट मैंने उनको फोन उठाया, कॉल किया और उनको थैंक यू बोला। मतलब इस बात में शायद 5-6 साल निकल गए होंगे, और
0: जी
1: वो भी थोड़े से शॉक्ड हुए कि इतने साल बाद तुझे याद आ रही है।
0: जी जी
1: मैंने,
0: जी
1: सर अब क्या करूं, आपने जो ज्ञान मुझे दिया था वो अब मुझे मिला है। तो तो ये चीज मैं बतला के आपसे पूछना चाह रहा हूं मैम, कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बताइए ना, कुछ दो तीन किताबों के नाम लीजिए, सो दैट वी ऑल, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, वो कोशिश करें उनको पढ़ने की। आपने
0: देखिए, बहुत
1: बायोग्राफीज के बारे में
0: सिंपल
1: तो बता ही दिया, आगे बढ़े।
0: जी, एक बहुत सिंपल किताब है। हालांकि अक्सर लोग शुरू करते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, पर शुरू किया था गॉस्पल ऑफ श्री रामकृष्णा। बहुत सिंपल किताब है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि श्री रामकृष्ण थे बिल्कुल ही गांव से उठे आने वाले एक सज्जन, लेकिन वो बिल्कुल ही चरम आध्यात्मिकता की बात करते थे। लेकिन इतना सिंपल, इतना इजीली डाइजेस्टेबल, इतना इजीली असिमिलेबल कि कोई भी उसको उठा के पहले अगर पढ़ ले, क्योंकि उसकी रेपिटेटिव पढ़ाई की जरूरत होती है। इट्स लाइक स्टोरी बुक, एक किताब ले लें, एक कोई भी एक स्टोरी बुक ले लें, हम 10 साल पहले पढ़े, आज पढ़े, 10 साल बाद पढ़े, कितनी ही नई चीजें निकल के आती हैं। और गॉस्पल ऑफ श्री रामकृष्ण एक ऐसा ही एक ट्रेजर है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बिगिनर्स जर्नी है, उसी तरह से गॉस्पल ऑफ श्री रामकृष्ण बिगिनर्स जर्नी है एंड एडवांस जर्नी है। हम वापस वहां पर भी जा सकते हैं। इट इज दैट ब्यूटिफुल बुक।
1: ओह वाओ, दैट इज ब्यूटिफुल। आई अंडरस्टैंड मैम। इंसिडेंटली एंड फॉर्चुनेटली कह लीजिए, एंड कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी मैंने पढ़ी है कोई टाइम पहले, दो ऑफ कोर्स इट इज देयर इन माई माइंड, इन माई सबकॉन्शियस माइंड समवेयर। अभी मैं याद करने की कोशिश करूँ उसमें तो दो तीन चीज़ें मुझे याद आती हैं, बट स्टिल दूसरी जो बुक आपने बताई है, गॉस्पल ऑफ रामाकृष्णन,
0: जी श्री राम।

0: बहुत सुंदर मैम। तो बस मैम आगे बढ़ते हुए अब एक चीज के बारे में और गाइड कर दीजिए। आप भी इस दुनिया में हैं, हम लोग ने डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड के बारे में बात की, मैं भी हूं, हमारे सब दोस्त भी हैं, और चुपके चुपके धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड ने अब लोगों को जरूरत महसूस होने लगी है कि साहब कुछ मेथड होना चाहिए जो शांति दे। हम एक दूसरे से बड़ी नफरत करने लगे हैं, सड़क चलते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुंह बिचका लेते हैं, गाड़ी काट लेते हैं तो गाली दे देते हैं, बट नाउ हो गया बहुत, हमें अब शांति चाहिए। तो आपको क्या लगता है मैम, आने वाले समय में आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी इसका क्या रूप होगा?
1: अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी जो पहले था, जो अब है, जो बाद में रहेगा, उसका स्वरूप सेम रहेगा। वो पहले भी सेम था, वैसे ही आज भी है। और जो आप कह रहे हैं शांति की तरफ, पीस की तरफ अगर लोगों की पहचान हो सकती है, तो पहले तो जो चीज जो सबसे पहले जो आता है, एक्सेप्ट व्हाटएवर इज कमिंग अक्रॉस विद अ स्माइल। हम फ्राउन करना भूल के थोड़ा सा अपने आप, केवल जरा सी बात तो है, स्माइल अ लिटिल मोर, इट इज अ नेचुरल मेकअप, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता
0: जी।
1: अगर राह चलते हुए किसी को देख लिया, एक सिर हिला के गुड मॉर्निंग बोल दिया, नमस्कार बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, उसको थोड़ा सा एक्नॉलेज करके और आसपास जितने भी हमारे लोग हैं, जिससे भी मुलाकात होती है, थोड़ा सा उनको जैसे वो हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर ले, तो एक्सेप्टेबिलिटी से मन में पीस आता है। अगर आप दिल्ली के सड़कों में देखें, सबको जल्दी है, रोड रेज दिल्ली में सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि किसी को टाइम नहीं है, हो जाता है, सड़क पे चलते चलते गुस्सा हो जाता है। शांत रहें, और शांत रहने का तरीका तो खुद से आता है। अब ऑब्जर्व द ब्रीदिंग, इमीडिएटली मन शांत हो जाता है। कीप योर टंग जस्ट बीच में लेके, थोड़ा सा टंग को रोल अंडर की तरफ करके पॉज फॉर फ्यू मिनट्स, टंग को पैलेट में लगा के पॉज फॉर 3 मिनट्स, मन इमीडिएटली शांत हो जाएगा। पानी, एक ग्लास पानी पी लें, मन शांत हो जाएगा। कितने ही तरीके हैं मन शांत करने का।
0: वाओ, बहुत बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आगे बढ़ती हुई जमाने में, तेज रफ्तार जिंदगी में थोड़ा सा पॉज लीजिए, मतलब थोड़ा सा ब्रीद कीजिए, जैसा मैम ने बताया, हल्का सा एक ग्लास पानी पी लीजिए, अपने जीभ को यू नो ट्विस्ट करके पैलेट पर लगाइए। देखिए, प्रैक्टिकल मेथड्स हैं, कोई भी मेथड आपको अच्छा लग सकता है, सो ट्राई, ठीक है। फिर इसके बाद खो जाइए अपनी रीलों में, मैं मना नहीं करता, लेकिन पूरे दिन में 2-4-5 सेकंड तो हम अपने को दे सकते हैं ना दोस्तों। ओके, चैती मैम, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि आपने आई, और बिल्कुल प्रैक्टिकल हम लोग ने बातचीत की, कोई थियोरेटिकल नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, बिल्कुल जो आज की समय में संभव है ना, डिजिटलाइज वर्ल्ड को जो वो फोन लेकर हम हाथ में घूमते रहते, उसके साथ साथ जो संभव है उसके बारे में हमने बात की। बस चलते चलते जितने भी लोग आज आपको सुन रहे हैं, कुछ एक संदेश दीजिए, कुछ मैसेज दीजिए जो दिल से निकला हो आपके और हमारे दिल तक पहुंचे।
1: एक सर जरा सी बात है, स्माइल अ लॉट मोर, वो स्माइल हाथों से सेवा, आंखों से प्यार, और लोगों को एक्सेप्ट कर लीजिए जैसे वो हैं। किसी से बैर नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, इतना ही तो होना होता है। कंपटीशन है कहाँ, कंपटीशन अपने इनसिक्योरिटी में है, इनसिक्योरिटी को साइड करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्यार अपने आप हो जाता है, दुनिया से प्यार हो जाता है।
0: वाओ, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, दिल मेरा बहुत हल्का हो गया है, मुझे ऐसा लगता है हमारे दोस्तों को भी बहुत बहुत शांति मिली होगी, कुछ रास्ते दिखाई दिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, बहुत दिल से धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के.जी. रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं, यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते।

वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। जब एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं, यादें बन जाती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM और मैं हूं आपके तरानों की हम सफर। आज जरा रेडियो के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, टीवी पर एक बड़ा सा हरा भरा खेत है, क्रिकेट मैच चल रहा है, एक लड़का बैटिंग कर रहा है और अचानक बाउंड्री के पार एक लड़की दौड़ती हुई आती है, हाथ में कैडबरी चॉकलेट लिए, चेहरे पर ऐसी खुशी कि बस क्या ही कहें। और बैकग्राउंड में वो धुन जो हमने सालों साल सुनी है, कुछ मीठा हो जाए। अरे अरे, आपने पहचान लिया ना, बस यही तो कमाल था पुरानी एडवर्टाइजमेंट्स का। उन्हें देखने के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए था, उन्हें याद रखने के लिए फोन में सेव नहीं रखना पड़ता था, बस एक बार देखो और एक रील की तरह चल पड़ती हैं जब चाहो। कैडबरी और वो लड़की, वो डांस करती हुई खुश मिजाज ब्यूटीफुल सी लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के सिक्सर मारने पर डांस करती हुई कैडबरी लिए फील्ड में आ जाती है। 1990s का वो कैडबरी वाला विज्ञापन आपको याद है ना? ना कोई कॉम्प्लिकेटेड कहानी, ना 10 कैरेक्टर्स, ना हेलीकॉप्टर शॉट्स, बस प्योर खुशी, अनअडल्ट्रेटेड खुशी, सच्ची खुशी जो पूरी पूरी स्क्रीन को ब्राइट कर देती थी। चॉकलेट और एक जबरदस्त याद। आज के विज्ञापन में कभी कभी इतना कुछ हो जाता है कि प्रोडक्ट बेचने के बाद भी हम सोचते रह जाते हैं, अच्छा ये था किस चीज का एड। पुरानी एड्स में कहानी छोटी होती थी लेकिन असर बहुत लंबा, बहुत लंबा। अब आते हैं धारा एड पर, धारा और जलेबी, वो एड जहां पे जिंगल शुरू होता है, धारा धारा शुद्ध धारा। एक बच्चा घर से भाग रहा है, उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश कर रही है और फिर पता चलता है जलेबी। बस उस एक छोटी सी कहानी में घर की खुशबू थी, माँ की आवाज थी, बचपन की शरारत थी और सबसे बड़ी बात अपनापन था। देखते ही आपको लगता था, अरे ये तो मेरे घर की कहानी है। आज भी धारा बोलते ही लोगों के दिमाग में तेल से पहले जलेबी आ जाती है। यही होता है याद रह जाने वाला विज्ञान।

आज भी एक पुराना जिंगल सुनते ही हम सिर्फ ब्रांड को याद नहीं करते, अपना बचपन याद करते हैं। वो पुराना ड्राइंग रूम, टीवी के सामने बैठना, कमर्शियल ब्रेक्स का इंतजार करना, स्किप एड्स नहीं, सच में उन एड्स का इंतजार करना, और जब वो आए तो उन्हें उतनी ही शिद्दत से देखना जितना हम मूवी या उस शो को देख रहे थे। कितनी मैजिकल बात है ये। आजकल तो स्किप एड्स करते करते ही पूरा वीडियो निकल जाता है, पूरी मूवी निकल जाती है, और फिर घर में किसी का बस ये कह देना, चुप चुप चुप, एड आई है। याद है वो जमाना दोस्तों? शायद पुराने एडवर्टाइजमेंट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ इतनी थी कि उन्हें चीजें नहीं बेचनी थी, उन्हें यादें बनानी थी। एक चॉकलेट के साथ क्रिकेट का मैदान, एक तेल के साथ वो बच्चा और उसकी जलेबी, एक स्कूटर के साथ पूरा भारत, एक क्रीम के साथ घर का भरोसा, एक चॉकलेट वेफर के साथ शरारत, और एक छोटे से जिंगल के साथ पूरा बचपन। आज विज्ञापन बदल गए हैं, बहुत तेज हो गए हैं, बहुत शायद सुंदर भी, लेकिन कभी कभी दिल कहता है थोड़ा धीरे चलो यार, एक अच्छी कहानी सुनाओ, एक अच्छा जिंगल बनाओ जो कम से कम कल तक तो याद रहे, एक ऐसा चेहरा दिखाओ जो सिर्फ स्क्रीन पर ना हो बल्कि दिल में उतर आए। दोस्तों मैं हूं आपके तरानों की हम सफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर। आज जाने से पहले आप मुझे बताइए, आपके बचपन में वो कौन सा एडवर्टाइजमेंट था जिसका जिंगल आज भी आप बिना सोचे बिना याद किए बस गुनगुना सकते हैं? हो सकता है आपको प्रोडक्ट याद नहीं हो, लेकिन उस एड के साथ जुड़ी आपकी जिंदगी, आपकी अपनी जिंदगी आपको जरूर याद होगी। तो दोस्तों आज का नॉस्टैल्जिया का डोज यही समाप्त होता है। अगली कहानी तक यादों का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा कर रखिए, क्योंकि कुछ एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पर खत्म हो गए लेकिन हमारे अंदर आज भी चल रहे हैं। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर आपकी आरजे तनुषा। आज जरा स्टूडियो के बाहर निकलते हैं, एसी वाले कमरे से सीधा मुंबई की सड़कों पर। जी हाँ, आमची मुंबई की सड़कों पर, जहाँ गाड़ियां रुकती कम है भागती ज्यादा है, जहाँ लोगों के पास वक्त कम है लेकिन कहानियां बहुत हैं। आज की बातें इधर की उधर की, मुझे एक ऐसे ही मुंबई के ठेले तक ले गई। एक छोटा सा ठेला, उस पर सजी हुई नमकीन, वेफर्स और न जाने कितनी छोटी छोटी चीजें, और उसके पीछे खड़े थे एक इंसान।

ऐसे खुश होते हैं जैसे आज का सेंसेक्स हमने ही चला दिया भाई। लेकिन हम अक्सर एक सवाल नहीं पूछते, इनफैक्ट कभी नहीं पूछते, आप यहां कब से हैं, रोज कितने बजे आते हैं, कितनी दूर से सामान लाते हैं, बारिश में क्या करते हैं, तबीयत खराब होती है तो उस दिन घर कैसे चलता है। और शायद इसीलिए हम उनके हाथ में पकड़ा हुआ पैकेट तो देख लेते हैं लेकिन उन हाथों की कहानियां कभी नहीं देख पाते। मुंबई की बारिश को तो हम सब जानते हैं कितनी क्रूअल और बेदर्द हो सकती है। आसमान खुला नहीं कि मुंबई वाले बोलते हैं, बस आज तो मुंबई रुकेगी। लेकिन मुंबई मुंबई क्या कभी रुकती है? बिल्कुल नहीं। ट्रेन्स चलती हैं, लोकल्स चलती हैं, दुकानें खुलती हैं, टैक्सीज चलती हैं और सड़क के किनारे वो छोटा सा ठेला भी अपनी जगह खड़ा ही रहता है। बारिश में सामान बचाना, प्लास्टिक से ढकना, ग्राहक को रोकना, खुद भीग जाना और फिर अगले दिन सुबह फिर वही जगह आ जाना। क्यों? क्योंकि रोज की रोटी को मौसम की छुट्टी नहीं मिलती दोस्तों, रोजी रोटी कहते हैं ना, बस यही है वो रोजी रोटी। हम मुंबई को अक्सर मरीन ड्राइव से देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया से देखते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों से देखते हैं, ताज से देखते हैं, फिल्मों से देखते हैं, लेकिन मुंबई का एक और चेहरा है, वो ठेले वाला चेहरा, चाय वाला चेहरा, डब्बा पहुंचाने वाला चेहरा, फूल बेचने वाला मुंबई, वड़ा पाव वाला मुंबई, और वो आदमी जो सुबह सुबह अपना छोटा सा ठेला लेकर निकलता है और शाम को उसे वापस घर लेकर आता है। उसके लिए मुंबई कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, मुंबई उसका रोज का दफ्तर है और उसकी सड़क उसकी दुकान है। अगली बार जब आप किसी ठेले वाले से कुछ खरीदें, एक पल के लिए उसकी आंखों में देखिए, सिर्फ ये मत पूछिए कि भैया कितने का है, कभी बस ये पूछ लीजिए, कब से आ रहे हो आप यहां। आपको हैरानी होगी कितनी कहानियां मिलेंगी आपको इन ठेलों पर। किसी ने गांव से आकर शुरू किया होगा, किसी ने बाप का काम संभाला होगा, किसी ने नौकरी छूटने के बाद ठेला लगाया होगा, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए, और बस किसी ने जिंदगी को चलाए रखने के लिए। मुझे लगता है यही मुंबई की सबसे खूबसूरत बात है। यहां जगह छोटी हो सकती है लेकिन सपने सपने बहुत बड़े हैं। एक छोटा सा ठेला भी किसी के लिए पूरा परिवार होता है। उस पर रखा हर पैकेट सिर्फ सामान नहीं, किसी की फीस है, किसी का किराया है, किसी की दवा है, किसी के घर का राशन है और कभी कभी किसी बच्चे का सपना है। वैसे मुंबई में एक चीज कमाल की है, यहां आदमी चाहे कितना भी बिजी हो, अगर रास्ते में उसका फेवरेट नाश्ता मिल जाए तो दुनिया 2 मिनट के लिए रुक सकती है। ऑफिस लेट हो जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी, बॉस फोन करेगा, लेकिन लेकिन अरे पहले ये गर्मा गर्म ले लो। बस यही है हमारी इंडियन प्रायोरिटीज। और शायद इसी वजह से मुंबई की सड़कें सिर्फ ट्रैफिक से नहीं, खुशबू से भरी होती हैं। तो दोस्तों, अगर कभी आपको सच में मुंबई को समझना हो ना, तो सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों को मत देखिए, बीकेसी, कोलाबा, मरीन ड्राइव, इनसे आगे बढ़िए, नीचे भी देखिए और उस सड़क को देखिए जहां कोई अपना छोटा सा ठेला लगाकर सालों से खड़ा है। उसके पास शायद कोई बड़ी दुकान नहीं, कोई चमकता बोर्ड नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, लेकिन उसके पास है मेहनत, धैर्य और रोज रोज मतलब रोज सालों साल फिर से शुरू करने की वो हिम्मत, वो ताकत, और यही शायद मुंबई है।

हर सुबह खुद को फिर से खड़ा कर लेना। आज की बात एक छोटे से ठेले से शुरू हुई थी, लेकिन बात शायद ठेले से बहुत आगे निकल गई। हम सब अपनी अपनी जगह कुछ बेच रहे हैं, कोई अपना वक्त, कोई अपनी कला, कोई अपनी मेहनत, कोई अपनी आवाज, कोई अपना हुनर। फर्क सिर्फ इतना है, किसी की दुकान बड़ी है, किसी की छोटी, लेकिन हर दुकान के पीछे एक इंसान है और हर इंसान के पीछे एक कहानी है। तो अगली बार सड़क के किनारे किसी ठेले पर जब आप रुकें, भाव ताव जरूर कीजिए, लेकिन इज्जत के साथ, और हो सके तो एक सवाल एक्स्ट्रा पूछिए, भैया आपकी कहानी क्या है। हो सकता है आपको किसी सामान से ज्यादा कीमती चीज मिल जाए, एक कहानी। मैं हूं आपके तरानों की हम सफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की और उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर। और आज का सवाल, आपके शहर में वो कौन सी छोटी सी दुकान या कौन सा ठेला या कौन सा इंसान है जिसे आप रोज देखते हैं, लेकिन कभी उसकी कहानी नहीं पूछी। कभी पूछ के देखिए, हर शहर इमारतों से नहीं बनता, शहर उन लोगों से बनता है जो हर सुबह उसे फिर से जिंदा करते हैं। हर शहर इमारतों से नहीं बनता, शहर उन लोगों से बनता है जो हर सुबह उसे फिर से जिंदा कर देते हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार एक अमेरिकी डॉक्टर भारत आया। रेलवे स्टेशन के बाहर उसने किताबों की दुकान पर एक किताब देखी और बेहोश हो गया। उस किताब का नाम था 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने।
2: What?

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

पान सिर्फ चबाने की चीज नहीं, एक जिंदा रिवायत। दोस्तों, भारत में अगर आप कत्था, चूना, सुपारी इनका नाम लो तो दिमाग में कौन सी तस्वीर उभर कर आती है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, एक छोटी सी दुकान, ऊपर गोरी का मकान। नहीं, एक छोटी सी दुकान, कान के पीछे कलम लगाए हुए दुकानदार, चमकते स्टील के डब्बे और बीच में हरा हरा पान। लेकिन सच बताऊं, पान सिर्फ खाया नहीं जाता, पान तो बनाया जाता है। और पान बनाना एक कला है। जी हाँ, भारत आके देखिए, आपने कभी गौर से देखा है नुक्कड़ पर बैठे वाले पान वाले को? वो सिर्फ बेच नहीं रहा होता, वो रचना कर रहा होता है। सबसे पहले हरा ताजा पत्ता, बिल्कुल साफ, बिल्कुल चमकदार, जैसे किसी ने बारिश के बाद पेड़ से तोड़ कर निकाला हो। फिर आता है चूना, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ना ज्यादा ना कम, उंगली की नरमी से लगाया जाता है बड़े प्यार से। फिर कत्थे की एक परत, लाल रंग धीरे धीरे पत्ते पर फैलता है। उसके बाद छोटी

0: थोड़ी मीठी, थोड़ी तीखी, थोड़ी कड़वी और थोड़ी सुगंधित। आप अपनी पसंद बताओ और जिंदगी आपको अपना पान बनाकर देती है। आजकल नए नए पान भी आ गए हैं भाई, चॉकलेट पान, फायर पान, आइस पान। लेकिन असली मजा तब है जब दुकानदार आंखों में देखकर पूछे, कौन सा बनाऊं, और आप मुस्कुराकर कहो, भैया जो बेस्ट हो। क्योंकि पान में भरोसा भी लगता है। कभी आप शाम को निकलकर बस 5 मिनट के लिए किसी पान वाले को देखिए, उसकी उंगलियों का चलना, उसकी नजर का अंदाजा, उसकी आवाज, लो जी तैयार है। वो एक कलाकार है, बिना स्टेज का, बिना तालियों का। उसका काम रोज होता है, रोज लोग आते हैं और रोज उसकी कला लोगों के मुंह में घुल जाती है। इसलिए जब अगली बार आप पान खाएं, बस चबाकर थूक मत देना, थोड़ा महसूस करना। ये पत्ता कहां से आया होगा, कितने हाथों से गुजरा होगा, कितनी रिवायत जोड़ी होगी इसमें। पान सिर्फ एक पत्ता नहीं, ये गलियों का गीत है, शादियों की हंसी है, दोस्ती का ठहराव है और भारत की एक जीती जागती परंपरा है। तो बताइए आप कौन सा पसंद करेंगे, बनारसी, कोलकाता वाला, हैदराबादी जाफरानी या बस एक सादा मीठा। जो भी हो, जिंदगी का स्वाद तभी आता है जब उसमें थोड़ा सा कत्था हो, थोड़ा सा चूना और बहुत सारा प्यार। चलिए दोस्तों, आज के पान का स्वाद यहीं छोड़ते हैं। मिलते हैं अगले मोड़ पर एक और कहानी के साथ।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पति जो था छत पर जाने वाली सीढ़ियां बस दो चार चढ़ी ही थी कि पत्नी ने आवाज लगा के पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, चिड़ियों को दाना डालने जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा, सुनो नीचे आ जाओ, तुम्हारी चिड़िया जो है पिछले एक हफ्ते से मायके गई हुई है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। आज सबसे पहले सुनते हैं ये गीत, शीर्षक है रीछ।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, काव्य रचना प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार महेश प्रभाकर, गायन स्वर देवाशीष, धीरा घोष, अनुपमा, मेघा, दीक्षा, संस्कृति, राशि और अनुराग, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।

0: प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है हेल्थ यानी स्वास्थ्य का पिंक रंग। मैं हूं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार, और हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, ये कार्यक्रम एक ऐसा मंच है जहां बात होती है सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि जागरूकता, सेहत और बदलाव की भी होती है। आज का हमारा विषय है महिलाओं का स्वास्थ्य, क्योंकि कहा जाता है जब एक महिला स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है। और आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत जिन्होंने हजारों महिलाओं तक पहुंचकर उन्हें न सिर्फ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की भी राह दिखाई। जी हाँ, हमारे साथ हैं शिवांगी सक्सेना, एक अनुभवी इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर, डाइटिशियन और विमेन हेल्थ अवेयरनेस एक्टिविस्ट। 5,000 से ज्यादा महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाकर और कोविड जैसे मुश्किल दौर में भी लगातार जागरूकता फैलाते हुए इन्होंने सच में है एक मिसाल कायम की है। तो आइए शुरू करते हैं ये खास बातचीत, और जहां जानेंगे उनके काम के बारे में, और सबसे जरूरी हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच आलोक जी, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए, और अपने सारे ही श्रोताओं को मैं मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: तो चलिए शिवांगी जी, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए, और हम शुरुआत से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी जिंदगी अर्ली लाइफ कैसे रही, कुछ बचपन के बारे में बताइए, कुछ स्कूलिंग के बारे में बताइए, कैसी आप स्टूडेंट थी, शैतान थी या सोबर थी, कुछ बताइए इसके बारे में, कहाँ शुरुआत हुई आपकी।
2: मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो मैं बहुत ही साधारण परिवार से मेरा ताल्लुक रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ था, और फादर मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, और इसी वजह से अलग अलग शहरों में मेरी एजुकेशन रही। बॉर्न एंड ब्रॉट अप वैसे राजस्थान में हूँ, सवाई माधोपुर जिले में मेरा जन्म हुआ था।
1: जी जी।
2: स्कूलिंग मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन अगर बोलूं तो मेरी कॉन्वेंट स्कूल सोफिया से रही है, कोटा राजस्थान।
1: अच्छा, कोटा से पढ़ी है आप, ओके।
2: हाँ जी, कुछ एजुकेशन मेरी फिर जयपुर में भी रही, उसके बाद फिर फादर की पोस्टिंग की वजह से हम लोग हरियाणा शिफ्ट हो गए थे, पंजाब हरियाणा का बॉर्डर अंबाला कैंट, कैंटोनमेंट सिटी है पूरी। और एयरफोर्स स्कूल में मेरा मतलब जो आगे की एजुकेशन रही वो मैं एयरफोर्स स्कूल से पास आउट हूँ। उसके बाद काफी सारी ऐसी यादें हैं बचपन से जुड़ी हुई, क्योंकि वैसे मैं बहुत ज्यादा शाय पर्सन रही हूँ अपने बचपन में, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन रही हूँ, तो बहुत ज्यादा ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं रहा। जो फ्रेंड्स थे स्कूल में बने, अलग अलग स्कूल्स में पढ़ी तो अलग अलग सिटीज में और अलग अलग स्कूल्स के फ्रेंड्स मेरे रहे हैं। साथ में उस टाइम पे मतलब बचपन में, जैसे आज के टाइम में तो बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली हैं, गैजेट फ्रेंडली हैं, तो हमारे टाइम पे तो ये सब चीजें नहीं होती थी। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी हमारे बचपन में, सतोलिया खेलना, कबड्डी, खो खो, ये सारी चीजें, साइकिलिंग करना, ये सारी चीजें बहुत इन्वॉल्व रही मेरे बचपन में। और कल्चरल इवेंट्स में बहुत पार्टिसिपेशन रहा है मेरा, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं म्यूजिक में ही थे हमेशा, मदर फादर, इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी पैटर्नल साइड से, मैटर्नल साइड से, दोनों ही मतलब नाना जी के परिवार से भी और दादाजी के परिवार से भी म्यूजिक जो है वो ब्लड में रहा है। तो काफी सारे कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। यही थोड़ी सी यादें हैं जो जिनके सहारे अभी तक की लाइफ मेरी बहुत अच्छी चल रही है।
1: दैट्स वंडरफुल। तो ये जान के तो बहुत ही अच्छा लगा, आपके पेरेंट्स भी बिल्कुल म्यूजिक के दीवाने हैं और बिल्कुल उसमें दिलचस्पी है उनकी, तो चलिए आपका भी म्यूजिक से थोड़ा बहुत तो कनेक्शन होगा। अच्छा आप ये बताइए कि फैमिली बैकग्राउंड में कोई हेल्थ या मेडिकल फील्ड से भी कोई कनेक्शन रहा है आप लोगों का, या सिर्फ आपने ही शुरुआत की?
2: नहीं, मेडिकल फील्ड में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं रहा, या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा कि मेडिकल से कोई कनेक्शन रहा हो। फर्स्ट पर्सन मैं ही थी जो इस ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में अपने आप को लेकर के आई।
1: तो ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ आपका इंक्लिनेशन कैसे हुआ, इससे जुड़ाव कैसे हुआ, ये कैसे डेवलप हुआ आपका?
2: इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मेरे से ही रिलेट करती है।
1: Okay.
2: क्योंकि हाँ, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जो है उसका रुझान, मतलब मैं खुद बहुत अनहेल्दी पर्सन रही इस इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टार्टिंग डेज में। मतलब मेरा बचपन में भी मैं कुछ ना कुछ बीमारी चलती रहती थी, एलर्जिक, कोल्ड एलर्जिक मैं रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे, मतलब जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो रही थी उसी टाइम पे मेरी एंगेजमेंट हुई, एंड फ्यू मंथ बिफोर माई मैरिज I was diagnosed with a tumor in pituitary gland.
1: अरे अच्छा।
2: तो वो मतलब एक ऐसा पॉइंट था मेरी लाइफ में, एक ऐसी टर्निंग स्थिति थी जो कि मतलब शादी से पहले आप समझ सकते हैं एक लड़की के लिए ये डायग्नोस होना कि ट्यूमर है ब्रेन में। और जब एलोपैथी में हमने कंसल्ट किया, पेरेंट्स को भी टेंशन कि कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए, शादी में 2-3 महीने रह गए हैं और ये बात निकल के आई है कि भाई ट्यूमर है, और जब कंसल्टेशन हुआ डॉक्टर्स के साथ में, देन दे सजेस्टेड कि आप तो सर्जरी कराएं, एकमात्र इसका इलाज है सर्जरी। पर अब ऐसी सिचुएशन, मतलब सर्जरी जो थी वो भी नॉर्मल सर्जरी नहीं थी, सर्जरी के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, मतलब साइड इफेक्ट्स हम उसको कहेंगे, वो बहुत ही ज्यादा मतलब खौफनाक थे, बहुत डेंजरस थे वो। पहला था कि मैं अपनी विजन हमेशा के लिए लूज कर जाती, मैं कभी देख नहीं सकती थी आफ्टर सर्जरी। और सेकंड जो मेरा मतलब चैलेंजिंग फेज था आफ्टर सर्जरी, वो था कि मैं कभी कंसीव नहीं कर पाऊंगी। तो दोनों ही मतलब चीजें ऐसी थी कि अगर मैं सर्जरी कराती हूँ तो भी प्रॉब्लम है, और नहीं कराती हूँ तो प्रॉब्लम फेस कर ही रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्टिव मेरे हस्बैंड रहे, जिन्होंने मतलब जब मैंने उनके साथ में ये सारी चीजें डिस्कस करी कि भाई ये सिचुएशन है तो अब क्या करना चाहिए, आप शादी करने के लिए राजी हैं तो ठीक है, नहीं तो मतलब बाद में ऐसी कोई सिचुएशन ना खड़ी हो कि भाई मेरे पेरेंट्स के ऊपर या मेरे ऊपर कोई ब्लेम आए कि भाई मैंने आपको अप्राइज किया सिचुएशन से, या मैंने छुपा के शादी कर ली। तो वो चीजें मैं टॉलरेट नहीं करूंगी, क्योंकि बीइंग अ इंडियन गर्ल कोई भी लड़की अपने पेरेंट्स के ऊपर देखिए बात नहीं लेना चाहती है। तो बस फिर हस्बैंड सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बोले जैसे जा रहा है, बोले जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो चीज चलने दो, जो उन्होंने बोला है अंडर ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए जितना भी है वो हम एज इट इज रखेंगे, बोले बाद की बाद में देखेंगे। बोले अभी तो एंजॉय करो शादी की शॉपिंग, सब कुछ अच्छे से होने दो। तो बस अंडर ऑब्जर्वेशन रही डॉक्टर्स के, शादी हो गई। उसके बाद बहुत ज्यादा मतलब मैं कहूंगी कि आई वॉज वेरी लक्की कि मेरे डॉक्टर्स भी बहुत सपोर्टिव थे इन सब चीजों को लेकर के। दे टोल्ड मी कि आप बिल्कुल अच्छे से कंसीव करो, एक आपका हेल्दी बेबी हो जाए, उसके बाद हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे।
1: ओके।
2: तो वो मेरी जो 13 इयर्स की जर्नी थी वो बहुत स्ट्रगलिंग रही है हेल्थ को लेकर के। अब जब हम इतनी बड़ी हेल्थ इशू को फेस कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग कुछ ना कुछ सर्च करते हैं कि कुछ ऐसी चीज हमें मिल जाए जिससे कि हम ठीक हो जाए और हमें ऑपरेशन भी ना कराना पड़े। तो साथ के साथ मेरा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी चला, उससे भी काफी रिलीफ था। पर एक कहीं ना कहीं साथ में टेंशन थी कि यार जब भी, क्योंकि डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था, बोला हुआ था कि जैसे ही आपका ब्लर विजन हो या थोड़ी सी भी आपको देखने में प्रॉब्लम आए तो यू शुड इमीडिएटली गेट बैक टू अस, उस समय हमें आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो वो एक जो मेंटल स्ट्रेस था, मेंटल प्रेशर था, वो मेरे साथ चल ही रहा था। उसी टाइम फिर ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स का, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स का पता चला, फिर सोचा जब इतनी सारी चीजें ट्राई करी है, क्योंकि उस टाइम एडवाइजेस भी बहुत सारे लोग देते हैं, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, ऐसा कर लो, तो सही होने के लिए हम कुछ ना कुछ ट्राई करते ही रहते हैं। तो इसीलिए फिर मन में कहीं ना कहीं था कि जब इतनी सारी चीजें ट्राई करी है तो वाई नॉट गो फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स ऑल्सो।
1: ओके,
2: तो फिर ये एक 360 डिग्री चेंज था मेरी लाइफ में, ये टर्निंग पॉइंट रहा है मेरी लाइफ में। बिकॉज उससे पहले मैं एजुकेशन सेक्टर में थी, 8 इयर्स मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, तो कभी सोचा नहीं था कि मैं मेडिकल फील्ड में भी जा सकती हूँ, क्योंकि कभी माइंड में आई नहीं थी ये चीजें। और जब खुद सफर होते हैं तो कहीं ना कहीं से जब हमें अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाती है कि जिससे हम ठीक हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं।
1: तो इस पॉइंट से आपका ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जुड़ाव शुरू हुआ। ओके, चलिए और आगे बातचीत करते हैं। लेकिन जो आपने मुझे अपनी ये सारी बात सुनाई है, ये तो बहुत ही ज्यादा टचिंग भी है और करेजस भी है। तो मैं आपके पति ने जो हिम्मत दिखाई उस स्थिति की, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कैसा एक सिचुएशन रही होगी। उन्होंने जिस तरह से आपको सपोर्ट किया है, तो उनके नाम में रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं, क्योंकि बहुत बहुत इम्प्रेस है कि उन्होंने जिस तरह आपको सपोर्ट किया आगे की लाइफ पे और उस जंक्शन पे। नहीं तो कोई भी और होता वो कहता चलो भाई कोई बात नहीं है, रहने दो इसको, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए एक गाना सुनते हैं फिर आगे बातचीत को जारी करते हैं
2: जी।

0: हाँ तो शिवांगी जी, अब हम थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में, फिर आपका ये कैरियर बना किस तरह बना इसके बारे में बातचीत करते हैं। आपने स्पेसिफिकली ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर फील्ड में ही क्यों चूज किया, ये कब से शुरुआत हुई आपकी, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, ये कैसे आपकी शुरुआत हुई?
1: ये 2019 में जब मुझे इस चीज के बारे में पता चला, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स के बारे में, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के बारे में,
0: जी
1: तो मुझे भी मतलब कहीं ना कहीं तो देखिए डाउट रहता है मन में कि पता नहीं वर्क करेगा कि नहीं करेगा।
0: सही बात है,
1: तो
0: बिल्कुल
1: सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई करना शुरू किया। 2019 में मैं इन सब चीजों से इंट्रोड्यूस हुई थी, और उस तब तक मतलब एवरी ईयर आई हैव टू गो फॉर एमआरआई स्कैन्स एंड ब्लड टेस्ट, ये सारी चीजें मेरी चलती रहती थी। एवरी 6 मंथ्स पे स्क्रीनिंग होती थी, ब्लड टेस्ट वगैरह होते थे, और मतलब चल ही रहा था। साथ में ये थेरेपीज मैंने स्टार्ट करी, तो थेरेपीज का, हालांकि इन थेरेपीज का क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा डिले होता है, ऐसा नहीं है कि हमने आज थेरेपी ली और अभी हमको रिलीफ आ जाएगा, तो
0: सही
1: पेशेंस भी रखना बहुत पड़ता है हमें इसमें। तो जब यही था कि पेशेंस रखते रखते आफ्टर 15-20 डेज मुझे थोड़ा थोड़ा सा रिलीफ आना शुरू हुआ, फिर
0: ओह
1: मैंने इसको कंटिन्यूअस करना शुरू किया। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हमें इसमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। फिर जब स्कैन्स वगैरह हुए तो उसमें सारी चीजें मेरी नॉर्मल थी, एंड माय डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड। वो
0: अच्छा
1: बोले, जहाँ बोले इतने सालों का मतलब 17 ईयर्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस, उन्होंने बोला इट वॉज अ मिरेकल। बोले ऐसा
0: ओहो,
1: मैंने कभी देखा नहीं कि बिना ऑपरेशन के ट्यूमर ठीक हो जाए पिट्यूटरी का। तो
0: अरे
1: बोले अच्छी बात
0: अच्छा
1: है कि बोले ये चीज हुई, और क्योंकि उन्होंने मुझे कभी बाउंड नहीं किया कि आप इस ट्रीटमेंट में ही रहो, एलोपैथिक में ही
0: ओके
1: रहो, आप किसी
0: अच्छा
1: और ट्रीटमेंट को फॉलो ना करो। उन्होंने बोला कि भाई हमें ठीक करना है इस चीज को, तो चाहे वो एलोपैथी से ठीक हो, चाहे होम्योपैथिक में ठीक हो, चाहे किसी और चीज से ठीक हो, पर बिना ऑपरेशन के अगर ठीक हो जाती है तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। तो बस उसी तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन आता गया कि भाई हाँ ठीक है, मैं ठीक हो रही हूँ। फिर जब 100% मुझे रिजल्ट मिला, फिर मैंने इस चीज को एज अ चैलेंज लिया कि नाउ आई विल स्टार्ट फर्दर स्टडिंग फॉर दिस फील्ड। और फिर धीरे धीरे मतलब चीजें शुरू होती गई।
0: वंडरफुल, आपकी तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और इंस्पायरिंग भी है। और आपका जो ट्यूमर, इससे ठीक हो गया, अब तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। देखिए श्रोताओं, बहुत बहुत दिलचस्प बातचीत हो रही है।

0: ओके
1: मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं.
0: अच्छा
1: एक्यूप्रेशर में तो देखिए जो ट्रेडिशनल वे रहता है कि वी जस्ट प्रेस दी एक्यू पॉइंट्स बाय हैंड्स या उसको मतलब प्रेशर देना थंब से फिंगर टिप से ठीक है सर्कुलर मोशन में मसाज करना एक दो मिनट तक. उसमें एक्यूरेसी की भी प्रॉब्लम रहती है कि कई बार पॉइंट्स क्योंकि एक्यूपॉइंट्स जो होते हैं हमारे बहुत थिन मेरिडियंस होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं पता भी नहीं चलते बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है.
0: ओके
1: तो वो भी हाँ वो भी उसमें भी रिजल्ट मतलब पेन रिलीफ के लिए इट्स गुड पर उसमें भी आपको मतलब प्रॉपर एक्यूपॉइंट्स पता होने चाहिए तभी आप उसको फॉलो कर पाते हैं. फिर बात करते हैं हम एक्यूपंचर की. तो ये भी एक ट्रेडिशनल वे है जिसमें कि हम नीडल्स को इंसर्ट करते हैं अपने बॉडी में. तो वो भी हमारे जो एग्जैक्ट जो पियर्सिंग होती है नीडल्स की वो एप्रोप्रिएट एक्यूपॉइंट पे होनी चाहिए.
0: ओके
1: अगर वो नहीं हो रही है तो कई बार हमें मतलब रिलीफ नहीं आता. इवन पेशेंट्स जो होते हैं इससे डरते भी हैं क्योंकि सुई चुभने का जो एक एहसास होता है वो ही बड़ा मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार सुई चुभेगी मुझे दर्द होगा पेनफुल होता है वो. कई बार पेशेंट्स उसको प्रेफर नहीं करते कि नहीं यार सुइयां और फिर वो मतलब इंसर्ट करके रखनी पड़ती है काफी लंबे समय तक. तो पेशेंट बाउंड हो जाता है कि अपने रोजमर्रा के काम करने में दिक्कतें आती हैं और अगर प्रॉपर इंसर्शन नहीं हुआ नीडल का फिर कई बार नीडल से इन्फेक्शन होने के चांसेस हालांकि कम होते हैं पर कई बार हो जाते हैं. तो उससे भी घबराहट होती है पेशेंट्स को. तो इसलिए ये वाला ट्रीटमेंट भी मतलब इतना सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि तरजीह तो हमारे देश में एलोपैथिक ट्रीटमेंट को ही दी जाती है कि कुछ भी हुआ तो फटाफट से पेन किलर खा लिया या फिर डॉक्टर को दिखा दिया फटाफट से कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है सिम्टम उन्होंने नोट किया और आपको मेडिकेट कर दिया. तो इन सब चीजों का जो है लोगों में अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है. फिर इलेक्ट्रो एक्यूपंचर जो है वो एक्यूपंचर का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है. इसमें क्या करते हैं कि जो आपका जो नीडल हम पियर्स करते हैं जो हमारे बॉडी में जो नीडल्स चुभा मतलब इंसर्ट की जाती हैं उसको हम उस उन नीडल्स में इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं.
0: अच्छा
1: ये बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो बैलेंस होना चाहिए. ज्यादा हो गया तो पेशेंट वैसे ही नहीं आएगा आपके पास में और कम हुआ तो उसको रिलीफ नहीं आएगा. पेन रिलीफ के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है. पर मैं जिस चीज में डील करती हूँ दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी. इसमें हम विदाउट दिस इज अ नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट. इसमें कोई हम लोग नीडल्स को पियर्स नहीं करते ना हम इसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं बट कोई मैग्नेट यूज नहीं करते. मीन्स आपके सिंपल एक हाथ के थ्रू लेफ्ट हैंड के थ्रू लेफ्ट पाम के थ्रू आप अपना पूरा होल बॉडी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. पेनलेस ट्रीटमेंट है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट किया जाता है. ब्लड को मैग्नेटाइज किया जाता है. इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होता है प्रोब के थ्रू. वो आपके चैनल्स को पहले हम लोग जो हमारा डिवाइस हम लोग यूज करते हैं दैट इज वेरी फ्रेंडली. मीन्स अगर 8-10 साल का बच्चा भी है ना वो भी उस डिवाइस को यूज कर सकता है. बहुत कॉम्पैक्ट साइज का होता है. बहुत ही छोटा सा पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है. और जो इसमें मतलब फर्दर जाना चाहते हैं तो वो इसमें एक्सपर्टाइज होने के लिए हम लोग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं सर्टिफिकेशन के साथ में. तो वो हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं. बाकी डिटेक्ट भी हम लोग जो बीमारियां कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें एलोपैथी में जिसका कोई क्योर नहीं होता या कह देते हैं कि सिर्फ सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में जैसा कि मेरे केस में था. तो ऐसी बीमारियां भी हम डिटेक्ट करते हैं रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं. हमारा बेसिक प्रिंसिपल जो होता है दैट इज टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई एंड देन वी वर्क फॉर द रूट कॉज. जब बीमारी को जड़ से खत्म किया जाता है तो बीमारी लौट के भी नहीं आती है.
0: तो इसमें क्या कोई डिवाइस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिससे क्रिएट होती है वो डिवाइस होती है उसको आप बॉडी से कनेक्ट करते हैं क्या करते हैं?
1: जी बिल्कुल उसको हम बॉडी से कनेक्ट करते हैं. एक पैच के थ्रू इलेक्ट्रोड के थ्रू हमारे हाथ पे ही इलेक्ट्रोड लगाया जाता है और प्रोब के थ्रू हम अपने हैंड से ही डिटेक्ट करते हैं कि हमें क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है.
0: अच्छा
1: जब प्रॉब्लम हमें डिटेक्ट हो जाती है तो उसके

0: बाद फिर हम उसको सिम्टोमेटिक तो रिलीफ देते ही हैं, फिर हम उसका रूट कॉज स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। हमारा ट्रीटमेंट ऑल तो थोड़ा सा लंबा होता है कंपैरेटिव टू दिस एलोपैथिक ट्रीटमेंट, क्योंकि रूट कॉज फाइंड करके, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कोई किसी को लिवर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो लिवर की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, हार्ट
1: जी
0: रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। अब पेशेंट जब हमारे पास में आता है तो वो अपनी एलोपैथिक रिपोर्ट्स लेके आता है जिसमें कि उसकी सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, पर जब हम डिटेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स उसको डिटेक्ट हो रहे होते हैं कि हाँ ये भी है। जब उनसे क्वेश्चनिंग होती है तो बोलते हैं हाँ हाँ ये भी हमें प्रॉब्लम हुई थी, ऐसा सिम्टम भी हमें आया था। तो उसके बाद में हमारी फर्दर हिस्ट्री टेकिंग शुरू होती है, फिर हम लोग धीरे धीरे उसकी जड़ पे पहुंचते हैं कि हाँ यहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो पहले उस रूट कॉज को क्योर करना शुरू करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, फिर हमारी ये जो क्योर की जो जर्नी है वो कंप्लीट होती है। तो उसमें 3 to 6 months लग जाते हैं।
1: अच्छा चलिए, तो यहाँ रुक के हम एक शिवांगी जी गाना सुन लेते हैं, क्योंकि ये तो आपने
0: बिल्कुल
1: काफी टेक्निकल, ये खैर मैं ये जानना चाहूंगा, बाद में बताइए कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है, कोई मेडिसिन वगैरह देते हैं या इसी के थ्रू करते हैं। चलिए पहले एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं।
0: जी।

0: हाँ शिवांगी जी, तो आप कैंसर अवेयरनेस के मिशन पे भी काम कर रही हैं। आपने विमन में कैंसर अवेयरनेस का मिशन कैसे स्टार्ट किया, क्यों आप इससे जुड़ी, कुछ इसके बारे में बताइए, कैसे ये सब हुआ?
1: ये जो मिशन मैंने स्टार्ट किया, इसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी खुद की हेल्थ रही है।
0: ओके
1: मीन्स मेरे को कुछ गायनोकोलॉजिकल इश्यूज थे जिनसे मैं सफर कर रही थी,
0: अच्छा
1: और मीन्स एक विशियस सर्कल बना हुआ था कि एवरी मंथ आई हैव टू विजिट अ गायनी, और
0: अच्छा
1: वो मेडिसिंस दे देते थे। उसके बाद में वही एवरी मंथ, मतलब 9 to 10 months मेरे साथ ऐसे ही रहा कि डॉक्टर के पास जाना है, मेडिसिन लेनी है, फिर नेक्स्ट मंथ फिर जाना है। पीरियड रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे मुझे, तो वो
0: ओ
1: मतलब कहीं ना कहीं पहले तो ये चीज ट्यूमर वाला प्रॉब्लम, उसके साथ में ये भी डेवलप हो गया। तो मतलब जो मेंटल प्रेशर था मेरा, और थोड़ा डिप्रेशन सा भी होने लग गया था कि भाई एकदम से हेल्थ इश्यूज इतने हो गए थे, प्लस फैमिली, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे उस टाइम पे,
0: जी जी
1: तो बच्चों को
0: बिल्कुल
1: मैनेज करना, इन लॉज साथ में रहते थे तो इन लॉज को मैनेज करना, मैं खुद वर्किंग थी तो मुझे अपनी जॉब भी मैनेज करनी होती थी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो वंस आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद दी सैनिटरी पैड,
0: ओके
1: ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड, तो उस मतलब वो मैं बोलूंगी 2020 जनवरी का टाइम था व्हेन आई वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड विद दिस ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन, एंड
0: ओके
1: दैट वॉज दी ला मतलब इन दिसंबर 19 आई हैव बीन विजिटेड विद दी गायनी। उसके बाद आई थिंक नेवर विजिटेड दी गायनोकोलॉजिस्ट फॉर
0: अच्छा
1: दीज इश्यूज। तो
0: अच्छा
1: वहीं से ये क्लिकिंग पॉइंट आया कि यार जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, क्योंकि उससे पहले तक मतलब मैंने कभी खुल के, क्योंकि हमें पता है हम आज भी ऐसे ही समाज का हिस्सा है जहां इन सब चीजों के ऊपर खुल के बातचीत नहीं होती,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: मैं खुद भी ऐसी ही थी। मैंने भी कभी खुल के कभी अपनी मदर से शायद इन सब चीजों को डिस्कस नहीं किया होगा, या डॉक्टर से डिस्कस करने में भी थोड़ी सी एक हेजिटेशन फील होता था। तो
0: जी
1: जब खुद के ऊपर बात आती है और खुद सफरर होते हैं, जब खुद प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो हमारी सारी जो हेजिटेशंस होती हैं या जो शायनेस होती है वो शायद ओपन हो जाती है। तो
0: बहुत सही
1: सबसे
0: बात
1: पहले अपनी गायनी को मैंने इस चीज के बारे में बताया, तो शी वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि यार ऐसा भी होता है क्या,
0: अच्छा
1: मैंने कहा भाई
0: अच्छा
1: मेरे साथ में हुआ है प्रैक्टिकली। तो फिर बोले बताना क्या चीज है, उन्होंने भी यूज करी, उनको भी बहुत अच्छा
0: अच्छा
1: लगा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। बोले हम लोग भी बहुत परेशान रहते हैं, बोले बीइंग गाइनीज, बोले हमारे पास में ऐसे कोई अल्टरनेट सॉल्यूशंस नहीं होते कि हम इससे क्योर कर सके, बोले हम लोग
0: अच्छा
1: भी परेशान रहते हैं। तो फिर धीरे धीरे ये सिलसिला चालू हुआ। तो ये पहले सबसे पहले जो मेरे कॉन्टेक्ट में फीमेल्स थी, उन्हीं के साथ में जो फ्रेंड्स वगैरह थी उन्हीं से स्टार्ट किया, तो पता चला कि भाई मैं ही अकेली नहीं हूँ। जिस फीमेल से बात करो सबको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहती है, सबको ये मतलब जो पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है हमारी, वो सारा मतलब सभी को प्रॉब्लम है, नॉट इवन अ
0: ओके
1: सिंगल, या हम कहें कि 100 में से 1-2 महिलाओं को होगी, 100 महिलाओं को अगर आप बिठाएंगे तो 95 महिलाएं आपको ऐसी मिलेंगी जिनको कोई ना कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, जो पीरियड
0: अच्छा
1: रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रही है। वो बस धीरे धीरे कहते हैं कि जब एक से बात हुई, दो से बात हुई, तो अपने आप ये चीजें लोग मतलब लेडीज मेरे साथ खुद ही महिलाएं जुड़ती गईं। सेशंस हम लोग कंडक्ट करते थे, और कई बार तो स्कूल्स और हॉस्पिटल से इनविटेशन आते थे खुद से कि भाई आप आए हमारे यहाँ ये सेमिनार कंडक्ट करें। तो फिर
0: अच्छा
1: एक इनिशिएटिव लिया थोड़ा सा, और धीरे धीरे ये कारवां स्टार्ट हुआ, और करते करते
0: दैट्स
1: पता मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैं इस लेवल पे कब आ गई।
0: वंडरफुल, आप तो एक मिशन की तरह काम कर रहे हो सबके, आई मीन यू हैव गॉन थ्रू द होल ट्रॉमा, लेकिन उससे आपने ये निकाला, बहुत बड़ी बात है, और इस चीज को आगे लेके आप बढ़ रही हैं। तो अब ये बताइए, जैसे आपके एक्स में विमेन में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर कौन सा होता है, ये किस तरह से, क्या है इसके बारे में?
1: कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है फीमेल्स में, और उसके बाद में सर्वाइकल कैंसर, देन ओवरियन कैंसर। ये तीन ऐसे कैंसर्स हैं जो मतलब मालूम भी नहीं चलते और डेवलप हो जाते हैं। वैसे तो कैंसर खुद ही एक ऐसी बीमारी है कि हमारे बॉडी में डेवलप हो जाती है और हमें पता नहीं चलती, सालों तक
0: जी
1: पनपती रहती है। हमेशा तीसरी या चौथी स्टेज पे, और अब तो खैर लोग काफी ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। जब मैंने इस चीज को स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, कई बार तो बीइंग फीमेल्स ही कह देते थे, और अच्छे अच्छे मतलब मैंने फैमिलीज की फीमेल्स को ये बोलते हुए सुना है कि नहीं हमें जरूरत नहीं है इस चीज की, हम बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद में जब वो लोग सेशंस अटेंड करते हैं तो उसके बाद में बोलते हैं कि नहीं अगर हमने इसको मिस किया होता तो शायद हम आज बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे होते।
0: अच्छा,
1: तो अभी भी जो ये
0: तो
1: अवेयरनेस
0: मतलब
1: है महिलाओं के बीच में, ये बहुत ही कम परसेंटेज है, बहुत कम फीमेल्स इस पे ओपनली बात करती हैं। तो इसीलिए इस मिशन को मुझे आगे ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा चैलेंजिंग रहा, पर मजा बहुत आया क्योंकि मैं पैन इंडिया काम कर रही हूँ अपने मिशन को लेकर के, तो
0: अच्छा
1: मेरी ट्रैवलिंग भी काफी होती है, बहुत सारे सिटीज और स्टेट्स में मैं काम कर रही हूँ, बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, इवन डॉक्टर्स भी हैं मेरे साथ में जो मेरे इस मिशन को
0: अच्छा
1: आगे बढ़ा रही हैं। जी
0: तो कोई ऐसे कोई दो चार टिप्स आप दे सकते हैं कि बेसिक साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर इस तरह का महिलाओं को कोई कैंसर की प्रॉब्लम है तो उनकी क्या ऐसा कुछ बता सकती हैं?
1: जी बिल्कुल। देखिए बेसिक सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो एक फीमेल जो है अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है, क्योंकि जब हम स्नान के लिए जाते हैं तो आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं, आपको उसमें अगर कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है, जैसे सपोज करिए कि कई बार हमें लगता है कि कुछ लंप्स वगैरह हमें ब्रेस्ट में फील हो रहे हैं, तो उसको नजरअंदाज ना करें, या फिर शेप और साइज में आपको अगर लग रहा है कि हाँ कुछ डिफरेंस है, या जैसे दोनों ब्रेस्ट में अगर साइज में चेंज आया है, शेप में चेंज आया है, तो आप इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करें, या आपको फील हो रहा है कि निप्पल में से कुछ अनवांटेड डिस्चार्ज हो रहा है, तो उन चीजों को लाइटली ना लें, आप उसके लिए इमीडिएट डॉक्टर को विजिट करें, आप अपना स्क्रीनिंग कराएं, मैमोग्राफी वगैरह होती है ब्रेस्ट की, तो वो सारी चीजें कराएं, तो स्क्रीनिंग से आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल इन्फेक्शन है या उसमें कुछ फर्दर प्रॉब्लम है। ऐसे इसी से रिलेटेड जैसे सर्वाइकल कैंसर है, सर्विक्स कैंसर जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए भी आप अपना जो है, अगर आपका लग रहा है कि एबनॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग है, अदर देन पीरियड्स भी आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप उसको नजरअंदाज ना करें, उसके लिए भी आप डॉक्टर को विजिट करें। पैल्विक पेन आपको ज्यादा है तो आप डॉक्टर को विजिट करें, या ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर आपको पेन हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर को विजिट करें। अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, किस कलर का डिस्चार्ज है आपको, फाउल स्मेल बहुत ज्यादा है, तो आप डॉक्टर को विजिट करें। ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर हम ओवरियन कैंसर की बात करें, तो अगर पेट में जैसे कई बार हमें ब्लोटिंग हो जाती है, खाना खाने की इच्छा नहीं करती, या एब्डोमिनल स्वेलिंग हो रही है पेट में तो भी हमें ब्लोटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन है, कई बार हम समझ लेते हैं कि यार पेट में ऐसे ही दर्द हो रहा है, तो उसको भी लाइटली ना लें, एक बार कुछ नहीं जाता, एक बार अगर आप डॉक्टर को विजिट कर लेंगे और डॉक्टर ओके कर देगा कि नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने आप को सेफ रख सकेंगे।
0: ब्यूटीफुल, तो बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए यहाँ रुक के एक गाने के लिए रुक जाते हैं, फिर आपसे थोड़ी वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपका ये टॉपिक तो मुझे लगता है कि पूरा हमें एक दो इंटरव्यू करने पड़ेंगे तब कवर होगा। काफी आपने इसमें गहन अध्ययन भी किया है और आप इससे दिल से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। चलिए रुक जाते हैं एक गाने के लिए, फिर आगे चलें।

0: लोग भी, तो उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि भाई
1: ओके
0: अगर आप, यदि जैसे कोई सपोज करिए कोई स्टिचिंग में बहुत अच्छा है और
1: ओके
0: उसको फाइनेंशियल क्रंचेस भी हैं एंड शी वांटेड टू डू समथिंग पर उसको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो एक ब्रिज हम लोग क्रिएट करते हैं उन दोनों पार्टीज के बीच में कि जो करना चाह रही है फीमेल और ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस वो नहीं कर पा रही है, और जिनका इंस्टीट्यूट है तो दोनों को कोलैबोरेट करा दिया और उनको डिस्काउंटेड प्राइस में या कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी, कुछ फीमेल्स होती हैं जो हमारे साथ में इनिशिएट ले लेती हैं कि कोई बात नहीं फीस एडजस्ट कर लेंगे हम लोग या फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेनिंग दे देंगे। तो इस तरीके से ऐसे ही ब्यूटिशियंस भी हैं या हम लोग ब्यूटी कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी हमारे पास होते हैं, तो कुछ ब्यूटिशियंस हमारे साथ में ऐसे एसोसिएट कर जाती हैं तो उनका जो है थोड़ा सा बेटरमेंट हो जाता है, उनके पार्लर्स पे उनके सैलॉन्स पे जो है फुटफॉल बढ़ जाता है, क्योंकि ब्यूटी ट्रीटमेंट तो आपको पता है फीमेल्स को चाहिए ही होता है, तो वो भी हमारा हम लोग हाँ रूट कॉज फाइंड आउट करके ही ब्यूटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो जो प्रॉब्लम बार बार जो उनको रूटीन में प्रॉब्लम आती है स्किन रिलेटेड वो भी उनकी क्योर हो जाती है।
1: चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कि कोई ऐसी कोई खास टचिंग स्टोरी, कोई आपकी सक्सेस स्टोरी हो जो आपने किसी की हेल्प की है, ऐसी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी आपके बहुत करीब हो तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें।
0: जी ये आई थिंक 2022 की बात है। मैं एक बार दिल्ली के लिए ट्रेवल कर रही थी एंड बस से मेरी ट्रेवलिंग हो रही थी, तो बस में जो मेरी को पैसेंजर थी वो एक गांव से थी और जयपुर डॉक्टर को विजिट करके आ रही थी वो, तो हाँ शी वॉज हैविंग हर रिपोर्ट्स और उनके हस्बैंड भी थे साथ में, तो ऐसे ही जैसे आप बात कर रहे होते हैं दिल्ली तक का सफर है तो हम को पैसेंजर से बातचीत कर लेते हैं, तो मैंने उनसे बातचीत स्टार्ट करी, मैंने कहा रिपोर्ट्स आपकी, तो मैंने कहा देख सकती हूँ, बोले जी बिल्कुल देखिए। उनकी रिपोर्ट्स देखी तो उनके हस्बैंड ने बताया कि हर महीने लेके जाना पड़ता है और बोले 10-15 हज़ार का खर्चा हो जाता है, डॉक्टर कभी कुछ टेस्ट लिख देते हैं कभी कुछ लिख देते हैं और इसका दर्द तो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तो मैंने कहा भाई रिपोर्ट्स तो आपकी नॉर्मल है, रिपोर्ट्स में तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने अपने बारे में बताया, तो बोली वो मतलब ये पावटा के पास में दातिल गांव है, 5-7 किलोमीटर अंदर पावटा से इंटीरियर में, तो वहां की रहने वाली थी, तो बोली कि मैडम आपको अगर मैं बुलाऊं अपने गाँव में तो आप आओगे, मैंने कहा बिल्कुल आऊंगी, तो बोले ठीक है, बोले थोड़े दिन बाद, बोले अभी हमारा उनका फसल कटाई का टाइम चल रहा था, तो बोले ये खत्म हो जाए 10-12 दिन बाद फिर मैं आपको फोन करूंगी, तो मैंने कहा ठीक है। 15 दिन बाद उनका कॉल आया कि मैं ऐसे ऐसे बस में मिली थी और आपने मुझे ये बताया था तो आप आएंगे क्या, तो मैंने कहा ठीक है मैं अपना शेड्यूल चेक कर लेती हूँ, तो फिर वहां मैंने विजिट किया तो शी गैदर्ड 50 to 60 फीमेल्स,
1: अरे वाह,
0: और
1: अच्छा।
0: उसके बाद में हमने मतलब ज्यादा उनको मेरे बारे में नहीं पता था कुछ नहीं पता था, पर फिर भी उन्होंने 50-60 फीमेल्स को इकट्ठा किया, हमने अपना सेमिनार कंडक्ट किया
1: ओह,
0: और उसके बाद में उन्होंने सैनिटरी नैपकिन और पैंटी लाइनर्स हमारे ऑर्गेनिक आते हैं वो उन्होंने यूज किए, और
1: अच्छा।
0: फिर उनका मतलब आफ्टर अ मंथ मेरे पास फोन आया कि मैम मेरे को तो दर्द ठीक हो गया, कोई दवाई
1: अच्छा।
0: मैंने ली कुछ नहीं लिया, आप दोबारा आ सकते हो क्या, मैंने कहा ठीक है मैं दोबारा आऊंगी। सेकेंड टाइम जब मैं गई तो उन्होंने अपने जो आसपास के 3-4 गांव थे वहां से फीमेल्स को बुलाया हुआ था, एंड आई वाज
1: अच्छा
0: रियली सरप्राइज कि दे डोंट हैव एनी मेडिकल फैसिलिटी देयर, मीन्स
1: अच्छा
0: जो उनको व्हाइट वाटर डिस्चार्ज जिसको हम लुकोरिया बोलते, छोटी छोटी बच्चियों को इतनी परेशानी थी लुकोरिया की, उनको मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है को, तो यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी का इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया।
1: ओके
0: उसके बाद में वो मेरे साथ एसोसिएट हुए एंड शी वॉज अ आशा वर्कर, तो
1: ओके ओके
0: उन्होंने मेरे साथ में हाँ वो एसोसिएट हुई और उन्होंने पूरा मतलब बोले मैम आप फिक्र मत करो, बोले मैं जितनी मतलब मेरे से हो सकेगा जितने गांव की फीमेल्स मैं आसपास से इकट्ठा कर सकती हूँ, बोले मैं आपको हर महीने बुलाऊंगी आप हर महीने आओ और इस चीज को इनको समझाओ, तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे उन एक मतलब ट्रैवलिंग में आप किसी से मिलते हैं, और आज मेरा पारिवारिक संबंध है उनके साथ में,
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: जब भी
1: बात,
0: मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता

0: ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में ही गई हूँ।
1: देखिए, बहुत सारे ऐसे पेन्स होते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं हो, और आपने, आई मीन, वी सैल्यूट यू। आप हमारे लिसनर्स को बहुत अच्छा लगेगा कि इस तरह की सक्सेस स्टोरी सुन के, और आप जिस तरह से जुनून के साथ काम कर रही हैं इस मिशन पे, और महिलाओं की जो समस्या है वो कई बार ओपन में डिस्कस नहीं होती है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और अगर उसमें आप कुछ हेल्प कर पा रही हैं तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो अब शिवांगी जी, मुझे बिल्कुल, हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं, अब थोड़ा सा ये बताइए कि आप शिवांगी के रिलैक्स कैसे करती हैं, आपके शौक क्या हैं, आप क्या पसंद करती हैं, म्यूजिक पसंद है, पढ़ना पसंद है, क्या आपके शौक हैं?
0: हाँ, मेरे को अगर मैं अपनी हॉबीज की बात करूँ तो मुझे ड्राइंग, पेंटिंग या आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क बहुत अच्छा लगता है। एक्सक्यूज
1: ओके ओके, वेरी गुड।
0: मी। और बाकी मैं गाने सुनना बहुत पसंद करती हूँ, स्पेशली
1: अच्छा,
0: ओल्ड सॉन्ग्स जो होते हैं, या जो मतलब ऐसे तड़क भड़क वाले गाने मुझे पसंद नहीं है, बहुत माइल्ड से सॉफ्ट म्यूजिक वाले सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई एम
1: चलिए,
0: वेरी मच फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक।
1: ओके। तो आप गाती भी हैं, कुछ गाना गाती हैं, कोई एक लाइन गुनगुना सकती हैं
0: गाना
1: हमारे
0: मतलब
1: लिए, अगर अगर मन हो तो, आपका कंफर्टेबल हो तो? थोड़ा सा
0: जी,
1: अपन ने
0: मैं
1: बहुत
0: खुद
1: हैवी बातें कर
0: के
1: ली,
0: लिए कभी
1: एक
0: कभार
1: लाइन।
0: गा लेती हूँ, खुद के लिए कभी
1: अच्छा,
0: गा लेती हूँ, ऐसे पब्लिकली
1: हाँ,
0: मैंने कभी कभी परफॉर्म नहीं किया।
1: गुनगुनाना चाहे तो एक लाइन गुनगुना लीजिए,
0: जी
1: पे जिससे आज हमने बहुत सीरियस बातें कर ली, तो हम सोच रहे हैं
0: जी
1: थोड़ा सा लाइट बातें कर लेते हैं।
0: जी बिल्कुल। मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो मतलब मैं अक्सर सुना करती हूँ,
1: जी जी
0: वो मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी।
1: जी
0: एक प्यार का नगमा है,

0: में लोक गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
1: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
0: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
1: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खांट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
0: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे, तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
1: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
2: अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो,
3: भारत माता की
2: जय,
3: भारत माता की
2: जय।
1: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजा मंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
0: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी। सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
1: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
0: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
1: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गाँव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
0: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
1: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
0: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सेंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सेंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
1: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
0: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
4: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो?
1: अपनी

0: औकात पहले देखो। अभी बताता हूं तुमको, सिपाहियों इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
1: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
0: साहब ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
1: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
0: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
1: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
0: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
1: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
0: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
1: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
0: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
1: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
0: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
1: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो।
0: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
1: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
0: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
1: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
0: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
1: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
0: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
1: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
0: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
1: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
0: कालीबाई तुम्हें हमारा सलाम। कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
4: ये कहानी है प्राचीन यूनान की, लेकिन आइए कहानी सुनने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यूनान की। आपको बता दें कि यूनान दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। अंग्रेजी में इसे ग्रीस भी कहते हैं।
5: ये देश भूमध्य सागर में स्थित बहुत से द्वीपों का समूह है। यहाँ के निवासियों को यवन या यूनानी कहते हैं। यहाँ की राजभाषा यूनानी है, अंग्रेजी में इसे ग्रीक कहेंगे। ग्रीक भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है और यूरोप की लगभग सभी भाषाओं को इसने बहुत से शब्द दिए हैं। यहाँ की मुद्रा या करेंसी है यूरो। तो साथियों, लगभग सभी राष्ट्रों का कोई ना कोई राष्ट्र वाक्य होता है, जैसे हमारे देश का राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते। वैसे ही यूनान का राष्ट्र वाक्य है एलेफ्थेरिया थानाटोस, जिसका अर्थ है या तो स्वतंत्रता या मृत्यु, अन्य कोई विकल्प स्वीकार्य नहीं है।
4: यूनान की राजधानी है एथेंस, जहां से ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। उन दिनों आज की तरह ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक नहीं हुआ करते थे।
5: प्राचीन ओलंपिक खेलों में उन दिनों प्रथम आने वाले विजेता को जैतून की पत्तियों का मुकुट, द्वितीय आने वाले को जैतून के फलों की माला और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को जैतून के पत्तों की माला पहनाई जाती थी। तो साथियों, आइए अब सुनते हैं प्राचीन यूनान की ही एक बहुत ही प्यारी और प्रेरक कहानी। ये कहानी है प्राचीन यूनान के एक बहुत अच्छे चित्रकार की। उसके बनाए गए चित्रों की हर जगह बड़ी धूम थी।
4: एक बार की बात है, उसने एक नर्तकी का आदमकद चित्र बनाया। वो बेहद खूबसूरत चित्र था। जब इस चित्र की प्रदर्शनी की गई, तो समाजी की तहलका मच गया। यूनान में हर जगह उस चित्र की चर्चा होने
6: लगी।
4: भीड़ की भीड़ उस चित्र को देखने के लिए आने लगी। ये इतना सुंदर और जीवंत चित्र था कि लगता था कि नर्तकी बस अभी बोल पड़ेगी।
5: नर्तकी का पूरा सौंदर्य इस पेंटिंग में मानो सजीव हो गया था। इस पेंटिंग की चर्चा उस देश के राजा के कानों में पड़ी। राजा भी ये प्रदर्शनी देखने आया और इस चित्र को देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्रकार को बहुत से उपहार दिए।
4: इतना ही नहीं, राजा ने उस चित्रकार को शाही चित्रकार घोषित कर दिया। इस चित्र ने उस चित्रकार को रातों रात बहुत लोकप्रिय बना दिया। वो स्टार बन गया। इस चित्र की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई। अब वो बेनाम चित्रकार बहुत प्रसिद्ध हो गया था।
5: जहां भी वो जाता, लोग सम्मान से खड़े हो जाते, उसका अभिनंदन करते और उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते थे।
4: कहते हैं कि सफलता का भूत कई बार सिर चढ़कर बोलता है। व्यक्ति के मन में अहंकार पैदा हो जाता है और वो अपने अलावा, अपने कौशल के अलावा कुछ और नहीं सोचता।
5: यही उस चित्रकार के साथ भी हुआ। अपनी कला से वो इतना प्रभावित हुआ कि अब वो दिन भर उस चित्र के सामने बैठा रहता था और उसे ही निहारता रहता था। वो बेसुध सा हो गया था। वो सबको यही बताता कि देखो मैंने कितना महान काम किया है और मेरी बराबरी का और कोई कलाकार है ही नहीं। क्या बात है, वाह वाह मेरी कला, क्या सुंदर चित्र बनाया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा चित्र कोई और कभी बना सकता है, शायद ऐसा चित्र कभी किसी ने नहीं बनाया है। वाह कितनी महान कला है मेरे अंदर।
4: जी हाँ साथियों, इस मनोदशा में इंसान अपने आप से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे अपने सिवाय कुछ नहीं सोचता। अब तो ये होने लगा कि वो उस चित्र से उठते बैठते बात करता था। उसकी दीवानगी इतनी हद तक बढ़ गई कि वो अक्सर रातों को भी उठ जाता था और उस चित्र से बातें करने लगता था।
5: हाँ आइए आइए, देखने आइए, क्यों नहीं, देखिए देखिए, है ना कमाल का चित्र। बिल्कुल, कितना सुंदर चित्र है ये, मैं जब जब इसे देखता हूं मुझे ऐसा लगता है ये और सुंदर होता जा रहा है। वाह अथा सुंदर।
4: और सुबह जो भी उसे मिलता सबको यही बताता कि देखो मैंने कैसा महान कार्य कर दिखाया।
5: लोगों को शुरू में ये बात अजीब नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये तो असामान्य बात है। महीने बीत गए, अब उस चित्रकार ने दूसरी पेंटिंग्स बनाना भी छोड़ दिया था, वो बस अपने उसी चित्र को देखता रहता था।
4: एक दिन की बात है, वो सवेरे उठा और हर रोज की तरह अपनी उसी पेंटिंग को देखने चल दिया। उसे बहुत गहरा झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पर किसी ने ढेर सारा रंग उड़ेल दिया है और किसी तेज चाकू से उस पेंटिंग को जहां तहां से काट दिया है। ये देखकर उस चित्रकार को मानो पागलपन का दौरा पड़ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा,
6: ये क्या हो गया, किसने किया है ये काम, किसने किया ये?
4: वो पूरे म्यूजियम में शोर मचाने लगा,
6: किसने किया ये?
4: सब सहम गए थे। अचानक पीछे से गंभीर आवाज आई,
7: मैंने किया है।
4: वो चित्रकार पीछे मुड़ा तो चौंक गया, पीछे उसके गुरुजी खड़े थे।
5: गुरुजी आप, क्या ये आपने किया है?
7: हाँ मैंने किया है ये काम।
6: लेकिन क्यों?
7: इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है, तुम अपनी कला से संतुष्ट हो गए हो।
6: लेकिन गुरुजी वो मेरी सर्वोत्तम रचना थी, इससे अच्छा तो कुछ बन ही नहीं सकता।
7: नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया जिसे संपूर्ण कहा जा सके।
5: गुरुजी,
7: अब तुमने अभ्यास करना, कुछ नया बनाना सब छोड़ दिया है। अब तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने बनाया उससे अच्छा कुछ बन ही नहीं सकता। ये बात गलत है।
6: लेकिन गुरुजी, मैं जानता हूं कि अब मैं इस पेंटिंग से बेहतर कुछ बना ही नहीं सकता।
7: तुम्हारी यही सोच गलत है। तुम प्रसिद्ध तो हो गए हो लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुए। उठो, पेंट ब्रश लेकर अब फिर से शुरू हो जाओ, कुछ नया और बनाओ जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं।
4: दोस्तों, उस चित्रकार को बहुत पश्चाताप हुआ और फिर जब उसने दोबारा पेंट ब्रश उठाया तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक से एक ऐसी बहुमूल्य पेंटिंग्स बनाई जो आज यूनानी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। साथियों, सीखने का कोई अंत नहीं है।
5: जी हाँ, सीखते रहिए, प्रश्न करते रहिए, अवलोकन करते रहिए।
4: इस बात से संतुष्ट मत हो जाइए कि प्रकृति में या आसपास कुछ होता है। आप तब तक संतुष्ट न होइए जब तक ये न जान लें कि ऐसा क्यों होता है।
5: यदि आपने कोई काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, किसी विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, संगीत के अभ्यास से बहुत निपुणता प्राप्त कर ली है, तो अब इतने में ही संतुष्ट ना हो जाइए कि अब और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है।
4: सीखते रहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग।
5: यानी सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना नहीं छोड़ती।
7: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
3: साथ है तो संभव है।
8: ये बात बहुत पुरानी है। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उन सब में गहरी मित्रता थी। वे सभी बड़े मेल प्रेम से रहते थे। जंगल में बड़े बड़े तालाब थे, जहां बहुत से जल जंतु भी रहा करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा घना पेड़ था। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं थीं, जिस पर बहुत से जंगली हंस बसेरा करते थे। वे हंस सुबह दाना पानी लेने के लिए उड़ जाते और शाम को उसी पेड़ पर वापस आ जाते। पेड़ के पास ही एक झील थी। उसके शीतल जल में वे खूब नहाते और किलोल करते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था।
9: एक दिन की बात है, जब पक्षी शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक छोटा सा पौधा उगाया है। उस पौधे में एक छोटी सी कोमल लता थी, जो पेड़ के तने से चिपकी हुई थी। उसे जब हंसों ने देखा तो आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक हंस, जो आयु में दूसरे हंसों से बड़ा था और बुद्धिमान भी, उसने कहा,
10: क्या तुम उस छोटे पौधे को देख रहे हो जिससे

0: धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगा और उसकी लता पेड़ के तने का सहारा लेकर बड़ी होने लगी। अब वो लता इतनी बड़ी हो गई कि वो लगभग पेड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंच गई।
1: उस पेड़ पर बसेरा करने वाले जंगली हंसों का झुंड रोज सुबह भोजन की तलाश में निकल जाता और शाम को हमेशा की तरह वापस आ जाता था। उन्हें वो पेड़ बहुत सुरक्षित लगता था क्योंकि वो ऊंचा था और उसका तना इतना चिकना और सीधा था कि कोई भी इस पेड़ पर आसानी से चढ़ नहीं सकता था। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात है, शाम को जब सारे हंस वापस आ गए तो बुद्धिमान हंस ने सबको बुलाया और कहा,
2: साथियों, आज मैंने एक बार फिर से उसी विषय पर बात करने के लिए आप सबको बुलाया है।
3: उसी विषय पर? अरे किस विषय पर?
2: उसी पौधे के बारे में जिस पर हमने एक दिन चर्चा की थी, लेकिन आप सब ने उसे टाल दिया था।
4: उफ़ हो, फिर वही बात।
5: अरे ऐसा तो सारे जंगल में होता रहता है।
3: हाँ, पौधे उगते हैं, बड़े हो जाते हैं, आपको क्यों बेकार की चिंता हो रही है?
2: साथियों, मेरी चिंता व्यर्थ नहीं है।
3: ओहो,
2: ध्यान से देखो।
3: अरे देख तो रहे हैं।
2: वो लता पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़कर वो इतनी ऊंची हो गई है कि हमारे पेड़ की डालियों तक पहुंच गई है।
0: बात आई गई हो गई। इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। वो लता धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी और अब उसने एक मोटी रस्सी का रूप धारण कर लिया था। वो लता अब लगभग पेड़ की सभी शाखाओं तक पहुंच गई थी।
1: और वही हुआ जिसका डर था। एक सुबह जब सभी पक्षी भोजन की तलाश में निकल गए, एक बहेलिया वहां आया। उसने चुपके से कई बार देखा था कि उस पेड़ पर बहुत से जंगली हंस रहते हैं।
6: ये जगह ठीक है, यहाँ जाल बिछाता हूँ, यहाँ बहुत सारे पंछी फंस जाएंगे।
1: बहेलिया उस मजबूत लता की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और अपना जाल बिछा दिया।
0: जाल बिछाकर वो चला गया। उसे पता था कि पक्षी अब शाम को ही आएंगे। शाम को पक्षी वापस आए। बहेलिये के बिछाए जाल पर उनकी नजर नहीं गई और जैसे ही वो डालियों पर बैठे, वे सब के सब उस जाल में फंस गए।
7: अरे कोई है, हमारी सहायता करो।
8: अरे हमें छुड़ाओ भाई, हमारी सहायता करो भाई।
2: अरे ये क्या हो गया?
8: फंस गए भाई,
7: हम सब जाल में फंस गए।
2: अरे ये कैसे हुआ? बचाओ। तुम लोग भी मेरी बात मन मानते हो ना? मैंने कहा था
8: ऐसे फंस गए हम।
2: अरे क्या हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुम लोग सुनते कहाँ हो?
1: वे सभी चिल्लाते रहे, पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब बेकार। संघर्ष करते करते वो थक गए। उन्होंने बुद्धिमान हंस से कहा,
3: हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी।
5: काश हमने आपकी बात मानी होती तो आज का दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता।
3: अब आप ही कुछ कर सकते हैं, कोई उपाय बताइए।
2: शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने बहुत पहले ही तुम सबको चेतावनी दी थी, लेकिन तुम सब ने नहीं सुना। संकट के समय अब हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। ध्यान से सुनो, कल सुबह जब वो बहेलिया आएगा तो हम सबको ऐसा भी नहीं करना होगा मानो कि हम मर चुके हैं।
3: भला इससे क्या होगा?
2: कोई भी बहेलिया मरा हुआ पक्षी नहीं चाहेगा। वो एक एक करके हमें जाल से निकालकर भूमि पर फेंक देगा। जैसे ही वो आखिरी पक्षी को नीचे फेंकेगा और पेड़ से नीचे उतरेगा, इसी बीच हम सब एक साथ उड़ जाएंगे।
3: हाँ, ये ठीक है,
7: उड़ जाएंगे हम सब।
0: और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सुबह बहेलिया वहां आया। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि बहुत से पक्षी उसके जाल में फंस गए हैं, उसे बड़ा लाभ होने वाला है। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ा और जाल के पास जा पहुंचा। लेकिन ये क्या,
1: बहुत से पक्षी फंसे हुए थे लेकिन वो निश्चल पड़े हुए थे। उनकी गर्दनें ढलकी पड़ी थी और कोई हरकत नहीं थी।

0: उसने जाल को हिलाया भी, लेकिन किसी पक्षी ने कोई हरकत नहीं की। बहेलिया बड़बड़ाने लगा,
1: अरे ये क्या, ये सब तो मरे पड़े हैं। हो सकता है इन्होंने कोई विषैला बीज खा लिया, पर अब तो कोई लाभ नहीं। अब क्या करूं, इन्हें नीचे फेंक देता हूं, फिर जाल लेकर उतरना भी आसान हो जाएगा। हाँ ऐसा ही करता हूं।
2: तो इस तरह बहेलिये ने एक एक करके पक्षियों को जाल से निकालना शुरू किया और वो उन्हें नीचे जमीन पर फेंकता चला गया। अब अंतिम पक्षी भी भूमि पर फेंका जा चुका था।
0: जैसे ही आखिरी पक्षी जमीन पर गिरा, योजना के अनुसार सभी उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए। बहेलिया हाथ मलता हुआ आश्चर्यचकित और ठगा सा उन्हें देखता रह गया।
2: साथियों, प्रसिद्ध मोटर व्यवसायी हेनरी फोर्ड ने कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड बट डिवाइडेड वी फॉल। इसका भाव ये है, संगठित होकर हम सशक्त बनते हैं और विभाजित रहकर निर्बल। यानी
3: साथ है तो संभव है।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: वो आखिरी पत्ता।
0: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
2: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
0: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनविच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनविच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
2: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
6: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
7: ओ सू, ग्रीनविच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
6: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनविच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
2: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी, बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
1: सू
6: जी,
1: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है?
6: जी हाँ।
1: फिर मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
6: जी डॉक्टर साहब।
1: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
6: मैं पूछती हूँ।
2: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
8: 15, 40
6: क्या?
2: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
8: 13, 12, 11 ओह
6: जॉन्सी,
8: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
6: क्या गिन रही हो?
8: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए।
6: क्या कम हो गए हैं?
8: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
2: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
6: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
8: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
6: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है, खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
8: Only four.
6: मेरी तरफ देखो
8: सू, ओनली 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
6: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
8: 3 पत्तियां।
6: पत्तियां?
8: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
6: हाँ,
8: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
6: क्या लगता है?
8: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
6: क्या जॉन्सी?
8: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
6: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
8: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
6: हाँ
8: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
6: जॉन्सी,
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
0: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और
7: लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
7: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
1: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
7: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
8: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
1: जोंसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
7: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
8: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
7: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
8: सू मेरी दोस्त।
6: हाँ जॉन्सी।
8: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी। मंद मंद हवा चल रही थी। आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था। चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
8: सू।
6: हाँ जॉन्सी।
8: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
6: हाँ बिल्कुल,
8: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
6: बिल्कुल जॉन।
8: हाँ, हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
6: पत्ता?
8: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
6: हाँ,
8: हाँ,
6: मैंने देखा, मैंने देखा जॉनसी, मैंने देखा।
8: देखो, अब वो वहीं पर है अभी, वो नहीं गिरा सू।
6: हाँ जॉनसी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
8: हाँ, हाँ।
0: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
1: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
0: जॉनसी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
6: जॉनसी, कैसा महसूस कर रही हो?
8: बेहतर।
6: ये लो कॉफी पियो।
8: थैंक यू
6: जॉनसी। एक बुरी खबर भी है।
8: क्या हुआ?
6: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
8: कौन बेरमन? वही बुरे कलाकार?
6: हाँ।
8: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
6: हाँ वही।
8: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
6: हाँ वही मिस्टर बेरमन।
8: ओह गॉड,
6: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
8: क्या?
6: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
8: क्यों नहीं गिरा?
6: हाँ,
8: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
2: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
6: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
8: ओह,
6: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
8: पेंटिंग?
6: हाँ।
8: कैसी पेंटिंग?
6: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
8: ओह, तो वो पेंटिंग है?
6: हाँ।
8: असली पत्ता नहीं है?
6: नहीं।
8: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
6: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
8: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
6: हाँ जॉनसी,
8: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
6: हाँ, उन्होंने बना दिया।
8: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
6: हाँ,
8: मास्टरपीस।
6: हाँ,
8: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
0: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं। और जैसा कि आपने बताया, इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र है।
2: जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके, इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे।
2: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, सबके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए डॉक्टर।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और जिसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
2: तो दोनों को ही खानी।
3: और अगर किसी को गंभीर

0: लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
1: जी, और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
0: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
1: अच्छा। जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा
0: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
2: जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
1: जी,
0: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
1: जी
3: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
4: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
5: हूँ से आरजे राकेश,
6: अने हूँ से आरजे कमता डामोर,
5: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती बाड़ी, आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर।
3: नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है तुम्हारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश, अने रोजनी जेम तमारी वस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थायो से। अने किसान भाइयों, हूँ रोज तमारी वस मा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायला मुद्दा, खेतीवाड़ी नी समस्याओं अने तिना समाधान नी वातियों लीने रोज इनाज समय पर हाजिर थातो रहूं से। तो किसान भाइयों, अने आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा आपड़ो चर्चानो विषय रहे सब्जी नी खेती मा सफल किसान अने काला नमक सावल देखी किसान उत्पादक संगठन केवी रीते फल फूली रह्यो, ये वातियो आज आपू इना कार्यक्रम मा हमलवाना से। अने किसान भाइयों, ये बधी वातियो आपुन वतारे कृषि था जोड़ायला अनुभवी अने विशेषज्ञ लोग अने हाथे हाथ एवा किसान भाई त्या यू काम करीने घणो असल अने मोटो मुनाफो कमाई रह्या से। तो सालो किसान भाइयों, आज ना कार्यक्रम मा आपू हामली खेतीवाड़ी नी तकनीकी वातियो।
7: हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो किसान अलग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप उनकी दास्तान को जानें और आप भी अपनी खेती किसानी को बेहतर बना सके। आज की हमारी इस कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले एक किसान से। बता दें आपको, ये पहले भी पारंपरिक खेती किया करते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि खेती किसानी में क्यों ना कुछ हटकर किया जाए, और इसी सोच के साथ ये आगे बढ़े। इन्होंने अपनाया प्राकृतिक खेती को, और आज के समय की अगर हम बात करें तो इनके फार्म में सब्जियों के साथ अन्य फसलों की खेती होती है और ये बहुत ही सफलतापूर्वक बागवानी भी कर रहे हैं। तो आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का।
8: भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ कृषि है और लगभग 65% की आबादी किसी न किसी रूप से कृषि क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। कृषि उत्पादन के साथ ही ये लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। भारतीय किसान विभिन्न परंपरागत और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि फसल की बीज उत्पादन, जल संरक्षण तकनीक, कृषि मशीनरी, सूखे से लड़ने के लिए बुनियादी ढांचे जैसे कि जल संचयन एवं समय पर समाधान की तकनीक। आज का किसान समय के साथ बदल रहा है और खेती किसानी को नया रूप दे रहा है। गाजियाबाद। जी हाँ, गाजियाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है जो NCR क्षेत्र में आता है। यहाँ के किसान शहरों के चकाचौंध वातावरण से हटकर गांव के वातावरण में रहना पसंद करते हैं। गाजियाबाद जो कि अपनी कृषि और औद्योगिक सक्रियता के लिए काफी प्रसिद्ध है, यहाँ के किसानों ने कृषि को अपना मुख्य आजीविका स्रोत बनाया है। गाजियाबाद के किसान अपनी मेहनत और समर्पण के साथ भूमि की संपत्ति को सही ढंग से

0: प्रबंधित करते हैं और न केवल अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं। खेत में फसलों की देखभाल करते किसान हैं सूबे सिंह यादव, जो खेतों में दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और खुद में मगन रहते हैं। खेती की परंपराओं के बारे में बता रहे हैं आज के सफल किसान सूबे सिंह यादव जी।
1: पहले समय में हम पारंपरिक खेती करते थे, जैसे करते आए हैं, तो उस समय हमें सब्जी की, फल की ऐसे जरूरत पड़ती रहती थी कि क्या करे जाए। लेकिन गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा इनसे उब चुके थे। लेकिन धीरे धीरे हम सब्जी की तरफ मूवमेंट करा, हम सब्जी बोने लगे। सब्जी के बाद में कुछ नींबू के बाग लगाए हैं 5 बीघे में, तो उस नींबू के बाग से आमदनी बढ़ी। नींबू के बाग का हमने शुरुआत में, जैसे लागत के बारे में बताऊं थोड़ी सी, तो 30,000 की लागत आई उसमें। जैसे उसमें पेड़ आए, कुछ मजदूर लगे, खाद लगा, तो उसमें वो होती रही। उसके बाद में जैसे भी वो चलता रहा, तो इसमें अब आमदनी, इसमें मसूर और मूंग ये सारी चीज़ बोते रहे, तो आमदनी की अच्छी आमदनी हुई इसमें। अब तीसरी साल में इसमें 45,000 के नींबू बिके पिछले साल। अब के साल को अब डिलीवरी करेंगे तो शायद और भी ज़्यादा बिकेंगे, तो ये भी अच्छा रहा। दूसरी है सब्जी के लिए, सब्जी में जैसे आलू बोए हैं, आलू के बाद में हमने पेठा बो दिया। पेठे में हमने मूली बीच बीच में जो 10 फुट का डिफरेंस है उसमें मूली बोई, और मूली के साथ में धनिया बोया। तो मूली और धनिया में उसकी लागत तो हमें वसूल हो चुकी है, बाकी अब पेठा रहेगा, पेठा चलता रहेगा इसमें, तो वो भी आमदनी बढ़ी है इसमें।
0: कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। गाजियाबाद के किसान इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। कृषि का क्षेत्र किसानों के लिए अनमोल है। गाजियाबाद के किसान विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित करते हैं, जिनमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, अरहर, मसूर, मिलेट्स और आलू शामिल हैं। आज के सफल किसान सूबे सिंह यादव भी खेती को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इनका मानना है कि खेती में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर खेती में नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। इन्हीं सोच के साथ सूबे सिंह यादव आगे बढ़े और एक पॉली हाउस का निर्माण किया, जिसमें वे विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं।
1: पीछे जो पॉली हाउस है मेरे दिखाई हो रहा होगा, इस पॉली हाउस में हमने ये सोची कि भाई कुछ प्योद बनाने के लिए सिस्टम बनाया जाए इसके लिए। जैसे तो प्योद बनाने के लिए मक्खी मच्छर दवाई की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए हमने नेट हाउस लगाने के बाद में हमें कीड़े मच्छर की इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, और इसमें बेहतरीन सब्जी भी होंगे। तो सब्जी होते हैं 6 महीने कम से कम टमाटर चल रहे हैं, आज इसमें मिर्ची की बढ़िया चल रही है, नर्सरी इसमें उगाते हैं। ये अपने पर्सनली अपने रिस्क के अनुसार हमने ये आमदनी के लिए बनाई। सब्जी हम और ले रहे हैं, टमाटर होगी, मिर्च होगी, खीरा होगा, घिया होगी, तोरी भी हैं, ये समय समय के अनुसार ये लगाई रखते हैं, जिसमें चलती रहे। टिंडे भी हैं, भिंडी भी बोते हैं कभी, तो इन सब्जियों की खेती कर रहे हैं। आलू का सीजन के बाद धान और गेहूँ ये तो हमारी मेन क्रॉप है ही हैं, लेकिन सीजनेबली जैसे आलू बो दिए, आलू के बाद में सब्जियां बो दी, सब्जी के बाद कुछ चारा बो दिया, कुछ ऐसी सरसों की भी फसल साथ में चल रही है, तो ये सब सब्जियों का हमें ब्यौरा रखकर।
0: पॉली हाउस एक विशेष प्रकार की संरचना है जो फसलों की उत्पादन और संरक्षण के लिए डिजाइन की जाती है। ये एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता वाली फसलें उत्पन्न होती हैं। पॉली हाउस में फसलों की उत्पत्ति वातावरणीय प्राथमिकताओं के अनुसार नियंत्रित की जाती है। सफल किसान सूबे सिंह यादव भी पॉली हाउस के महत्व को समझ चुके हैं और इसके लिए भविष्य की रणनीति भी तैयार करके रखे हुए हैं।
2: यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान से हम जानेंगे कि इस दिशा में बढ़ने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इनोवेटिव फार्मर के सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आइए इन सब के बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: apa?
1: ब्रेक के बाद कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए रुख करें हमारे सफल किसान का, उनसे जाने उन्होंने ट्रेनिंग के लिए किस ओर अपने कदम बढ़ाए थे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड उन्हें कब और किस लिए दिया गया था। आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान का।
2: किसान खेत में जी तोड़ मेहनत के साथ नवाचार को भी अपनाता है ताकि खेती में कुछ बदलाव लाया जा सके। इसी सोच के साथ सफल किसान सूबे सिंह यादव जी आगे बढ़े और नवाचार अपनाकर खेती में कुछ अलग करने की ठानी। सूबे सिंह यादव जी ने कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग ली और अन्य फसलों का उत्पादन करने लगे। इसके लिए इन्हें इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
3: 2017-18 में एक इनोवेटिव अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया, जिसका पूरा श्रेय केवी के मुरादनगर गाजियाबाद को जाता है। वहाँ के डॉक्टरों ने एक थोड़ी सी बात हमें कही, हमने पहले सब्जी बोने के इरादे था और हम सब्जी के लिए तो तैयार थे, खेत खाली है हमारा, लेकिन उस समय उन्होंने कही कि भाई आपने मसूर दाल के लिए आपको दाल बोनी पड़ेगी हमारे डैमों के लिए। मैं कहती ठीक है, हम दाल बोएंगे और मसूर की दाल बोई हमने, लेकिन उनके बगैर बताए हमने उसमें बीच में नाली बना कर और हमने लो टनल में खीरा लगा दिए, क्योंकि हमारी प्लानिंग पहले से ही खीरे की ही, तो लो टनल में जैसे ही हमने खीरा लगाए तो वे 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद में देखने को केवी के डॉक्टर आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या है मगोदी, ये तो आपके बगैर बताए हमने कर दिया, लेकिन देख लो अब चल जाए तो नौकर नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, तो हमें और ज़्यादा अच्छा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद में हमें उसी खीरे में घिया की बेल लगा दी, घिया की प्योत बनाकर घिया के वो लगा दिए। जैसे ही लोटर नल को हमने कवर्ड करा, जैसे खीरा लगाया, तो उसमें उसके अंदर हमने पालक और धनिया दोनों बीच में नीचे नाली में डाल दिया, जिससे हमें पालक और धनिया से भी आमदनी हुई, खीरे की आमदनी हुई, खीरे के बाद में घिये से आमदनी हुई। तो हमारे यहाँ ICR पूसा की टीम आई, उन टीम ने ये इनोवेटिव अवार्ड के लिए वो करा, उसे ट्रेनिंग भी दी हमें, और उसके बाद में 18 मार्च 2018 को हमें एक अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें ट्रेनिंग भी देते रहे। अब वहाँ हम जाते भी रहते हैं, ट्रेनिंग भी लेते रहते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ 2 यूनिवर्सिटियाँ और हैं, जैसे KVK होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है हमारी मोदीपुरम में, वहाँ भी ट्रेनिंग लेते रहते हैं, जाते रहते हैं, डॉक्टर भी यहाँ आकर हमें ट्रेनिंग देते हैं और उनके भी अवार्ड से हम सम्मानित हुए हैं, यूनिवर्सिटी से भी, KVK से भी सम्मानित हुए हैं, ICR पूसा से भी सम्मानित हुए हैं, और जिले लेवल में तो हमें कई बार सम्मान हो रहे हैं। हमारी ये तो हमारी दिनचर्या रही है।
2: किसान को सही खेती तकनीकों की शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो अपनी खेती को सही और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित कर सकें। ये उन्हें अद्वितीय उत्पादकता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए साझा तकनीकों के लाभ का अनुभव कराता है। सफल किसान सूबे सिंह यादव भी ट्रेनिंग के महत्व को समझते हैं और आज ट्रेनिंग लेकर खेती किसानी को नया रूप दे रहे हैं और आसपास के किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। कहते हैं ना, अगर एक किसान सफल हो तो उन्हें देखकर आसपास के किसान भी प्रेरित होते हैं।
3: हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी से बीज के बारे में ट्रेनिंग ही, हम बीज भी लेते हैं, BDF का धान का बीज लेते हैं ज़्यादातर, ICR पूसा का गेहूं का बीज ज़्यादातर लेते हैं, सब्जियों के बीज वहाँ से ज़्यादातर लेते हैं, कुछ भी ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कि इस टेम्परेचर में कौन से समय में कौन सा बीज बोया जाए, क्योंकि हम ज़्यादातर खीरा घिया पेठक और टमाटर मिर्ची ये सब ज़्यादातर फसलें लगाते हैं, तो उनके बीज के बारे में संपूर्ण ज्ञान देते रहते हैं, समय समय पर ट्रेनिंग भी करते रहते हैं, आते रहते हैं, चलते रहते हैं और गांव के लोगों को भी प्रोत्साहन करते हैं। उसमें हमारे साथ में गांव के लोग बहुत जुड़े रहते हैं, हम गांव से एक बस भर कर भी KVK की तरफ से यूनिवर्सिटियों में घूमने के लिए, करनाल घूमने के लिए, ऐसे टूर पे भी गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं, साथ जाते भी हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं और सपोर्ट भी करते हैं।
4: सूबे सिंह यादव जी, मैं यहाँ ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो वही सीखने के लिए मैं आया हूँ, इनको कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, और देख के मुझे काफी अच्छा लगा कि भाई हाँ प्राकृतिक खेती जो कर रहे हैं तो उसमें काफी अच्छा लगा, तो सोचा कि मैं भी करूँ जाके, क्योंकि थोड़ी जमीन है उधर राजस्थान में, तो सोच रहा हूँ वहाँ पे अभी। हाँ ये थोड़ा सा मछली पालन के लिए भी यहाँ एक तालाब खुदवाने की सोच रहे हैं, तो एक मछली पालन करने की भी सोच रहे हैं, तो उसके भी देखते हैं उसका क्या होता है। तो मछली पालन का भी हमारा चल रहा है प्रोग्राम, अगर मछली पालन भी किया जाए, ऑर्गेनिक तो चल ही रहा है, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है।
2: सफल किसान सूबे सिंह यादव जी आज लगभग 12 एकड़ की भूमि पर खेती करते हैं, जिनमें सब्जी, गेहूं व दलहनी फसलों का उत्पादन करते हैं। इन सब बातों का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि सूबे सिंह यादव जी सिंचाई के लिए सोलर पैनल सेट लगाए हुए हैं, जिससे इन्हें बिजली की बचत होती है और इनका सारा काम आसानी से हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने गोबर गैस संयंत्र भी लगा रखा है, जिससे जैविक खेती करने में काफी मदद मिलती है।
3: 12 एकड़ जमीन है जो हम जैविक से भी कर रहे हैं, कुछ रासायनिक से, जो जैविक से पूर्ति ना हो रही है तो उससे रासायनिक से भी खेती कर रहे हैं, और विविधीकरण को ज़्यादा बढ़ावा देकर हम विविधीकरण की खेतियां ज़्यादा कर।
0: विविधीकरण में क्या क्या ले रहे हैं?
3: विविधीकरण में हम धान भी है, आलू भी है, उसके बाद में पशुओं के लिए चारा है, मूंग भी बोते हैं, और निशंग सब्जी भी बो रहे हैं, जैसे कद्दू की सब्जी है, और नींबू की फसल भी आ रही है, उसमें नींबू के साथ में किन्नों के पेड़ हैं, कुछ आड़ू के पेड़ हैं, कुछ ऐसे अपने नींबू के पेड़ ज़्यादा हैं, बाकी अपने घर गृहस्थी के लिए आड़ू के पेड़ भी। हमने बिजली की व्यवस्था, पहले बिजली ही हमारे, लेकिन बिजली का लाइन कटा के हमने ये सौर ऊर्जा की 3 HP की मोटर लगवाई, जिससे हमें ड्रिप लाइन और स्प्रिंकलर सेट से सिंचाई करते थे, कर भी रहे हैं, अब भी करते हैं, लेकिन कभी कभी मौसम के तापमान की वजह से हमने दूसरी 3 HP की और सोलर पंप लगाया, जिससे 6 HP से अब हमारी सिंचाई सोलर से ही हो रही है, संपूर्ण सोलर, घर की बिजली भी सोलर से कम कर। और उसके बाद में हम जैसे हमने गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ है, तो जैसे गोबर गैस प्लांट में हमने जैविक के तरीके से सैलरी को खेती में ही यूज कर रहे हैं, जो पानी के साथ में सैलरी को बहा देते हैं, तो जैविक विधि से उसे हो रही है। इसमें जीवामृत भी बना के डालते हैं, और भी जैविक के जो भी प्रोसीजर हैं वो करके ही डालते हैं, जो जैविक खेती पर आधारित है पूरी संपूर्ण 4 एकड़ जमीन।
2: सफल किसान सूबे सिंह यादव जी खेती के सभी गुर को समझ चुके हैं। आज इनके फार्म हाउस में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। कृषि विभाग की मदद से सोलर पैनल सेट एवं ट्रैक्टर के साथ अन्य प्रकार के कृषि यंत्र भी मुहैया कराए हैं, जिससे उन्हें खेती किसानी में काफी सहूलियत मिलती है।
1: यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं।
5: बने

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका के बारे में, किस तरह से वो किसानों को जोड़ रहे हैं प्राकृतिक और जैविक खेती से।
1: प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों ही एक ऐसी पद्धति है जिसमें रसायनों का प्रयोग न करके घरेलू संसाधनों के उपयोग मिलाकर खेती में प्रयोग किया जाता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है एवं पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। इस प्रकार से किए गए खेती के प्रकार उन्नति के माध्यम से साथीकृत नवाचार और परंपरागत ज्ञान का मिश्रण प्रदान करता है। प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर जगनीश शर्मा।
2: हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में हमारे सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 30 दिवसीय सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जिसमें हम प्लस टू तक के जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती के ऊपर। सर्टिफिकेशन के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाई जाती है और उनको कहीं भ्रमण पर भी ले जाया जाता है। तो इस तरह

0: वैलिडेटेड टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के फॉर्म में पब्लिश करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का न्यूज़लेटर भी है, बायोफर्टिलाइजर न्यूज़लेटर भी है, जो साल के दो बार हम पब्लिश करते हैं और किसानों तक ही नहीं सभी स्टेक होल्डर्स तक वो पहुंचता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ये न्यूज़लेटर उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध होता है। तो इस तरह से हमारा संस्थान ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाता है। एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जो किसानों के लिए किया जाता है। खेत में जहाँ पर किसान गाँव में कोई मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म है उनके इन एंड अराउंड हम ये ट्रेनिंग रखते हैं और 50 किसानों को इसमें भागीदार बनाते हैं और उनको भी एक दिवसीय ट्रेनिंग में एक्सपोज किया जाता है। जैविक खेती में प्राकृतिक खेती, प्रमाणीकरण और गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो किस तरह से चलती हैं, ये सारी चीजों के।
1: किसान की मेहनत तभी सार्थक होगी जब कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विश्वविद्यालय का पूर्ण सहयोग मिलता है। खेती में बदलाव लाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसानों के हित के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है ताकि किसान खेती किसानी में कुछ नया कर सकें। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं जो किसान की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के सिंह बता रहे हैं।
2: विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD ये सब प्रोग्राम हैं और शोध कार्य है कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। इसमें हम लोग उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण कार्य देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कृषि के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मशरूम का प्रोडक्शन हो या बकरी पालन हो, हमारा नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में और मोटे अनाज से जुड़े हुए प्रसंस्करण, मोटे अनाजों का उसका उत्पादन और प्रसंस्करण, इस सब पर हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं और वो प्रशिक्षण लेकर के अपना कोई न कोई रोजगार शुरू करते हैं, महिलाएं हों या युवा हों।
3: विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसानों के लिए काफ़ी जागरूक परक कार्यक्रम संचालित करते हैं। जैसे जिस प्रकार से हम पहले जागरूकता कैंप आयोजित करते हैं उसमें फिर जो भी किसान जिस प्रकार की खेती के लिए उत्सुक होते हैं उनके अलग अलग समूह बना दिए जाते हैं। जैसे हमारा एक समूह जैविक खेती का है कि जो भी हमारे विभिन्न जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जो किसान भाई जैविक खेती के प्रशिक्षण के इच्छुक होते हैं तो उनका हम अलग से क्लस्टर बनाकर उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में एक जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से हम किसानों और युवाओं का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। पिछले 2 वर्षों से हमने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए, सबसे पहले हम जैविक खेती के कृषकों या प्रशिक्षणार्थियों को सबसे पहले ये सलाह देते हैं कि जो हमारा जैविक खेती का आधार स्तंभ है, हमारा FIM और वर्मी कंपोस्ट, उसकी जानकारी देते हैं कि उसको कैसे तैयार करें, कैसे उसको परिवर्धित करें और उसके पश्चात चूँकि हम जैविक साधनों का भी प्रयोग कर सकते हैं तो अलग अलग चरण पर किस फसल में किस चरण पर क्या प्रयोग किया जाए उसका विस्तार से प्रशिक्षण और उनको प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की तकनीकी जानकारी देते हैं।
1: सूबे सिंह यादव एक प्रेरणा स्रोत और अग्रणी किसान बन चुके हैं जिन्होंने खेती के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। इन्होंने नवाचार तकनीकों एवं ज्ञान के साथ साथ कौशलों का प्रयोग करके खेती को एक नई ऊर्जा और प्रगति का क्षेत्र बनाया है। सूबे सिंह यादव की खेती में बदलाव का प्रमुख कारण उनकी निरंतर रुचि और उत्साह है जो उन्हें नए और उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इनसे प्रेरित होकर अन्य किसान भी खेती को नए आयाम दे रहे हैं जिससे खेती के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक सुधार हो सके।
4: हूँ से RJ राकेश
5: अने हूँ से RJ कमता डामोर
4: तमु हाँ।

0: હું છે આરજે રાકેશ
1: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર.
0: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. બ્રેક ના બાદ એક વખત ફેર દેખી સ્વાગત છે તમારું સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ. તો કિસાન ભાઈઓ, કાર્યક્રમ ખેતીવાડીને આગાડી વડાવી અને હામળી કાલા નમક ચાવલ અને કિસાન ઉત્પાદક સંગઠનની વિસ્તાર પૂર્વક વાત્યો.
2: मैं आदिति शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं. हमारे इस कार्यक्रम में हम कृषि के क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे किसानों और साथ ही साथ संस्थानों से आपको मिलवाते हैं. हमारे देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कृषि के क्षेत्र में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं. आज की हमारी इस कड़ी में एक ऐसी ही संस्था नाबार्ड के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिनमें शामिल है उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र के जो जिले हैं वहां पर विलुप्त होने की कगार पर पहुंची काला नमक की खेती को दोबारा से प्रोत्साहित करने का. जी हां, यहां पर FPO से जुड़े जितने भी किसान हैं उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा काला नमक चावल की खेती करें. और आज हाल ये है कि काला नमक चावल की जो खुशबू है वो देश विदेश तक पहुंच रही है. और इसी FPO से जुड़े हुए हैं रामचेत चौधरी जी, जिन्होंने इस कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. तो फिर आइए इन्हीं के सफर को जानने के लिए, काला नमक चावल की खुशबू को पहचानने के लिए और इसकी खेती की महत्ता को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का.
3: काला नमक चावल, जी हाँ, काला नमक धान से निकला काला नमक चावल. बात काला नमक धान की हो तो इस विशिष्ट धान के बारे में भी जानना जरूरी है. काला नमक चावल एक सर्वश्रेष्ठ सुगंधित एवं पौष्टिक गुणों वाला चावल है, जिसकी खेती पूर्वी उत्तरी उत्तर प्रदेश में की जाती है. इसकी खेती का लिखित इतिहास करीब 3000 वर्ष पुराना है. काला नमक का इतिहास भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में प्रारंभ होता है. उस समय से अभी तक इस काला नमक धान की खेती नेपाल से सटे इस तराई इलाके में होती आ रही है. उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के रूप में जानी जाती है, लेकिन आज यहाँ का इलाका काला नमक चावल की खेती के लिए भी मशहूर है. उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 11 जिलों में काला नमक चावल की खेती की जाती थी, लेकिन कम उत्पादन के कारण किसानों से इसकी खेती करने से मुंह मोड़ लिया था, जिससे इसकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी. भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में जाने जाने वाला काला नमक चावल की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिक रामचेत जी के नेतृत्व में चल रहे किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से नाबार्ड ने एक परियोजना चलाई, जिससे काला नमक धान का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. नाबार्ड द्वारा प्रायोजित PRDF की कोशिश के चलते काला नमक की खेती के लिए चलाई जा रही परियोजना सफल हो रही है. आज परियोजना से जुड़े 100 किसान 100 एकड़ में काला नमक की खेती कर रहे हैं. इस बारे में जानते हैं रामचेत जी से ही.
4: पहले किसानों को 100 किसानों को प्रशिक्षित किया गया कि आखिर रासायनिक खेती जो अभी तक करते आ रहे हैं उसके क्या नुकसान हैं. उनको प्रशिक्षित किया गया कि किस तरह से वो जो जीवामृत निमास्त्र ये सारी चीज़ें अपने घर पर बना सकते हैं, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से और बेसन और गुड़ से. वो भी आपको उनको जो है वो बताया गया. तो ये किसान प्रभावित हुए हैं और उनको दो फसल, ये जो क्षेत्र है यहाँ का कुशीनगर जिले का, ये धान और गेहूँ का क्षेत्र है. तो धान में हमने जो काला नमक की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है काला नमक किरण, उसका बीज दिया। गेहूं में रबी के मौसम में जो यहाँ की सबसे अच्छी गेहूं की है पूसा संस्थान की, वो है HD 2967 2967, इसका बीज दिया गया और ये खेती लोग लगातार करते आ रहे हैं। तो 100 एकड़ खेत में ये 4 गांवों के जो किसान हैं ये इसकी खेती कर रहे हैं।
3: कुशीनगर में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग कर खेती कर रहे किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर मुड़ना इतना आसान नहीं था। रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के लिए किसानों को फिल्म भी दिखाई गई। इसके बाद से किसान जैविक खेती की ओर मुड़े और आज ये प्रशिक्षण के बाद जैविक खेती करते हुए काला नमक धान की खेती करते हुए लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित PRDF के प्रयास से कुशीनगर में काला नमक की खेती से किसानों की आमदनी दोगुनी तिगुनी हुई है। किसानों को मालूम हो चुका है कि जैविक खेती से आमदनी और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी होती है। नाबार्ड का प्रयास सफल रहा है।
4: खरीफ के मौसम में काला नमक धान की एक प्रजाति है काला नमक किरण, और गेहूं की एक प्रजाति है जो रबी मौसम में कर रहे हैं HD 2967। तो इनके लाभ इनको मिल रहे हैं और इनको प्रशिक्षित किया गया है, और कोई भी ये उपादान या इनपुट जिसको कहते हैं ये बाजार से नहीं खरीद रहे हैं, अपने घर पर ये लोग बनाते हैं, चाहे वो पोषक तत्व देने वाले जीवामृत हों या जो कीड़ों बीमारियों से बचाने के लिए सारे हैं, सब घर पर बनाते हैं। तो इनको इसी तरह इनकी लागत कम होती है क्योंकि उनको बाजार से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता। परियोजना के तहत इनको बीज भी दिया जा रहा है, तो एक तरह से कहिए कि लागत इनकी खाली मेहनत और इनके खेत की है, दूसरी कोई लागत इनकी नहीं है। जहाँ तक लाभ की बात करें तो इनका जितना भी उत्पाद है पहले तो ये लोग स्वयं अपने परिवार को खिलाते हैं, और जो भी कुछ मार्केटेबल सरप्लस है या बाजार में बेचने के लिए उनका सब का सब बिकवा दिया जाता है। अभी काला नमक की फसल इनकी कटी है और सारा का सारा उत्पाद इनका बिक चुका, खरीदा जा चुका, या जो कुछ इन्होंने अपने खाने के लिए रखा है वो रख लिए हैं।
2: यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे काला नमक चावल उत्पादक किसानों को मिलने वाले जैविक प्रमाण पत्र के बारे में, और साथ ही साथ इन किसानों के अनुभवों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब जानते हैं कि काला नमक चावल उत्पादक किसानों को जैविक प्रमाण पत्र जो मिलता है वो किस तरह से मिलता है और उसके लाभ क्या क्या होते हैं और साथ ही साथ इसकी खेती कर रहे किसानों के अनुभव भी जानने हैं। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: प्राकृतिक खेती कर काला नमक उत्पादन करने वाले किसानों के उत्पाद को जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे उनके उत्पाद की कीमत बहुत अच्छी मिलती है। इस प्रमाण पत्र को मिलने के बाद किसानों को कई फायदे मिलते हैं। किसानों का उत्पाद खेत तक ही सीमित न रहकर एक ब्रांड बनता है। इस बारे में बता रही हैं काला नमक चावल का प्रमाणीकरण उपलब्ध कराने में मदद करने वाली अंजलि साहनी।
2: मैं पीआरडीएफ संस्था जो कि रीजनल काउंसिल है पूरे पूर्वांचल में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का परीक्षण करके उनको सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने में, जिसके माध्यम से वे बाजारीकरण करेंगे। भारत सरकार की एक योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना एवं नमामि गंगे, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में यह किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है कि किस तरह वो अपने खेती की जो मिट्टी मर चुकी है उसमें उसको जीवन दें और उसमें केचुए जो हम आंखों से देख सकते हैं ऐसे जीवाणुओं को उपलब्ध करें। इसके साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, नवयुवक ही नहीं जो किसान है वो भी अपनी आमदनी दुगनी से तिगुनी कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारे किसान सिर्फ खेतों तक ना रहें, वो बाजार तक पहुंचे और अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं हमारी संस्था की, तो हम एज ए रीजनल काउंसिल किसानों के खेत पे जो धान या चावल जो भी उपादान वो लगाते से किसान में अपने खेत में लगाते हैं और जो भी उनसे उपज निकल कर आती है उसके बाजारीकरण के लिए ये सामान्यतः मांगा जाता है कि ये जैविक है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है। मान लीजिए अगर मैं ही 10वीं पास हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा कि आप 10वीं पास हो, इसका क्या साक्ष्य है मेरे पास, तो मुझे अपना 10वीं का रिजल्ट दिखाना होगा। उसी तरह जब किसान से पूछा जाता है कि आपका जो जैविक उत्पाद है वो जैविक है या आप सिर्फ मुंह से कह रहे हैं, इसके लिए हमारी संस्था जो रीजनल काउंसिल है ये प्रमाण पत्र उपलब्ध कराती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 साल का प्रोसेस होता है। इसमें प्रथम और द्वितीय वर्ष में पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने जो आपका प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेच तो सकते हैं, लेकिन ये बताते हुए कि आपका प्रोडक्ट अभी जैविक नहीं हुआ है, जैविक होने के क्रम में है। लेकिन जब आपका तृतीय वर्ष शुरू हो जाता है और वो अंतिम क्रम में आ जाता है 3 साल पूरे होने पर, तो आप अपने उत्पाद को जैविक पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक के नाम से बाजार में बेच सकते हैं।
1: खेतों में लगी फसल को परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत उत्पादित जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र मिलने के बाद काला नमक चावल का बाजारीकरण बेहद आसान होता है और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होती है। इस बारे में बता रही हैं अंजलि साहनी।
2: हमारे जो समूह हैं उनका नाम है, समूह का नाम दिया गया है पंजीकरण नंबर, कि जिसके माध्यम से आप इसकी पूरी जानकारी एवं इतिहास देख सकते हैं। उनका गांव, जनपद, समूह द्वारा उत्पादित जो उत्पाद है उसका नाम, किसान का नाम, और ये जो हमारे उत्पाद हैं 4 उत्पाद आप इसमें देख सकते हैं, गेहूं, चावल और दालें। यहाँ भी पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो लगा हुआ है, जिसका अर्थ है कि ये पूर्ण रूप से जैविक हो गया है। 3 साल इसको पूरे हो चुके हैं और ये उत्पाद अब जैविक के होने के साथ साथ अब बाजार में बिकेगा और किसान की आमदनी दुगनी होगी। नीचे यहाँ पे कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, क्योंकि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में आता है इसलिए यहाँ पर कृषि विभाग उत्तर प्रदेश और हमारी संस्था का नाम लिखा हुआ है। ये उत्पाद ऐसे बाजार में बेचा जाता है ताकि जो भी उपभोक्ता इसको खरीदे वो इसके साथ साथ इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं, और अगर किसी को इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो संपर्क सूत्र विभाग से, कृषि विभाग से या हमारी संस्था से वो प्राप्त कर सकते हैं।
1: आज के दौर में किसी भी उत्पाद की ऑनलाइन मार्केटिंग हो तो इसकी मांग में बढ़ोतरी होती है। इसे देखते हुए काला नमक चावल की मार्केटिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं पीआरडीएफ से जुड़े देवेंद्र पटेल। देवेंद्र पटेल बताते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर युवा अपना भविष्य बना सकते हैं और बिना पैसे लगाए सीधे उपभोक्ता से जुड़ सकते हैं।
3: हम लोग जो है कि काला नमक की मार्केटिंग करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और जो कि सरकार सपोर्ट भी करती है कि आप जो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए, और सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती है कि आपके प्रोडक्ट को लोग जाने। पीआरडीएफ भी जो है कि किसानों से डायरेक्ट बाय करती है और उनका जो है कि मार्केटिंग करती है, और इनके एफपीओ के थ्रू जो किसान संगठन है जो अपने एफपीओज बनाए हुए हैं उनके थ्रू भी इसका मार्केटिंग करती है। लेकिन सबसे जो बेस्ट रहता है कि आप जो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इसका जो है कि मार्केटिंग करते हैं, इसके वजह से आपका प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुंचता है, जो एंड कंज्यूमर है उनके तक पहुंचता है और वो सीधे आप उनसे जुड़ पाते हैं।
1: प्राकृतिक और जैविक खेती से उत्पादित काला नमक और दूसरे प्रोडक्ट से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। खेत की दशा और किसानों की आमदनी बेहतर हुई है। नाबार्ड की मदद को किसान बेहद उत्साहवर्धक मानते हैं। नाबार्ड की परियोजना के बारे में बताते हुए किसान कहते हैं,
4: मैं नाबार्ड से जुड़ा हूं और इसमें मैं काला नमक खेती के बारे में मुझे अच्छी जानकारी दी गई है और मैं उसको करता हूं विधिवत रूप से, और इसमें लागत भी कम पड़ती है, बहुत ना के बराबर है, और उसे रासायनिक चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसको काला नमक धान के ऊपर बताया गया है और मैं इसी को करता हूं और खाता भी हूं, इसको पूरे परिवार को भी खिलाता हूं। और जो है कि इसके बारे में डॉक्टर चौधरी साहब के द्वारा मुझे पूरा दिशा निर्देश दिया गया है कि मैं ऐसे ऐसे करना है।

0: है उसी को मैं फॉलो करता हूँ और उससे मुझे बहुत लाभ है और इसको आगे भी और भी बढ़ाऊंगा।
1: यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कुशीनगर जैसे इलाके में काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाबार्ड के क्या क्या प्रयास रहे और साथ ही साथ नाबार्ड के अधिकारियों से जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इसकी खेती के अलावा और भी ज्यादा जो अन्य उत्पाद हैं उनकी खेती के लिए कैसे किसानों को प्रोत्साहित किया है।

0: के बराबर पहुंच जाएगा। आइए इस बारे में नाबार्ड के डीडीएम सूरज शुक्ला से ही जानते हैं।
1: अभी ये जो परियोजना है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2021 में स्वीकृत की गई थी। यह 3 वर्षों की परियोजना है जिसमें कि कुशीनगर जिले के कप्तानगंज ब्लॉक के 4 गांवों में 100 किसानों को चिन्हित करके और प्रति किसान 1 एकड़ यानी कि 100 एकड़ में प्राकृतिक खेती के माध्यम से धान और गेहूं के उत्पादन से जुड़ी हुई ये परियोजना है। इसमें नाबार्ड अपनी व्यय करके पीआरडीएफ संस्था के साथ मिल करके ये प्रदर्शन करने का कोशिश प्रयास कर रहा है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से भी अच्छा उत्पादन किसान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के उत्पादन से ना केवल भूमि की हास कम होगी बल्कि स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव जो रसायनों का पड़ता है वो इसमें नहीं पड़ेगा। इस परियोजना के माध्यम से किसानों को तमाम तरह की सहायताएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि बीज, ट्रेनिंग, उनका एक्सपोजर विजिट अन्य संस्थाओं में, उनके एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर स्थापित किए गए हैं जो कि समय समय पर उनको गाइडेंस प्रदान करते रहते हैं कि उनको कोई अगर यदि रोग लग जाता है तो उससे कैसे डील करना है, अगर सिंचाई किस प्रकार से करनी है, किस समय कौन सा चीज़ें डालनी है खेत में, इन तमाम तरह की जो सहयोग हैं ये 3 वर्षों के लिए हैं। इसके अलावा नाबार्ड की तरफ से भी कम से कम 3 महीने में एक बार इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि इन खेतों में किस तरह से प्रगति हो रही है। इसमें जो हमारा अनुभव है वो यह है कि प्रथम वर्ष, चूंकि ये परियोजना लगभग 3 वर्षों से चल रही है, प्रथम वर्ष जरूर कुछ जो उत्पादन में कुछ कमी थी रसायन से और प्राकृतिक खेती में शिफ्ट करने पे, लेकिन जैसे कि अभी 3रा वर्ष चल रहा है अब धीरे धीरे वो जो गैप है वो काफ़ी कम हो गया है और हमें यह उम्मीद है कि अगले 1 वर्ष या 2 वर्षों के अंदर जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो उत्पादन है वो रासायनिक खेती के माध्यम से उत्पादन के लगभग बराबर पहुंच जाएगा। और तो इसका मतलब जो पूरा साइकिल है वो 3 से 4 वर्षों का है। यदि 3 से 4 वर्षों तक किसान प्राकृतिक खेती करते रहें तो उनको रसायनों के उत्पाद प्रयोग की जरूरत बिल्कुल समाप्त हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए FPO यानी किसान उत्पादक संगठन की अवधारणा बनाई है। इस संगठन में सदस्य किसान ही होते हैं। किसान उत्पादक संगठनों के पीछे अवधारणा ये है कि किसान जो कृषि उत्पादों के उत्पादक हैं समूह बना सकते हैं और भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत कर खेती से जुड़ी गतिविधियां जैसे फसल उत्पादन, विपणन, मार्केटिंग आदि कर सकते हैं। इसमें सरकार संगठनों की आर्थिक मदद भी करती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बने इस FPO को नाबार्ड ने काला नमक चावल की प्राकृतिक खेती के लिए चुना जिसका फायदा किसानों को हो रहा है। ऐसे में दूसरे क्षेत्र के किसान भी सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसान अपनी आमदनी को FPO के माध्यम से दोगुनी चौगुनी कर सकते हैं।
2: तो किसान भाइयों यो तो आज नो कार्यक्रम खेतीवाड़ी आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में अपनी वात हामली सब्जियों की खेती में सफल किसान नी वात्यो कार्यक्रम खेतीवाड़ी नी बीजी कड़ी में अपनी वात हामली काला नमक चावल अने किसान उत्पादक संगठन केवी रीते काम करे ये वात्यो आज अपनी ना कार्यक्रम में हामलियो। किसान भाइयों हम रोज तमारी हारू एवी असल थी असल तकनीकी खेती नी जानकारी लावी से अने आशा करी से कि हमारा झाबवा जिला ना किसान भाई ये बधी वात्यो हामले अने आपड़ी खेतीवाड़ी में सुधार करे अने असल मोटो मुनाफो कमाई सके। तो किसान भाइयों आ सारू वजे एतरी वात केम की हाव समय थाई गयो से बीजा कार्यक्रमोनो हूँ आरजे राकेश लू से तमारी देखी इजाजत पण तमु जाजो मती कही था हमलता रेजो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबवानी आवाज तमारा ज रेडियो खतवार आरजे राकेश नी हाथे।

0: हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है नेचर का सतरंगी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं धरती के उस कोने में जहां न कोई शहर है, न भीड़ भाड़, न ट्रैफिक का शोर, जहां चार ओर बस बर्फ की बर्फ है। मीलों तक फैली सफेद चादर, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड, तेज भरपीली हवाएं और प्रकृति का ऐसा विराट रूप जिसे देखकर इंसान अपनी सीमाओं का एहसास करता है। ये है एंटार्क्टिका, पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे रहस्यमय महाद्वीप। लेकिन आज की ये यात्रा किसी टूरिस्ट की नजर से नहीं, बल्कि एक भारतीय साइंटिस्ट की आंखों से होने वाली है। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने केवल एंटार्क्टिका को देखा ही नहीं, बल्कि वहां रहकर रिसर्च की, दुनिया के विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के साथ काम किया और भारत के दो साइंटिफिक एक्सपेडिशन का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त किया। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर मनोज के पंडित, राजस्थान विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी, पूर्व प्रिंसिपल महाराजा कॉलेज जयपुर, प्रख्यात जियोलॉजिस्ट, रिसर्चर और एंटार्क्टिक साइंटिस्ट। लगभग चार दशकों के अपने एकेडमिक जीवन में इन्होंने 180 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित किए, 32 शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया और देश विदेश में भारतीय विज्ञान का गौरव बढ़ाया। आज की बातचीत में हम केवल एंटार्क्टिका के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि महसूस करेंगे वहां पहुंचने का रोमांच, पहली बार बर्फीले महाद्वीप पर कदम रखने का अनुभव, महीनों तक परिवार से दूर रहने की भावनाएं, पेंगुइन्स, ग्लेशियर्स और साइंटिफिक रिसर्च की दुनिया। और यह भी, इस अनोखी यात्रा ने एक साइंटिस्ट के भीतर के इंसान को किस तरह से बदल दिया। तो आइए अपने कल्पना के जहाज पर सवार हो जाइए और चलिए हमारे साथ भारत से हजारों किलोमीटर दूर एंटार्क्टिका की एक अविस्मरणीय यात्रा पर। प्रोफेसर डॉक्टर मनोज के पंडित, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आलोक जी, सबसे पहले तो इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एंटार्क्टिक ऐसा विषय है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है और आपने मुझे अवसर दिया इस बारे में बात करने का, तो आपका विशेष धन्यवाद।
1: तो चलिए डॉक्टर साहब, ऐसा करते हैं शुरुआत से कर लेते हैं। कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि जियोलॉजी जैसा विषय चुनने की प्रेरणा कैसे मिली, क्या बचपन से ही प्रकृति, पहाड़ और पत्थरों में आपकी रुचि थी, क्या हुआ, कैसे आप इधर आ गए जियोलॉजी की तरफ?
2: ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, जो कैसे आ गए, तो उसे मैं कहूंगा संयोग।
1: अच्छा।
2: क्योंकि जब मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी राजस्थान के अलग अलग छोटे छोटे जगह पे हुई
1: जी।
2: मुख्य मेरे पिताजी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे।
1: अच्छा, अच्छा।
2: और इस वजह से हर वर्ष लगभग उनका तबादला हो जाता था, तो मुझे उन दिनों में हायर सेकेंडरी 11 साल की हुआ करती थी, 11 क्लासेस थी, तो मुझे 11 अपने 11 क्लासेस के लिए 9 स्कूल बदलने पड़े थे।
1: अच्छा।
2: और उस समय न तो जियोलॉजी के बारे में कोई जानकारी थी, कि ये अभी भी जहां तक मैं समझता हूँ कि ये विषय बड़ा व्यापक है और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, डायरेक्टली रिलेटेड है हमसे, लेकिन भारत में थोड़ी सी इसकी जानकारी कम है। और जहां तक बात है कि प्रकृति से प्रेम तो वो शुरू से था, मुझे पहाड़ों पर चढ़ना बचपन में बहुत अच्छा लगता था। हम लोग मूलतः कश्मीर से हैं, तो जब हम कश्मीर जाया करते थे छुट्टियों में तो हमारे गांव में जो पहाड़ हुआ करते थे, हम अपने कजिन्स के साथ में वहां चले, वहां जाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। पर जियोलॉजी उस समय मुझे जियोलॉजी का कोई किसी तरह का कोई आइडिया नहीं था। जियोलॉजी तो इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में आया उसके बाद में ये विषय लिया, और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, मुझे अभी भी अपने आप पे हंसी आती है कि एक महत्वपूर्ण विषय है। और क्योंकि मेरे एक मित्र ने कहा कि जियोलॉजी ले लो, अच्छा सब्जेक्ट है, तो मैंने अपने फॉर्म में जियोलॉजी भर दिया, तो ये एक संयोग था जो मुझे जियोलॉजी में ले आया।
1: नहीं, तो बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, आप कश्मीर के रहने वाले हैं, पहाड़ों से तो आपका एक तरह से पैदाइशी संबंध है, और जियोलॉजी में आप संयोग से आ गए, लेकिन ये महासागर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। तो फिर आपने ये बताइए डॉक्टर साहब, जब आपने जियोलॉजी में अपना कैरियर शुरू किया, तो क्या कभी कैरियर के दौरान या ऐसे कभी कल्पना की थी कि एक दिन आपको ये रहस्यमय महाद्वीप अंटार्कटिका जाने का अवसर मिलेगा, ऐसा कभी सोचा भी था ख्वाबो ख्यालों में आपने?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं जियोलॉजी पढ़ रहा था और जियोलॉजी में जब मैंने करियर की शुरुआत की, तो उस समय ये तो एक जिसको कहते हैं दूर की कौड़ी, बहुत ही दूर लगता था कि एक असंभव सा वो था, तो कभी मन में आया नहीं कि कभी मैं भी वहां जा सकता हूँ। इनफैक्ट जब मेरे अपने करियर के काफी लंबी यात्रा के बाद में ये विचार आया, और ये भी इसका भी एक इसकी भूमिका अगर मैं पृष्ठभूमि बताऊं आपको।
1: जी जी बताइए। हाँ
2: तो जी हाँ, तो मैं एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व, मेरा उसमें मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ उसमें, जो कि भारत की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में था, कि भारतीय भूभाग जो है ये अपने ऐतिहासिक रूप से, जो ऐतिहास के मतलब करोड़ों साल और लाखों साल की बात कर रहा हूँ, तो भारत कब कहाँ था, कैसे कैसे खिसकता हुआ यहाँ है, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से शायद हम लोग सब जानते हैं इस विषय को। तो उसमें जब उसमें एक होता है, भारत और अंटार्कटिका एक समय में पड़ोसी हुआ करते थे।
1: अच्छा।
2: तो वो वहां से शुरुआत हुई, तो अंटार्कटिक के बारे में तो ये जानकारी तो थी, लेकिन वहां जाके काम करना, वहां जाके डेटा इकट्ठा करना, उसके बारे में थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि दिमाग में कीड़ा कुलबुलाना, वो तब शुरू हुआ। और ये मतलब मेरे करियर, आधा करियर जब खत्म हो गया था, उसके बाद की ये घटनाक्रम है।
1: देखिए कितनी मतलब सहयोग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, और ये एक तरह से डेस्टिनी थी कि आप इतने बड़े अभियान से जुड़े हैं और अंटार्कटिका जाएं, और जबकि आपको शुरू में कोई ख्याल भी नहीं था, और ये सिर्फ जो थियोरेटिकल आपने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा होगा, और ये भी कितने मजेदार सहयोग है कि इंडिया और अंटार्कटिका किसी जमाने में पड़ोसी थे, करोड़ों साल पहले की बातें, कितना अच्छा है। तो चलिए इसी बात पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं प्रकृति के इसी एक सहयोग पे कि कभी हम पड़ोसी थे इंडिया और अंटार्कटिका, तो इस पे एक गाना सुनते हैं और एक छोटा सा पॉज लेते हैं, और फिर आगे इस बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एसएन और रेडियो टांडिया भील, और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज के पंडित, जो हमसे अब बहुत ही दिलचस्प बातें करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, वेलकम बैक। तो मैं अब आपसे थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो, क्योंकि ये हमारा हर तरह के श्रोता इसको सुनते हैं, तो एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आर्कटिक और एंटार्क्टिका में आखिर फर्क क्या है, पहले तो ये बताइए। दोनों कहाँ स्थित है, वहाँ का मौसम कैसा होता है, और एंटार्क्टिका वैज्ञानिकों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अक्सर मुझे भी जब बातचीत होती है तो कई बार ये पता लगता है कि लोगों को थोड़ा सा ये जिज्ञासा, ये कन्फ्यूजन है
0: जी।
1: तो यहाँ मैं ये बता दूं कि आलोक जी के आर्कटिक जो है उसकी जानकारी हमें काफी पहले से थी। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ का जमा हुआ समुद्र है, तो देखने में वहां भी बर्फ है। और जो एंटार्क्टिक है ये दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ स्थित एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट, जो कि बर्फ से ढका हुआ है। तो ऊपर से देखने पे दोनों जगह में बर्फ दिखाई देती है, लेकिन मूल फर्क ये है कि यहाँ पे बर्फ जो है, आर्कटिक में बर्फ जो है पानी के ऊपर है, और एंटार्क्टिक में जो बर्फ है वो जमीन के ऊपर है। और इस तरह से ये एंटार्क्टिक जो है वो पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, जिसका एरिया यूरोप से ज्यादा है।
0: ओके जी, वो तो जमा हुआ समंदर है और यहाँ जमीन के ऊपर बर्फ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है। वाह।
1: और एक चीज और भी बता दूं कि इसके जो बर्फ की जो औसत मोटाई है एंटार्क्टिक में वो लगभग 2 किलोमीटर है।
0: 2 किलोमीटर?
1: और जी हाँ, वो औसत मोटाई है। ये जब किनारे पे कम होती है और जैसे जैसे हम बीच उसके अंदर तरफ जाते हैं तो वहां 4.5 किलोमीटर तक की बर्फ की मोटाई है। और चूंकि ये शुष्क प्रदेश है और क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा है तो बर्फ बहुत कम गिरती है, और जो बर्फ गिरती है वो वहां जमा हो जाती है। तो यही आपने जो प्रश्न किया था इसके महत्व का, तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका योगदान है हमारे क्लाइमेट चेंज को लेके, वो ये है कि पास्ट क्लाइमेट लगभग, आप कल विश्वास नहीं करेंगे कि 8 लाख साल तक का जो रिकॉर्ड है हमारे पास वहां पे अवेलेबल है बर्फ में। तो उसी डेटा उन्हीं सैंपल्स से के आधार पे हम जो पिछले हजारों सालों में जो एक जलवायु में क्या स्थिति रही और वो किस तरह से परिवर्तन हुए और आगे कैसे परिवर्तन हो सकते हैं उसका सारा डेटा वहीं से आता है।
0: तो बर्फ में इसका मतलब है कोई चीज अगर रह गई वहां तो वो वैसी की वैसी रह जाती है, मतलब उसमें कुछ डिकम्पोज वगैरह नहीं होता, वैसे का वैसा रह जाता है, इज इट सो?
1: जी हाँ, जिसको हम कहते हैं मतलब विश्व का सबसे बड़ा फ्रीजर है ये।
0: मतलब कितने साल कोई चीज वहां है तो वो वैसी की वैसी रहेगी। तो इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। आप जयपुर में तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर और 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी होती है, तो एंटार्क्टिका की ठंड वास्तव में होती कैसी है? क्या ये कुछ उसके बारे में कुछ एक कोई एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि ठंड होती कैसी है, कैसा महसूस होता है वहां?
1: बिल्कुल, एक तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो विश्व का सबसे ठंडा ताप, जो रिकॉर्डेड तापक्रम है वो है -89.3 डिग्री सेल्सियस।
0: ओके,
1: यानी कि 0 से 89.3 डिग्री सेल्सियस कम। और ये एक रशियन स्टेशन है वहां पे एंटार्क्टिक के केंद्र में वोस्टोक, वहां पर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अभी तक का विश्व का प्रमाणिक सबसे कम तापक्रम है। और आपका प्रश्न था वहां पे सर्दी कैसी होती है, तो दो तरह की सर्दी मैं बता सकता हूँ। एक जो हमारे स्टेशन बने हुए हैं जहाँ पे हम लोग, मतलब जो साइंटिस्ट लोग जहाँ रहते हैं, वो जो स्टेशन है वो हीटेड होते हैं। तो वहां अंदर आने के बाद तो आप जो सामान्य सर्दी का मौसम जैसा सब जगह होता है वैसा आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने से पहले कई सारी, पहले आपको क्योंकि ये तापक्रम भी जो है वो बदलता रहता है वहां पे आपकी स्थिति के हिसाब से। आप अगर समुद्र किनारे हैं तो वहां तापक्रम अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, और जब आप इंटीरियर में जाएंगे तो तापक्रम कम होगा। तो आप कहाँ जा रहे हैं, कितनी और वहां पे तापक्रम कैसा होगा उसके हिसाब से आपको तैयारी करके निकलना पड़ता है। तो जब आप बाहर निकलते हैं तो एक चेकलिस्ट होती है कि आपने ये सब किया है कि नहीं किया है, और जो आपकी तैयारी जिसको कहते हैं कि एक जो इनर थर्मल जिसको बोलते हैं हम लोग, जो हम सर्दी में भी यूज करते हैं, वो इनर लेयर कहलाती है, फिर एक मिडिल लेयर कहलाती है जो कि काफी मोटी जैकेट और आपके लोअर्स होती हैं, और उसके ऊपर एक पोलर सूट पहना जाता है जो खुद चार लेयर्स का होता है जिसमें हाँ। और तो कुल मिलाकर जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका वजन जो है 7-8 किलो एक्स्ट्रा होता है, और जूते भी जो है वो आपको अब दो साइज बड़े पहनने पड़ते हैं क्योंकि 2-3 सेट मोजे के पहनने पड़ते हैं आपको। और एक प्रिकॉशन और वहां पे लेनी पड़ती है क्योंकि वहां पे आपने सुना होगा कि ओजोन होल जिसकी बात जो हमारे लिए चिंता का विषय है, तो वो सबसे बड़ा ओजोन होल वही एंटार्क्टिक के ऊपर ही है। तो वहां जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनका खतरा भी काफी ज्यादा रहता है, तो आपको उसके लिए भी विशेष तैयारी करनी पड़ती है। जो एक सन क्रीम जिसका कि SPF या सन प्रोटेक्शन फैक्टर 60 से लेकर 90 तक होता है वो आपको यूज करनी पड़ती है, और चश्मा एक यूवी चश्मा लगाना पड़ता है बाहर निकलते टाइम।
0: तो इसका मतलब इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस लेके आप बाहर निकल सकते हैं, इससे अंदाजा हमारे श्रोता लगा सकते हैं कि कितनी ठंड होती होगी वहां। और आपने बता दिया लगभग 90-90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, रिकॉर्डेड टेम्परेचर है जो दुनिया का सबसे निम्नतम टेम्परेचर है। तो ये
1: तो बहुत दूर है, लेकिन मतलब हाँ वो तो विंटर का टेम्परेचर है। हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो जो वहां का समर होता है तो उसमें निकलते हैं।
0: ओके, तो पोलर सूट बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मेरे को, जैसे स्पेसशिप वाले इस पे ये स्पेस सूट पहनते हैं, वैसे पोलर सूट में कोई खास ऐसा मटेरियल होता है डॉक्टर साहब, क्या होता है ये पोलर सूट?
1: ये मल्टी लेयर होता है, कैसे बहुत खास थोड़ा सा जब आप पहन लेते हो तो थोड़ी थोड़ी फीलिंग तो आती है एस्ट्रोनॉट वाली, लेकिन उससे बहुत ही छोटे स्केल पे है। अगर आप उसको 100 कहें तो इसको 10 नंबर दे सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, लेकिन जब आप लोग वहां चलते होंगे तो कुछ वैसी फीलिंग आती होगी, बिल्कुल उसी तरह से लगते होंगे
1: तो,
0: देखने।
1: और वो सबसे बड़ी बात है कि जब आप बाहर निकलते हो तो हर व्यक्ति एक जैसा दिखाई देता है। क्योंकि सबकी सबका जो जो पहनावा है ड्रेस होती है एक ही होती है, उसके बाद में आपका जो सिर भी कवर्ड होता है और आंखें भी कवर्ड होती हैं।
0: तो डॉक्टर साहब
1: पोलर सूट जो आप कह रहे थे इसके चार लेयर्स होती हैं खुद की।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो ये थर्मल इंसुलेशन और विंड दोनों के लिए होता है।
0: तो चलिए इस कल्पना के नाम पे और ये जो आपने पोलर सूट के बारे में बताया और आपस में बातचीत करने के, इस पे रुक के एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और फिर उसके बाद में इस बातचीत को जारी रखते हैं।

0: वेलकम बैक डॉक्टर साहब। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एसएन और रेडियो टाटिया भील, और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर मनोज के पंडित से, जो एक जियो साइंटिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन के लिए आपका सिलेक्शन किस तरह से हुआ, क्या सिलेक्शन प्रोसेस था, क्या बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: चलिए, बिल्कुल। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, उसको ताकि अच्छे से जुड़ जाए इस बात से कि एंटार्क्टिक और रिसर्च, ये एक थोड़ा सा ये विश्व के सब बाकी रिसर्च से बिल्कुल भिन्न है, और उसकी मैं थोड़ा वो उसके बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ।
0: मोस्ट वेलकम, बताइए।
1: इसके जो एंटार्क्टिक का इतिहास जो है, क्योंकि एंटार्क्टिक ऐसा स्थान था, विश्व का ऐसा स्थान है जिसकी जानकारी हमें बहुत सबसे बाद में हुई। 1770 के दशक में लगभग किसी को बहुत दूर कुछ दिखाई दिया, तो लेकिन पहुंचने तक पहली बार पैर रखने की जो जो घटना है ये 1823 में हुई। लेकिन और दक्षिण ध्रुव तक जो पहला व्यक्ति पहुंचा वो 1914 में पहुंचा। ये चूंकि बहुत कठिन, सब कुछ बहुत कठिन है, तो बहुत धीरे धीरे ये हुआ। और उसके बाद में जब पता लगा वहां कोई नेचुरल हैबिटेट नहीं है, कोई नेचुरल रहने वाले नहीं है, नॉर्थ पोल में तो फिर भी एस्किमोज रहते हैं, यहाँ पे कोई वो नेचुरल हैबिटेट, कोई मतलब मानव किसी तरह का मानव का कोई वहां उपस्थिति नहीं थी
0: जी।
1: तो फिर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये चला कि ये इतना बड़ा भूभाग जो है किस देश का हिस्सा हो, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं वहां पे। इसमें काफी अंतरराष्ट्रीय वो ये चलता है कि जिसको कहते हैं देसी भाषा में खींचतान, जी हाँ। तो जो साउथ अमेरिकन हैं खासतौर पे, ये अर्जेंटीना और चिली, उन्होंने कहा कि हमारा हम सबसे नजदीक पड़ते हैं, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट जो अंटार्कटिक का वो उनसे काफी नजदीक है, लगभग 900 किलोमीटर है
0: जी।
1: और नॉर्वेजियंस ने कहा कि हम सबसे पहले यहाँ पहुंचे थे, हम सबसे पहले हमारा झंडा लगा था, तो ये हमारा होना चाहिए। यूरोपियंस अमेरिकन ये सब अपना अपना क्लेम इनका चल रहा था, लेकिन वहां स्थिति ऐसी थी कि वहां पे अगर आप हासिल कर लेंगे आपको उस मिलेगा कुछ नहीं, तो छोड़ना भी नहीं था और बहुत ज्यादा गंभीर भी नहीं थे लेने के लिए। तो ये इसमें कुछ दशक निकल गए। तो 50 के दशक में जब सारा विश्व में जब ये पर्यावरण को लेकर जब चिंता शुरू हुई, जब पता लगा कि हमने औद्योगिकरण के नाम पे जो बहुत सारा नुकसान कर दिया पर्यावरण का, उसके दुष्परिणाम अब दिखने लगे थे
0: जी,
1: तो एक वैश्विक चिंतन शुरू हुआ इस बारे में। तो एक विचार आया कि अंटार्कटिक में चूंकि अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, तो अंटार्कटिक जैसा ही प्रकृति ने दिया था वैसा ही है, तो इसको इसी तरह रहने दिया जाए। तो ये सुझाव बड़ा मान्य सुझाव था, सबको स्वीकार था। तो अंटार्कटिक को एक विशेष दर्जा दिया गया है, इसका कोई ये किसी देश का हिस्सा नहीं है, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इसमें कोई पुलिस नहीं है, इसमें कोई जुडिशरी नहीं है, और इसका मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक करते हैं, और एक कमेटी के थ्रू इसका नाम है साइंटिफिक कमेटी।

0: करते हैं कितने नहीं करते हैं, ये एक अलग प्रश्न है। एंटार्क्टिक विश्व का एकमात्र स्थान है जहां पर कि पर्यावरण को लेके जितना जितना कंसर्न पर्यावरण को लेके वहां उतना कहीं नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वहां पर्यावरण की जो कंडीशन है सबसे स्ट्रिक्ट है। जिसका छोटा सा उदाहरण मैं इस बात से देना चाहूंगा कि वहां जो भी कचरा करते हैं किसी तरह का भी कचरा वहां किसी कोई कचरा वहां फैलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। जो भी कचरा आपका जो वेस्ट जिसको हम कहते हैं वो आपको वापस लेके आना पड़ता है वहां से, वहां कुछ नहीं छोड़ सकते। इवन जिसको जिसको कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीट है जिसको वो भी वहां पे वो भी वहां छोड़ने की अनुमति नहीं है। और जब आप खासतौर से जो हम धरती थोड़े इस मामले में थोड़े ज्यादा बदनाम हैं, तो जब वहां जाते हैं तो हमें विशेष रूप से कहा जाता है कि आप जब बाहर जाएंगे और फील्ड में काम करने जाएंगे तो नेचुरली कुछ साथ में खाने का ले जाएंगे, तो किसी भी तरह का रैपर वहां बाहर नहीं छूटना चाहिए। गलती से अगर छूट गया तो जैसे आपने आप बताया था अभी कि वहां तो सालों साल वैसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। तो अगर वो कोई बिस्किट का पैकेट जिसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ पड़ा हुआ है वो रैपर, तो आपके स्टेशन को बंद करना पड़ेगा। मतलब वो कंडीशन ऐसी है कि फिर आपका स्टेशन बंद होगा और आप परमानेंटली ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। तो इवन सिगरेट जब आप पीते हैं बाहर, हालांकि पीनी नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी पीते हैं, उनका सम्मान करना पड़ता है। तो बाहर सिगरेट अगर आप पी रहे हैं फील्ड में, तो उसका जो बट है वो जेब में रख के लाना पड़ता है, मतलब वो भी आप बाहर नहीं फेंक सकते।
1: पता है इतना ज्यादा है, और ये सब सुपरवाइज करती है जो साइंटिफिक कम्युनिटी है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, वही इंश्योर करती है कि इस तरह का कोई किसी तरह का कोई चीजें फेंके नहीं या कोई पॉल्यूशन नहीं बनाए। ओके,
0: ये आलोक जी बड़ी अच्छी बात है कि कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन जब आप वहां कर रहे हैं तो आपको लगता नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ये अपने मन अपने आप हो जाता है। मतलब जब आप वहां जाते हैं तो आपकी सारी मतलब आपको किसी चीज को खराब करने का मन ही नहीं करता कि आप। और ये एक बात और मैं आपको बताऊं कि वहां इतना बड़ा महाद्वीप है, अगर आप जीवन भर उसको खराब करने का प्रयास करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा पर्यावरण पे। लेकिन आपका आप अपने मन से सब चीजें करते हैं जो कि होनी चाहिए, और सिर्फ पीयर प्रेशर है। अगर दूसरे स्टेशन वाले आपका ध्यान रखते हैं, आप दूसरे स्टेशन का ध्यान रखते हैं, बस इसी पे चलता है। लेकिन आपका प्रश्न यहाँ पे गौण हो गया, प्रश्न आपने जो पूछा था
1: सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कोई बात नहीं, आप बताइए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कुछ उसके बारे में बताइए कैसे गए, क्या हुआ, थोड़ा बहुत बताइए।
0: वहीं आता हूँ जी। तो जब ये 50 के दशक में सब हुआ तो कई सारे अभियान जाने लगे वहां पे बहुत सारे देशों के, और 1981 में हमने भी अपना एक अभियान भेजा। 1980 में हमने तय किया भारत ने कि हम भी अपना एक इंडिपेंडेंट अभियान दल भेजेंगे, और 1981 में हमारा पहला दल गया था, भारतीय अभियान दल, जिसके लीडर थे डॉक्टर एस जेड कासिम, जो कि उस समय ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा के डायरेक्टर थे। और 1983 में हमारा पहला स्टेशन वहां बना जिसका नाम रखा दक्षिण गंगोत्री।
1: अच्छा।
0: और 1989 में हमारा दूसरा स्टेशन बना जिसका नाम दिया मैत्री। दुर्भाग्य से ही जो पहला स्टेशन था ये 6 साल बाद बर्फ में दब गया, तो उसको छोड़ना पड़ा 1989 में।
1: अच्छा।
0: और तीसरा स्टेशन हमारा जो बना वो 2012 में बना जिसका नाम है भारती। तो ये तो अब वहां जाने का जो ये प्रक्रिया और ये सब, तो जब हमने तय किया कि हमें अपना अभियान दल वहां भेजना है, तो ये भी तय किया गया कि हम आगे आने वाले 20-25-30 साल में हम किन किन विषय मतलब किन किन एरियाज में वहां पे काम करेंगे। और उसके लिए भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज को वो किया गया, कस्टोडियन बनाया गया, जैसे भूविज्ञान से संबंधित काम के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, मैपिंग के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को, इसी तरह से मीटोलॉजी के लिए इंडियन मीटोलॉजी डिपार्टमेंट, और ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको, और उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए और फिर हर साल अपने यहाँ से कुछ वो नॉमिनेट करते हैं अपने साइंटिस्ट को जो कि उस पर काम करते हैं। इसके अलावा आप जो और वैज्ञानिक है जो कि यहाँ नहीं है, जो बाहर इनोवेट इंस्टीट्यूट में या रिसर्च में काम करते हैं, उनसे भी कहा जाता है अगर आपके पास हमारे इन फील्ड की कॉम्प्लीमेंट्री कोई आप अगर आप कुछ करना चाहें तो आप अपना प्रपोजल दे सकते हैं। तो चूंकि मैं इन फील्ड में मैं विश्वविद्यालय से था, तो मैंने अपना प्रपोजल सबमिट किया जो कि प्रक्रिया है, और वो प्रपोजल टेक्निकल इवेल्युएशन होता है, जैसे कि किसी भी साइंटिफिक प्रपोजल का जो आप देते हैं उसका इवेल्युएशन होता है कमिटी के द्वारा, और वहां पे अगर प्रपोजल अप्रूव होता है उसके बाद में जो दूसरी लड़ाई होती है वो आपको दिल्ली जाकर लड़नी

0: होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में. आपका फिजिकल फिजिकल वो टेस्ट किए जाते हैं सारे के सारे, आपके जो सिस्टम जो है मतलब एक जिसको एकदम पूरा थरो मेडिकल चेकअप होता है वहां पे, और फिर वो जो मेडिकल बोर्ड है वो तय करता है कि आप वहां जाने के लायक मतलब सक्षम है या नहीं है, वहां जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं आप. क्योंकि इसमें एक दिक्कत ये है आलोक जी कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और आप अपना भी काम कर रहे हैं
1: जी, सही बात.
0: और जाने वाले लोग बड़े लिमिटेड हैं, बहुत मतलब ये बहुत बहुत लिमिटेड लोग ही जा पाते हैं
1: जी.
0: तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हर एक व्यक्ति के पास, और अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका काम तो सफर हो रहा है, साथ में पूरा प्रोजेक्ट पे असर पड़ता है
1: जी, जी,
0: तो इसलिए ये रखा जाए. उसके बाद फिर ट्रेनिंग की जाती, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है लोगों को ऑल इंडिया सॉरी इंडो तिब्बतन ITBP का बॉर्डर पुलिस जो है इंडो तिब्बतन, इनका ओली में सेंटर है
1: ओके.
0: वहां पे एक्लिमेटाइजेशन ट्रेनिंग होती है तीन हफ्ते की
1: जी.
0: और फिर आपका फिर एक्चुअल अभियान शुरू होता है.
1: तो इसका मतलब है कि आपका मेडिकल फिटनेस का जो था वो भी बहुत रिगरस था, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बहुत रिगरस था, और ऑब्वियसली कि आज सिंस यू आर ए पार्ट ऑफ द एक्सपीडिशन तो आपकी फिटनेस हर तरह से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल सही बात.
0: हाँ वही, नहीं मैं आप ही की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल फिटनेस के अलावा मेंटल एंड्योरेंस भी एक कंपोनेंट है आजकल. तो सेक्रेटरीज भी आप वहां पे कुछ आपका एनालाइज करते हैं, वो एक ये जो पहले नहीं हुआ करता था आजकल पिछले कुछ एक दो दशक में जोड़ दिया गया है.
1: तो डॉक्टर साहब जब भी आपका सिलेक्शन हो गया और इतने बड़े अभियान के लिए आप जा रहे थे, तो कुछ हमें ये बताइए कि आपकी फैमिली की क्या प्रतिक्रिया थी, परिवार वालों ने कैसा महसूस किया कि इतने लंबी दूरी के जा रहे हैं, किस तरह से आपने उनको कन्विंस किया, कुछ उसके बारे में बताइए. क्योंकि हमारे तो जनरली परिवार वाले ये कहते हैं कि भाई अरे कहाँ इतनी दूर, इतने एक तरह से डेंजरस और रिस्की मिशन है ये एक तरह से तो इसके बारे में क्या हुआ घर पे?
0: नहीं, जहां तक परिवार का सवाल है, परिवार वालों की चिंताएं और संशय तो अपनी जगह थे, लेकिन उन्होंने कभी ये कभी नहीं उन्हें दिए. हालांकि मुझे पता है कि वो मतलब बहुत ज्यादा इस बात से प्रसन्न नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात में ओपनली कभी नहीं कहा कि इसका विरोध नहीं किया, और एक तरह से मुझे सहयोग किया.
1: चलिए बहुत अच्छा है. तो इसका मतलब है परिवार ने आपको सहयोग दिया, सपोर्ट किया, ये तो बहुत बढ़िया बात है. तो चलिए आपके परिवार के नाम पे गाना सुनते हैं, रुक के, और फिर आगे बातचीत करते हैं.
0: बिल्कुल.

0: जयपुर से अंटार्कटिका तक का सफर, तो कुछ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप गए, या पहला वो क्षण कौन सा था जब आपने अंटार्कटिका पे पहला कदम रखा था, कुछ उसके बारे में बताइए, किस तरह से आप वहां पहुंचे, कुछ उसके बारे में हमें बताइए।
1: चलिए, थैंक यू। बड़ी वेरी बड़ी वो यादें हमेशा रहेंगी मेरे मेरे साथ।
0: जी जी
1: धन्यवाद आपका इस बात के लिए। तो जब आप सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में ट्रेनिंग के बाद में फिर आपको एक टाइम बताया जाता है कि आपका आपको असेंबली जिसको कहते हैं, आपके आलोक जी की धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। जो मैं पहली बार गया था और दूसरी बार गया, तो उन दोनों में भी काफी अंतर पड़ गया था। दोनों दोनों जब पहली बार गया था तो हमारा पूरा अभियान जो है वो शिप से, हमारा मतलब जिसको कहते हैं हायर शिप होता है, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है, तो सब चीजें आपको यहाँ से ले जानी है और उसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ती है। तो एक जहाज आप यहाँ से जाता है, तो गोवा से ही एक्सपेडिशन प्रारंभ होता था,
0: जी
1: और सारा सारा का सारा जो सारी की सारी टीम है वो एक गोवा गोवा से जाती थी शिप से। और तब पहला स्टेशन जो होता हुआ करता था उन दिनों में, मतलब उसके बाद लगातार पानी में चलने के बाद में पहला जो स्टॉप होता था वो था मॉरिशस। तो मॉरिशस किसी टूरिज्म के लिए नहीं होता था, क्योंकि एक टेक्निकल स्टॉप था वहां पे, इसकी फ्यूलिंग होती थी जहाज की, वो इंडियन ऑयल का डिपो था वहां पे। तो जहां तक आपने बात की, तो मेरे लिए तो ये मतलब ये जर्नी जो थी समय इसके शिप की जर्नी मेरे लिए पहली पहली जर्नी थी। तो बड़ी शुरू में बड़ा एक्साइटमेंट था जिसको बोलते हैं, लेकिन फिर सुबह शाम चारों तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आता है। तो खैर, क्योंकि आप पूरी टीम में हैं, तो वो समय निकल जाता था। और 25 दिन के बाद हम लोग वहां पहुंचे, 25 दिन की यात्रा थी यह। तो लगभग 25 दिन बाद हम लोग वहां पहुंचे, तो जहां हमारा स्टेशन है वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर जहाज के रुकने की जो किनारा जहां पे कि जहाज डॉक करता है उसके, तो वहां पहुंच के जो पहला अनुभव था वो बहुत निराशाजनक था,
0: अच्छा
1: क्योंकि वहां से फिर आपको हेलीकॉप्टर से स्टेशन तक जाना होता है, जो कि 90 किलोमीटर की यात्रा है।
0: जी
1: और वहां पर मौसम बहुत खराब था उस समय, और हमारे और जो केंद्रीय सचिव थे वो वहां पे स्टेशन पे मौजूद थे, और वो उनको उसी दिन रात को वापस निकलना था। वो स्पेशल फ्लाइट जो वहां से चलती है, तो वो एक बड़ा असमंजस की स्थिति थी कि उनको कैसे अकोर्डिनेट किया जाए, क्योंकि इसमें दिक्कत ये होती है कि दोनों जगह मौसम ठीक होना चाहिए। जहां से आप चल रहे हैं हेलीकॉप्टर के लिए बड़ा वो रहता है, जहां से चलेंगे और जहां डेस्टिनेशन है, दोनों जगह मौसम ठीक नहीं होगा तो हेलीकॉप्टर वो टेक ऑफ नहीं कर, मतलब वो यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन फॉर्चुनेटली 2-3 घंटे बाद मौसम क्लियर हो गया, अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि आप तुरंत पहुंचिए, टेक पे पहुंचिए, आपको निकलना है। तो वो मैं इस मामले में बड़ा लकी था कि मैं फर्स्ट चार जो लोग हम लोग फर्स्ट सॉर्टी में गए थे, तो चार लोग जो होते हैं वो बड़े विशेष माने जाते हैं। जब हम मैत्री पहुंचे, उससे पहले जब ऊपर से देखते हैं, तो वो जब जो मैत्री जो आप फोटोग्राफ्स में इतने साल से देखते आ रहे थे, वो साक्षात दिखाई देता, तो ऐसा लगता है कि वो जिसको मिनी इंडिया की फीलिंग आती है। जब आप पहुंचे तो ऐसा लगता है अपने घर आ गए।
0: तो ये तो बड़ी जोरदार, फिर मतलब कुछ जो स्टेशन बना हुआ है वो चूंकि इंडिया का है और नाम भी उसका मैत्री है, तो उसको देखकर आपको बहुत ही बढ़िया महसूस हुआ होगा। बहुत बढ़िया बात।
1: जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है अपने घर, मतलब अपना वो भारत भारत आ गया, जिसको वहां पर उसको मिनी इंडिया भी कहते हैं लोग।
0: तो इस सारे विल्डरनेस में आपको एक अपना अपना सा कुछ लगा वहां। बिल्कुल सही बात।
1: लेकिन हाँ, जब आप पहुंचते तो वो एक एक सेरेमनी होती है वहां पे स्पेशल, कि
0: अच्छा,
1: स्टेशन हैंड ओवर टेक ओवर। तो हमारे जो हम लोग जब पहुंचे थे, तो मेरे साथ हमारे जो स्टेशन जो मतलब इंचार्ज थे, जो टीम लीडर जिसको बोलते हैं, तो वो भी थे। तो और ये बड़े आनंद फानंद में सेरेमनी की गई। उसके बाद में जो जो सेक्रेटरी थे उनको उसी हेलीकॉप्टर से वहां भेजा गया। वो एक रशियन स्टेशन है पास में, वो एक वहां पे एक एयर स्ट्रिप मेंटेन करते हैं। एयर स्ट्रिप क्या होती है, सिर्फ बर्फ है वहां पे, सॉलिड आइस है जिसके ऊपर हवाई जहाज लैंड करते हैं। तो वो जो शुरू के 4-5 घंटे थे, काफी बहुत सारी घटनाएं उसमें हुई।
0: तो चलिए, तो फिर अब आपसे बात करते हैं इसके बाद में, वहां की जो रूटीन थी आपकी किस तरह से करते हैं। यहाँ रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं, फिर आपसे आपकी जो वहां की लाइफ थी उसके बारे में, रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बातचीत करते हैं। एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं।
1: जी।

0: चला जाए सपनों से आगे कहां।
1: हाँ, तो वेलकम बैक डॉक्टर पंडित। तो अभी बताइए कि जैसे वहाँ का जो आपका डेली रूटीन था, रोजमर्रा की जिंदगी थी, रहना खाना सोना कम्युनिकेशन, ये कैसे बीतता था? क्या प्लानिंग होती थी? रिसर्च के लिए कैसे टाइम निकालते थे? और कभी क्या होम सिकनेस टाइप भी कुछ रहती थी? आप लोगों को कुछ बताइए अपने रूटीन के बारे में।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं पहुंचने का, थोड़ा सा अब थोड़ा सा बदल गया है साहब।
1: अच्छा,
2: अब हमारा जो एक्सपेडिशन है अब केप टाउन से शुरू होता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: और ये महसूस किया गया कि उसमें बहुत समय लग जाता था आने जाने में। और एंटार्क्टिक जाने में एक बड़ी दिक्कत यह है कि आप एक निश्चित समय में अगर आप वहां से नहीं निकलेंगे तो फिर आप 6 महीने के लिए वहां फंस जाएंगे, क्योंकि वो जो समुद्र है वो जमने लगता है विंटर में।
1: अच्छा।
2: तो लगभग मार्च के मध्य में, 20 मार्च तक तो निश्चित रूप से आपको वहां से निकलना पड़ेगा। तो एक जो वहां काम करने के लिए जाने के लिए विंडो मिलती है, बहुत छोटी सी मिलती है, नवंबर से लेके मार्च तक की।
1: अच्छा।
2: तो ये लगा कि काफी समय हमारा यात्रा में निकल जाता है। तो अब हमारा जो एक्सपेडिशन है वो केप टाउन से शुरू होता है। मतलब जहाज केप टाउन से जाता है, केप टाउन तक सामान्य अपने जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उससे जाते हैं।
1: अच्छा।
2: और वहां से फिर, तो वहां से 12 दिन लगभग, एक तरफ के 12 दिन कम हो गए, मतलब कुल मिला के 20-25 दिन आपको वहां एक्स्ट्रा मिल जाते हैं रहने के लिए।
1: ओके।
2: तो अब आपका प्रश्न था वहां के रूटीन के बारे में। तो जब आप आपकी टीम में लगभग 65% तो साइंटिस्ट होते हैं और 30-35% जो होते हैं वो सपोर्ट स्टाफ होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ। उसमें इंजीनियरिंग वाले होते हैं जो कि वहाँ मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि वहाँ मेंटेनेंस में का काम करते हैं। और एक चीज और बताऊं, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन आपको खुद करनी पड़ती है, आपका पावर सोर्स खुद का होना चाहिए।
1: अच्छा।
2: और इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज लाइफ लाइन, अगर आपकी बिजली बंद हो गई तो लाइफ बंद हो जाएगी। हर चीज वहाँ बिजली पे कनेक्टेड है।
1: जी।
2: तो आपके ये जो जनरेटर्स रहते हैं, 2 जनरेटर्स काम करते हैं, एक बैकअप में रहता है और 2 जनरेटर्स पीछे उसमें मेंटेनेंस में रहते हैं।
1: जी।
2: और उसके अलावा आपके 2 कुक्स होते हैं जो कि टीम के साथ जाते हैं, और 2 डॉक्टर्स होते हैं। और आमतौर पर डॉक्टर्स की शिकायत ये रहती थी कि सर हमारे पास काम ही नहीं, हम बेकार हो गए, क्योंकि जो वहां पे जो कंडीशंस हैं इतनी ठंड में जो है जुकाम का वायरस सर्वाइव नहीं करता, तो जुकाम भी नहीं होता लोगों को।
1: अच्छा अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। ओके।
2: और जहां तक बात है रूटीन की, तो एक शाम को एक मीटिंग होती है, कल के सारे प्रोग्राम्स, कल का प्लान्स चेकआउट होते हैं, कल का क्या रहेगा। और क्योंकि 2 हेलीकॉप्टर्स हुआ करते हैं, कभी 2 होते हैं, कभी 1 होता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का, जैसे शुरू में 2 छोटे हेलीकॉप्टर्स हुआ करते थे, अब आजकल जो है एक बड़ा हेलीकॉप्टर होता है जो कि सामान के लिए होता है, और दूसरा एक छोटा हेलीकॉप्टर जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। तो किनको कैसे जाना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, एक हेलीकॉप्टर एक पार्टी को छोड़ के आएगा, फिर जैसा भी है वो सब तय होता है। और हर चीज बिल्कुल मेटिकुलसली तय होती है कि कल कौन कौन क्या करेगा। और आपकी, और उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है, वहां पे सब कुछ आप ये प्रकृति के भरोसे है। मौसम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहां पे। कई बार ऐसा होता है कि 3-3 दिन तक आप अंदर ही बैठे रहते हैं, मौसम खराब है, आप बाहर नहीं निकल सकते। तो मौसम बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मौसम की जानकारी हम लोग आप जितने स्टेशन से आपस में एक दूसरे से शेयर भी करते रहते हैं, क्योंकि खासतौर जब आपको बाहर जाना है तो आप जिस समय जाना है उस समय का मौसम, वहां पहुंचने का मौसम, वहां से निकलते टाइम यहाँ आने का, ये सब चीजें फेवरेबल हों तभी आप जा सकते हैं। और हम लोग जब फील्ड में जाया करते थे तो अब ये होता था कि आप एक दिन का कुछ खाने का सामान सर्वाइवल के लिए और अपना स्लीपिंग बैग टाइप का साथ लेके जाएं। अब कहीं ऐसा हो कि आपको अटक गए कहीं, वहां लौट नहीं सकते, तो रात को कम से कम वहां हेलीकॉप्टर में बैठ के अपना बचाव कर सकते हैं। और तो जहां तक साइंटिफिक काम है, उसके अलावा जो बाकी के काम है वो सब भी आप ही को करने पड़ते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण वहां का ये है कि इट्स नॉट जस्ट साइंस, आपकी जो जिसको कहते हैं मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर, वहां पे पहली बार पता लगती है कि आप जो घर में जो छोटे काम है जिनके लिए आपके बहुत सारे यहाँ हेल्प जिनको रखा होता है, वहां वो सारे काम आपको करने पड़ते हैं। और 2 साइंटिस्ट की ड्यूटी रोज, जिसको कहते हैं गैली ड्यूटी कहते हैं वहां पे, और वो आप उस दिन साइंस नहीं करेंगे, उस दिन आप स्टेशन का सारा काम करेंगे। जैसे सफाई से लेके स्टेशन की सफाई, उसके किचन में उसका सब उसका हेल्प करना, ये कुक्स का, उसके अलावा टॉयलेट्स की सफाई जो कि बड़ी अपने आप में बड़ी जटिल प्रक्रिया है, मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, पर ये है कि जो सबके टॉयलेट्स हैं उनको उसको जला के राख इकट्ठी करके पैक करके बॉक्सेस में रखने का काम भी आप ही को करना पड़ता है, ये रूटीन है। फिर शाम को आपकी वही, चूंकि चूंकि आपकी लाइफ इतनी मोनोटोनस होती है, तो वहां पे प्रयास यही किया जाता है कि आपको जो सुविधाएं दी जा सके वो दी जाती हैं। लाइब्रेरी वहां पे काफी अच्छी लाइब्रेरी है, तो आपके पास बहुत सारे ये वीडियोस हैं, इसके सीरीज हैं, बुक्स हैं, और छोटा सा जिम भी अभी हमारे पास है यहाँ पे स्टेशन पे, टीटी खेलने की सुविधा है। फिर वो भी रहता कि एक और भी थी, मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूँ, क्योंकि लाइफ बड़ी मोनोटोनस होती है, तो कोई भी ओकेजन सेलिब्रेशन का होता है वहां पे उसको जरूर वो किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। तो सब लोगों से अपने डेट ऑफ बर्थ, उनकी ये वेडिंग एनिवर्सरी, उनके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है, और जिस दिन वो होता है उस दिन वो सेलिब्रेट होता है।
1: तो डॉक्टर साहब आप भी म्यूजिक का शौक रखते हैं, कोई गाना वाना गाते थे क्या वहां भी आप?
2: नहीं, सुनने का शौक निश्चित रूप से है, वहां पता लगा कि वो तो जो सुनने का शौक रखने वाला वो गा भी लेता है।
1: कोई ऐसा खास गाना जो आपने वहां गाया हो और आपको याद रहा जिंदगी भर?
2: नहीं, वो तो वहां ऐसा कुछ शो नहीं था, जब भी जो जो लोगों ने कहा सुना दिया।
1: जी जी जी,
2: क्योंकि हमारे कुछ अच्छे गायक भी थे वहां पर।
1: तो चलिए श्रोताओं, इस गाने और म्यूजिक की बात पे, और आपने देख ही लिया कि किस तरह से हम, एक आम सी कहावत है, जंगल में मंगल भी मना लेते थे ये लोग वहां, तो इस तरह से अपने आप को एंटरटेन भी रखते हैं, इतनी रिगरस लाइफ भी होती है, इतने विल्डरनेस में किस तरह से काम करते हैं, कितनी टफ कंडीशंस में, और किस तरह से अपने आप को एंगेज रखते हैं, कितना मजा आ गया सुन के। एक गाना सुनते हैं और फिर डॉक्टर साहब से थोड़ी आगे की बातचीत करते हैं।

0: हाँ डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये वहां किसी तरह के कोई जीव जंतु नहीं है, कोई मानव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि वहां पेंगुइन्स हैं। तो अब ये बताइए कि पेंगुइन्स ही क्यों इस भीषण ठंड में जीवित रह लेते हैं, और क्या क्या है वहां पेंगुइन्स के अलावा, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: हाँ, वहाँ पे जब ऐसा ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ नहीं है।
0: जी
1: जिसको जैसे मैंने बताया कि आप भी जानते हैं कि ये जो एंटार्क्टिक है, ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। एक महाद्वीप और बहुत बड़ा आइलैंड भी मान सकते हैं आप। और इसके जो इसके जितने भी पृथ्वी के जितने भी ये महासागर हैं, वो सब वहां जाके वहीं वहीं जाके खत्म हो जाते हैं।
0: ओके, अच्छा।
1: तो उन जो इसके चारों तरफ का जो पानी, जो समुद्र है, उसको उन्होंने सदर्न ओशन कहते हैं। वो चाहे वो इंडियन ओशन हो, चाहे वो अटलांटिक हो, उसको एक जनरल नाम दे रखा है, सदर्न ओशन। उसमें काफी सारे काफी बायोडाइवर्सिटी है। उसमें व्हेल्स मिलती हैं और कई सारे वो मिलते हैं वहां पे, जो समुद्र जीव। लेकिन बात जब करते हैं एंटार्क्टिक की, तो एंटार्क्टिक के साथ सीधा संबंध है पेंगुइन्स का। अगर मतलब वो अगर वैसा कुछ इसको अगर डायरेक्ट एंटार्क्टिक से क्या चीज याद आती है,
0: जी
1: तो पेंगुइन्स। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा यहाँ के, जो हम लोग जो ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि अंटार्कटिक किसका होना चाहिए, अगर हो किसी का होना चाहिए तो इनका पेंगुइन्स का होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: ये और बड़ी विशेष तरह के ये जानवर है, तो बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकते। ये मनुष्यों की तरह चलते हैं दो पैरों पर, और इनका सोशल सिस्टम होता है, और बड़ा अच्छा लगता है इनको देखना। आप इनके साथ में घंटों गुजार सकते हैं। और इनकी ये शोध, ये चूंकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन लोग बता कहते इनके इनके इस ब्लड में कुछ वो है एंटी फ्रीजिंग तत्व हैं,
0: अच्छा
1: जो कि इनको इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में इनको जीवित रखते हैं। और मजे की बात ये सर कि वहां पे कोई शेल्टर नहीं होती, तो इन ये सब एक्सट्रीम कोल्ड में भी ओपन में रहते हैं।
0: तो चलिए, ये पेंगुइन वाला सवाल जो मेरे दिमाग में कई बार आता है, तो जब भी बात होती है एंटार्क्टिका की, कि आपका मतलब इनके ब्लड में ही ऐसी कोई खास बात है कि जिसकी वजह से एंटी फ्रीज उसके अंदर एलिमेंट्स हैं कि ये एक्सट्रीम कोल्ड में भी वहां रह लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आप ने एक इतनी बड़ा टफ एक्सपेडिशन किया, दो दो बार एंटार्क्टिका आप हुआए, तो लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति, या अपने सहकर्मियों के प्रति, या अपने परिवार के प्रति, अगर ये सबको हम एक साथ रख लें, तो आपका जो आउटलुक है या जो नजरिया है या लाइफ की प्रायोरिटीज है, इसमें कुछ ऐसा चेंज आया है व्यक्तिगत रूप से आपको लगता है, आपकी सोच में, आपके विचारों में ऐसी कुछ बात है?
1: हाँ, कुछ चेंज तो निश्चित रूप से आया है। आपके वहां जाने के बाद, जब आप अपने आप को, जब आप बाहर आप जाते हैं वहां पे, तो प्रकृति का जो एक विशाल रूप जो आप देखते हैं, तब आपको ये एहसास होता है कि आप बहुत छोटे हैं, आप कुछ भी नहीं है। तो ये अपने गौण होने का जो एहसास है, ये वहां पे बहुत बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और दूसरा जो था कि जिसको कहते हैं कॉमरेडरी, या जो आपकी टीम वर्क, इससे बढ़िया उदाहरण कहीं पर भी नहीं है। एक शायद हमारी आपने शायद पूछा था, मैं बताना भूल गया, कि ये परिवार के बारे में, परिवार को कितना मिस करते हैं, कितना याद करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात वहां पर, कि वो इतना बड़ा परिवार वहां मिल जाता है कि आपको अपने परिवार की याद बहुत कम आती है। ये मतलब कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिलता कि आपको अपने जो परिवार आपका हिंदुस्तान भारत में छूटा हुआ है, उसको याद करने का। वो कभी कोई उदास हो जाता है तो सारे लोग मिलके उस वो सब सबके सबके लिए सब, मतलब सबका काम हो जाता है। तो कभी कभी महसूस ही नहीं होता कि आप परिवार से दूर हैं। तो ये जो एक ये जो मतलब जब आप किसी बहुत कठिन परिस्थितियों में साथ रहते हैं, तो वो जो साथ है, वो जो जुड़ाव है, वो जीवन भर का जुड़ाव बन जाता है। ये एक जिसको कहते हैं हासिल वहां का जो है, ये भी है। और तीसरा ये था कि वो वहां पे सब बराबर हैं, क्योंकि अलग जब जो वैज्ञानिक हैं, वो अलग अलग श्रेणियों से आते हैं। कुछ डायरेक्टर के स्तर के हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, और कुछ हमारे ये जो थे वर्कर लेवल के भी लोग होते हैं, लेकिन उनको किसी तरह की कोई जो सुविधाओं में कोई कमी नहीं हो, सब बराबर होती है। सबको रहने की जगह बराबर है, सबकी खाने का हर चीज में सब बराबर, मतलब सब मेंबर्स हैं, उसके कोई कोई छोटा बड़ा वहां नहीं है, और सबको सब काम करने हैं। आपको आपको कोई ये वो नहीं है कि आप बड़े डायरेक्टर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, तो इसलिए आप ये काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको सब काम करने हैं। तो ये डिग्निटी ऑफ, ये मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, डिग्निटी ऑफ लेबर, सब बहुत चीजें वहां पे। अब जब उसके बाद मुझे कोई काम करना करने में दिक्कत नहीं आती।
0: मजा आ गया इसका मतलब। एक तो डिग्निटी ऑफ लेबर है, सब लोग मिलके चीयर अप कर, जिसको विश्व बंधुत्व हम कहते हैं, वो एक फीलिंग आप लोगों में वहां आ जाती है। बहुत बढ़िया बात है डॉक्टर साहब, पता ही नहीं लगा आपने तो ऐसी यात्रा पर हमें ले चले, हमें समय का पता ही नहीं लगा और हम बातें करते जा रहे हैं लेकिन कोई ना कोई समय सीमा होती है। तो आज की इस बातचीत में इतना मजा आया है। तो डॉक्टर पंडित, आज की इस बातचीत ने हमें केवल एंटार्क्टिका के बारे में जानकारी नहीं दी, बल्कि हमें ये महसूस किया कराया कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं होता, विज्ञान साहस भी है, जिज्ञासा भी है, अनुशासन भी है और प्रकृति के प्रति विनम्रता भी है। आपकी बातों से ऐसा लगा मानो हम भी उस बर्फीले महाद्वीप पर आपके साथ चल रहे हैं। हमें विश्वास है आज का यह संवाद अनेक युवाओं के मन में साइंस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के प्रति नई जिज्ञासा और नया उत्साह जगाएगा। रेडियो एसएन के सभी श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद, आपने अपने जीवन के इतने अनमोल अनुभव हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब।
1: थैंक यू वेरी मच। आपका भी मुझे एक बार पुनः उस यात्रा पे ले जाने के लिए, मैं जब भी वहां की बात करता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक बार पुनः वो सब चीजें जीवित हो जाती हैं। आपका विशेष आभार इस बात के लिए और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसको सुना। थैंक यू वेरी मच।
0: चलिए डॉक्टर साहब, हम आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, निरंतर सक्रिय वैज्ञानिक और जीवन की मंगल कामना करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आलोक कुमार मैं आपसे विदा लेता हूं, आप फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक व्यक्तित्व के साथ, एक नई रोचक बातचीत के साथ। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग, गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है हेल्थ यानी स्वास्थ्य का पिंक रंग। मैं हूं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार, और हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, ये कार्यक्रम एक ऐसा मंच है जहां बात होती है

0: शब्दों की नहीं बल्कि जागरूकता, सेहत और बदलाव की भी होती है। आज का हमारा विषय है महिलाओं का स्वास्थ्य, क्योंकि कहा जाता है जब एक महिला स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है। और आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत जिन्होंने हजारों महिलाओं तक पहुंचकर उन्हें न सिर्फ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की भी राह दिखाई। जी हाँ, हमारे साथ हैं शिवांगी सक्सेना, एक अनुभवी इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर, डाइटिशियन और विमेन हेल्थ अवेयरनेस एक्टिविस्ट। 5,000 से ज्यादा महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाकर और कोविड जैसे मुश्किल दौर में भी लगातार जागरूकता फैलाते हुए इन्होंने सच में है एक मिसाल कायम की है। तो आइए शुरू करते हैं ये खास बातचीत और जहां जानेंगे उनके काम के बारे में और सबसे जरूरी हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच आलोक जी, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए, और अपने सारे ही श्रोताओं को मैं मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो चलिए शिवांगी जी, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए और हम शुरुआत से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी जिंदगी अर्ली लाइफ कैसे रही, कुछ बचपन के बारे में बताइए, कुछ स्कूलिंग के बारे में बताइए, कैसी आप स्टूडेंट थी, शैतान थी या सोबर थी, कुछ बताइए इसके बारे में, कहाँ शुरुआत हुई आपकी।
1: मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो मैं बहुत ही साधारण परिवार से मेरा ताल्लुक रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ था और फादर मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं और इसी वजह से अलग अलग शहरों में मेरी एजुकेशन रही। बॉर्न एंड ब्रॉट अप वैसे राजस्थान में हूँ, सवाई माधोपुर जिले में मेरा जन्म हुआ था।
0: जी जी।
1: स्कूलिंग मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन अगर बोलूं तो मेरी कॉन्वेंट स्कूल सोफिया से रही है, कोटा राजस्थान।
0: अच्छा, कोटा से पढ़ी है आप। ओके,
1: हाँ जी। कुछ एजुकेशन मेरी फिर जयपुर में भी रही, उसके बाद फिर फादर की पोस्टिंग की वजह से हम लोग हरियाणा शिफ्ट हो गए थे, पंजाब हरियाणा का बॉर्डर अंबाला कैंट, कैंटोनमेंट सिटी है पूरी। और एयरफोर्स स्कूल में मेरा मतलब जो आगे की एजुकेशन रही वो मैं एयरफोर्स स्कूल से पास आउट हूँ। उसके बाद काफी सारी ऐसी यादें हैं बचपन से जुड़ी हुई, क्योंकि वैसे मैं बहुत ज्यादा शाय पर्सन रही हूँ अपने बचपन में, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन रही हूँ, तो बहुत ज्यादा ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं रहा। जो फ्रेंड्स थे स्कूल में बने, अलग अलग स्कूल्स में पढ़ी तो अलग अलग सिटीज में और अलग अलग स्कूल्स के फ्रेंड्स मेरे रहे हैं। साथ में उस टाइम पे मतलब बचपन में, जैसे आज के टाइम में तो बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली हैं, गैजेट फ्रेंडली हैं, तो हमारे टाइम पे तो ये सब चीजें नहीं होती थी। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी हमारे बचपन में, सतोलिया खेलना, कबड्डी, खो खो, ये सारी चीजें, साइकिलिंग करना, ये सारी चीजें बहुत इन्वॉल्व रही मेरे बचपन में। और कल्चरल इवेंट्स में बहुत पार्टिसिपेशन रहा है मेरा, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं म्यूजिक में ही थे हमेशा, मदर फादर, इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी पैटर्नल साइड से, मैटर्नल साइड से, दोनों ही मतलब नाना जी के परिवार से भी और दादाजी के परिवार से भी म्यूजिक जो है वो ब्लड में रहा है। तो काफी सारे कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। यही थोड़ी सी यादें हैं जो जिनके सहारे अभी तक की लाइफ मेरी बहुत अच्छी चल रही है।
0: That's wonderful. तो ये जान के तो बहुत ही अच्छा लगा, आपके पेरेंट्स भी बिल्कुल म्यूजिक के दीवाने हैं और बिल्कुल उसमें दिलचस्पी है उनकी, तो चलिए आपका भी म्यूजिक से थोड़ा बहुत तो कनेक्शन होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि फैमिली बैकग्राउंड में कोई हेल्थ या मेडिकल फील्ड से भी कोई कनेक्शन रहा है आप लोगों का, या सिर्फ आपने ही शुरुआत की?
1: नहीं, मेडिकल फील्ड में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं रहा या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा कि मेडिकल से कोई कनेक्शन रहा हो। फर्स्ट पर्सन मैं ही थी जो इस ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में अपने आप को लेकर के आई।
0: तो ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ आपका इंक्लिनेशन कैसे हुआ, इससे जुड़ाव कैसे हुआ, ये कैसे डेवलप हुआ आपका?
1: इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मेरे से ही रिलेट करती है।
0: ओके।
1: क्योंकि हाँ, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जो है उसका रुझान, मतलब मैं खुद बहुत अनहेल्दी पर्सन रही इस इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टार्टिंग डेज में, मतलब मेरा बचपन में भी मैं कुछ ना कुछ बीमारी चलती रहती थी, एलर्जिक, कोल्ड एलर्जिक मैं रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे, मतलब जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो रही थी उसी टाइम पे मेरी एंगेजमेंट हुई, एंड फ्यू मंथ बिफोर माय मैरिज आई वाज डायग्नोस्ड विद अ ट्यूमर इन पिट्यूटरी ग्लैंड।
0: अरे अच्छा,
1: तो वो मतलब एक ऐसा पॉइंट था मेरी लाइफ में, एक ऐसी टर्निंग स्थिति थी जो कि मतलब शादी से पहले आप समझ सकते हैं एक लड़की के लिए ये डायग्नोस होना कि ट्यूमर है ब्रेन में। और जब एलोपैथी में हमने कंसल्ट किया, पेरेंट्स को भी टेंशन कि कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए, शादी में 2-3 महीने रह गए हैं और ये बात निकल के आई है कि भाई ट्यूमर है, और जब कंसल्टेशन हुआ डॉक्टर्स के साथ में, देन दे सजेस्टेड कि आप तो सर्जरी कराएं, एकमात्र इसका इलाज है सर्जरी। पर अब ऐसी सिचुएशन, मतलब सर्जरी जो थी वो भी नॉर्मल सर्जरी नहीं थी, सर्जरी के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, मतलब साइड इफेक्ट्स हम उसको कहेंगे, वो बहुत ही ज्यादा मतलब खौफनाक थे, बहुत डेंजरस थे वो। पहला था कि मैं अपनी विजन हमेशा के लिए लूज कर जाती, मैं कभी देख नहीं सकती थी आफ्टर सर्जरी। और सेकंड जो मेरा मतलब चैलेंजिंग फेस था आफ्टर सर्जरी, वो था कि मैं कभी कंसीव नहीं कर पाऊंगी। तो दोनों ही मतलब चीजें ऐसी थी कि अगर मैं सर्जरी कराती हूँ तो भी प्रॉब्लम है, और नहीं कराती हूँ तो प्रॉब्लम फेस कर ही रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्टिव मेरे हस्बैंड रहे, जिन्होंने मतलब जब मैंने उनके साथ में ये सारी चीजें डिस्कस करी कि भाई ये सिचुएशन है तो अब क्या करना चाहिए, आप शादी करने के लिए राजी हैं तो ठीक है, नहीं तो मतलब बाद में ऐसी कोई सिचुएशन ना खड़ी हो कि भाई मेरे पेरेंट्स के ऊपर या मेरे ऊपर कोई ब्लेम आए कि भाई मैंने आपको अप्राइज किया सिचुएशन से, या मैंने छुपा के शादी कर ली। तो वो चीजें मैं टॉलरेट नहीं करूंगी, क्योंकि बीइंग अ इंडियन गर्ल कोई भी लड़की अपने पेरेंट्स के ऊपर देखिए बात नहीं लेना चाहती है। तो बस फिर हस्बैंड सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बोले जैसे जा रहा है, बोले जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो चीज चलने दो, जो उन्होंने बोला है अंडर ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए जितना भी है वो हम एज इट इज रखेंगे, बोले बाद की बाद में देखेंगे। बोले अभी तो एंजॉय करो शादी की शॉपिंग, सब कुछ अच्छे से होने दो। तो बस अंडर ऑब्जर्वेशन रही डॉक्टर्स के, शादी हो गई। उसके बाद बहुत ज्यादा मतलब मैं कहूंगी कि आई वॉज वेरी लक्की कि मेरे डॉक्टर्स भी बहुत सपोर्टिव थे इन सब चीजों को लेकर के। दे टोल्ड मी कि आप बिल्कुल अच्छे से कंसीव करो, एक आपका हेल्दी बेबी हो जाए, उसके बाद हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। तो वो मेरी जो 13 ईयर्स की जर्नी थी वो बहुत स्ट्रगलिंग रही है हेल्थ को लेकर के। अब जब हम इतनी बड़ी हेल्थ इशू को फेस कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग कुछ ना कुछ सर्च करते हैं कि कुछ ऐसी चीज हमें मिल जाए जिससे कि हम ठीक हो जाए और हमें ऑपरेशन भी ना कराना पड़े। तो साथ के साथ मेरा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी चला, उससे भी काफी रिलीफ था। पर एक कहीं ना कहीं साथ में टेंशन थी कि यार जब भी, क्योंकि डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था, बोला हुआ था कि जैसे ही आपका ब्लर विजन हो या थोड़ी सी भी आपको देखने में प्रॉब्लम आए तो यू शुड इमीडिएटली गेट बैक टू अस, उस समय हमें आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो वो एक जो मेंटल स्ट्रेस था, मेंटल प्रेशर था, वो मेरे साथ चल ही रहा था। उसी टाइम फिर ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स का, ऑल्टरनेटिव मेडिसिंस का पता चला। फिर सोचा जब इतनी सारी चीजें ट्राई करी है, क्योंकि उस टाइम एडवाइजेस भी बहुत सारे लोग देते हैं ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, ऐसा कर लो, तो सही होने के लिए हम कुछ ना कुछ ट्राई करते ही रहते हैं। तो इसीलिए फिर मन में कहीं ना कहीं था कि जब इतनी सारी चीजें ट्राई करी है तो व्हाई नॉट गो फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स आल्सो। तो फिर ये 360 डिग्री चेंज था मेरी लाइफ में, ये टर्निंग पॉइंट रहा है मेरी लाइफ में। बिकॉज उससे पहले मैं एजुकेशन सेक्टर में थी, 8 ईयर्स मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है। तो कभी सोचा नहीं था कि मैं मेडिकल फील्ड में भी जा सकती हूँ, क्योंकि कभी माइंड में आई नहीं थी ये चीजें। और जब खुद सफर होते हैं तो कहीं ना कहीं से जब हमें अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाती है कि जिससे हम ठीक हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं।
0: तो इस पॉइंट से आपका ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जुड़ाव शुरू हुआ। चलिए और आगे बातचीत करते हैं। लेकिन जो आपने मुझे अपनी ये सारी बात सुनाई है ये तो बहुत ही ज्यादा टचिंग भी है और करेजस भी है। तो मैं आपके पति ने जो हिम्मत दिखाई उस स्थिति की, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कैसा एक सिचुएशन रही होगी। उन्होंने जिस तरह से आपको सपोर्ट किया है, तो उनके नाम में रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं, क्योंकि बहुत बहुत इम्प्रेस है कि उन्होंने जिस तरह आपको सपोर्ट किया आगे की लाइफ पे और उस जंक्चर पे। नहीं तो कोई भी और होता, वो कहता चलो भाई कोई बात नहीं है, रहने दो इसको, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बातचीत को जारी करते हैं
1: जी।

0: हाँ तो शिवांगी जी, अब हम थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में, फिर आपका ये कैरियर बना किस तरह बना इसके बारे में बातचीत करते हैं। आपने स्पेसिफिकली ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर फील्ड में ही क्यों चूज किया, ये कब से शुरुआत हुई आपकी, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, ये कैसे आपकी शुरुआत हुई?
1: ये 2019 में जब मुझे इस चीज के बारे में पता चला, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स के बारे में, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के बारे में,
0: जी
1: तो मुझे भी मतलब कहीं ना कहीं तो देखिए डाउट रहता है मन में कि पता नहीं वर्क करेगा कि नहीं करेगा।
0: सही बात है,
1: तो
0: बिल्कुल
1: सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई करना शुरू किया। 2019 में मैं इन सब चीजों से इंट्रोड्यूस हुई थी, और उस तब तक मतलब एवरी ईयर आई हैव टू गो फॉर एमआरआई स्कैन्स एंड ब्लड टेस्ट, ये सारी चीजें मेरी चलती रहती थी। एवरी 6 मंथ्स पे स्क्रीनिंग होती थी, ब्लड टेस्ट वगैरह होते थे, और मतलब चल ही रहा था। साथ में ये थेरेपीज मैंने स्टार्ट करी, तो थेरेपीज का, हालांकि इन थेरेपीज का क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा डिले होता है, ऐसा नहीं है कि हमने आज थेरेपी ली और अभी हमको रिलीफ आ जाएगा, तो
0: सही बात
1: पेशेंस भी रखना बहुत पड़ता है हमें इसमें। तो जब यही था कि पेशेंस रखते रखते आफ्टर 15-20 डेज मुझे थोड़ा थोड़ा सा रिलीफ आना शुरू हुआ, फिर
0: ओह
1: मैंने इसको कंटिन्यूअस करना शुरू किया। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हमें इसमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। फिर जब स्कैन्स वगैरह हुए तो उसमें सारी चीजें मेरी नॉर्मल थी, एंड माई डॉक्टर वॉज सरप्राइज। वो
0: अच्छा
1: बोले, जहाँ बोले इतने सालों का, मतलब 17 ईयर्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस, उन्होंने बोला इट वॉज अ मिरेकल। बोले ऐसा
0: ओहो,
1: मैंने कभी देखा नहीं कि बिना ऑपरेशन के ट्यूमर ठीक हो जाए पिट्यूटरी का। तो
0: अरे
1: बोले अच्छी
0: अच्छा
1: बात है कि बोले ये चीज हुई। और क्योंकि उन्होंने मुझे कभी बाउंड नहीं किया कि आप इस ट्रीटमेंट में ही रहो, एलोपैथिक में ही
0: ओके
1: रहो, आप किसी
0: अच्छा
1: और ट्रीटमेंट को फॉलो ना करो। उन्होंने बोला कि भाई हमें ठीक करना है इस चीज को, तो चाहे वो एलोपैथी से ठीक हो, चाहे होम्योपैथिक में ठीक हो, चाहे किसी और चीज से ठीक हो, पर बिना ऑपरेशन के अगर ठीक हो जाती है तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। तो बस उसी तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन आता गया कि भाई हाँ ठीक है, मैं ठीक हो रही हूँ। फिर जब 100% मुझे रिजल्ट मिला, फिर मैंने इस चीज को एज अ चैलेंज लिया कि नाउ आई विल स्टार्ट फर्दर स्टडिंग फॉर दिस फील्ड। और फिर धीरे धीरे मतलब चीजें शुरू होती गई।
0: वंडरफुल, आपकी तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और इंस्पायरिंग भी है। और आपका जो ट्यूमर, इससे ठीक हो गया, अब तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। देखिए श्रोताओं, बहुत बहुत दिलचस्प बातचीत हो रही है शिवांगी सक्सेना के साथ में, और वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रही है। अब तो शिवांगी जी, आप मुझे ये बताइए एक लिसनर्स के लिए सिंपल लैंग्वेज में, कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए।
1: जी देखिए, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर तो बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल वे है। उसके बाद आया इलेक्ट्रो एक्यूपंचर, और मैं जिस फील्ड में काम कर रही हूँ वो है इसका भी एडवांस्ड वर्जन, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
0: अच्छा
1: एक्यूप्रेशर में तो देखिए जो ट्रेडिशनल वे रहता है कि वी जस्ट प्रेस द एक्यू पॉइंट्स बाय हैंड्स, या उसको मतलब प्रेशर देना थंब से, फिंगर टिप से, ठीक है, सर्कुलर मोशन में मसाज करना 1-2 मिनट तक। उसमें एक्यूरेसी की भी प्रॉब्लम रहती है कि कई बार पॉइंट्स, क्योंकि एक्यू पॉइंट्स जो होते हैं हमारे बहुत थिन मेरिडियंस होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, पता भी नहीं चलते, बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है।
0: ओके
1: तो वो भी, हाँ वो भी, उसमें भी रिजल्ट मतलब पेन रिलीफ के लिए इट्स गुड, पर उसमें भी आपको मतलब प्रॉपर एक्यू पॉइंट्स पता होने चाहिए तभी आप उसको फॉलो कर पाते हैं। फिर बात करते हैं हम एक्यूपंचर की, तो ये भी एक ट्रेडिशनल वे है जिसमें कि हम नीडल्स को इंसर्ट करते हैं अपने बॉडी में, तो वो भी हमारे जो एग्जैक्ट जो पियर्सिंग होती है नीडल्स की वो अप्रोप्रिएट एक्यू पॉइंट पे होनी चाहिए।
0: ओके
1: अगर वो नहीं हो रही है तो कई बार हमें मतलब रिलीफ नहीं आता। इवन पेशेंट्स जो होते हैं इससे डरते भी हैं, क्योंकि सुई चुभने का जो एक एहसास होता है वो ही बड़ा मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार सुई चुभेगी मुझे दर्द होगा, पेनफुल होता है वो। तो कई बार पेशेंट्स उसको प्रेफर नहीं करते कि नहीं यार सुई, और फिर वो मतलब इंसर्ट करके रखनी पड़ती है काफी लंबे समय तक। तो पेशेंट बाउंड हो जाता है कि अपने रोजमर्रा के काम करने में दिक्कतें आती हैं, और अगर प्रॉपर इंसर्शन नहीं हुआ नीडल का, फिर कई बार नीडल से इन्फेक्शन होने के चांसेस हालांकि कम होते हैं पर कई बार हो जाते हैं, तो उससे भी घबराहट होती है पेशेंट्स को। तो इसलिए ये वाला ट्रीटमेंट भी मतलब इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि तरजीह तो हमारे देश में एलोपैथिक ट्रीटमेंट को ही दी जाती है कि कुछ भी हुआ तो फटाफट से पेन किलर खा लिया या फिर डॉक्टर को दिखा दिया फटाफट से कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम उन्होंने नोट किया और आपको मेडिकेट कर दिया। तो इन सब चीजों का जो है लोगों में अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। फिर इलेक्ट्रो एक्यूपंचर जो है वो एक्यूपंचर का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है। इसमें क्या करते हैं कि जो आपका जो नीडल हम पियर्स करते हैं, जो हमारे बॉडी में जो नीडल्स चुभा मतलब इंसर्ट की जाती हैं, उसको हम उस उन नीडल्स में इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं।
0: अच्छा,
1: इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ज्यादा हो गया तो पेशेंट वैसे ही नहीं आएगा आपके पास में, और कम हुआ तो उसको रिलीफ नहीं आएगा। पेन रिलीफ के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है। पर मैं जिस चीज में डील करती हूँ दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी। इसमें हम विदाउट दिस इज अ नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट। इसमें कोई हम लोग नीडल्स को पियर्स नहीं करते, ना हम इसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, बट कोई मैग्नेट यूज नहीं करते। मीन्स आपके सिंपल एक हाथ के थ्रू, लेफ्ट हैंड के थ्रू, लेफ्ट पाम के थ्रू आप अपना पूरा होल बॉडी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पेनलेस ट्रीटमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट किया जाता है,

0: हम एक शिवांगी जी गाना सुन लेते हैं, क्योंकि ये
1: जी
0: तो आपने
1: बिल्कुल।
0: काफी टेक्निक, खैर मैं ये जानना चाहूंगा, बाद में बताइए कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है, कोई मेडिसिन वगैरह देते हैं या इसी के थ्रू करते हैं? चलिए पहले एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।
1: जी।

0: किया, इसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी खुद की हेल्थ रही है. मीन्स मेरे को कुछ गायनोकोलॉजिकल इश्यूज थे जिनसे मैं सफर कर रही थी,
1: अच्छा
0: और मीन्स एक विशियस सर्कल बना हुआ था कि एवरी मंथ आई हैव टू विजिट अ गायनी, और
1: अच्छा
0: वो मेडिसिन्स दे देते थे. तो उसके बाद में वही एवरी मंथ, मतलब 9 to 10 months मेरे साथ ऐसे ही रहा कि डॉक्टर के पास जाना है, मेडिसिन लेनी है, फिर नेक्स्ट मंथ फिर जाना है. पीरियड रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे मुझे, तो वो
1: ओ
0: मतलब कहीं ना कहीं पहले तो ये चीज ट्यूमर वाला प्रॉब्लम, उसके साथ में ये भी डेवलप हो गया. तो मतलब जो मेंटल प्रेशर था मेरा, और थोड़ा डिप्रेशन सा भी होने लग गया था कि भाई एकदम से हेल्थ इश्यूज इतने हो गए थे, प्लस फैमिली, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे उस टाइम पे,
1: जी जी
0: तो बच्चों को
1: बिल्कुल
0: मैनेज करना, इन लॉज साथ में रहते थे तो इन लॉज को मैनेज करना, मैं खुद वर्किंग थी तो मुझे अपनी जॉब भी मैनेज करनी होती थी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. तो वंस आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद दी सैनिटरी पैड,
1: ओके
0: ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड, तो उस मतलब वो मैं बोलूंगी 2020 जनवरी का टाइम था व्हेन आई वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड विद दिस ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन, एंड
1: ओके
0: दैट वॉज दी ला मतलब इन दिसंबर 19 आई हैव बीन विजिटेड विद दी गायनी. उसके बाद आई थिंक नेवर विजिटेड दी गायनोकोलॉजिस्ट फॉर
1: अच्छा
0: दी
1: अच्छा
0: इश्यूज. तो
1: अच्छा
0: वहीं से ये क्लिकिंग पॉइंट आया कि यार जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, क्योंकि उससे पहले तक मतलब मैंने कभी खुल के, क्योंकि हमें पता है हम आज भी ऐसे ही समाज का हिस्सा है जहाँ इन सब चीजों के ऊपर खुल के बातचीत नहीं होती,
1: जी
0: क्यों,
1: बिल्कुल
0: मैं खुद भी ऐसी ही थी. मैंने भी कभी खुल के कभी अपनी मदर से शायद इन सब चीजों को डिस्कस नहीं किया होगा, या डॉक्टर से डिस्कस करने में भी थोड़ी सी एक हेजिटेशन फील होता था. तो
1: जी
0: जब खुद के ऊपर बात आती है और खुद सफरर होते हैं, जब खुद प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो हमारी सारी जो हेजिटेशंस होती हैं या जो शायनेस होती है वो शायद ओपन हो जाती है. तो
1: बहुत सही
0: सबसे
1: बात
0: पहले अपनी गायनी को मैंने इस चीज के बारे में बताया, तो शी वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि यार ऐसा भी होता है क्या. मैंने
1: अच्छा
0: कहा भाई
1: अच्छा
0: मेरे साथ में हुआ है प्रैक्टिकली, तो फिर बोले बताना क्या चीज है. उन्होंने भी यूज करी, उनको भी बहुत अच्छा
1: अच्छा
0: लगा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है. बोले हम लोग भी बहुत परेशान रहते हैं, बोले बीइंग गाइनीज, बोले हमारे पास में ऐसे कोई अल्टरनेट सॉल्यूशंस नहीं होते कि हम इससे क्योर कर सके, बोले हम लोग
1: अच्छा
0: भी परेशान रहते हैं. तो फिर धीरे धीरे ये सिलसिला चालू हुआ. तो ये पहले सबसे पहले जो मेरे कांटेक्ट में फीमेल्स थी उन्हीं के साथ में, जो फ्रेंड्स वगैरह थी उन्हीं से स्टार्ट किया, तो पता चला कि भाई मैं ही अकेली नहीं हूँ. जिस फीमेल से बात करो सबको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहती है, सबको ये मतलब जो पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है हमारी, वो सारा मतलब सभी को प्रॉब्लम है, नॉट इवन अ
1: ओके
0: सिंगल, या हम कहें कि 100 में से 1-2 महिलाओं को होगी. 100 महिलाओं को अगर आप बिठाएंगे तो 95 महिलाएं आपको ऐसी मिलेंगी जिनको कोई ना कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, जो पीरियड
1: अच्छा
0: रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रही हैं. वो बस धीरे धीरे कहते हैं कि जब एक से बात हुई, दो से बात हुई, तो अपने आप ये चीजें लोग मतलब लेडीज मेरे साथ खुद ही महिलाएं जुड़ती गईं. सेशंस हम लोग कंडक्ट करते थे, और कई बार तो स्कूल्स और हॉस्पिटल से इनविटेशन आते थे खुद से कि भाई आप आए हमारे यहाँ ये सेमिनार कंडक्ट करें. तो फिर
1: अच्छा
0: एक इनिशिएटिव लिया थोड़ा सा, और धीरे धीरे ये कारवां स्टार्ट हुआ, और करते करते
1: दैट्स
0: पता मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैं इस लेवल पे कब आ गई.
1: दैट्स वंडरफुल आप तो एक मिशन की तरह काम कर रहे हो और सबके आई मीन यू हैव गॉन थ्रू द होल ट्रॉमा, लेकिन उससे आपने ये निकाला, बहुत बड़ी बात है। और इस चीज को आगे लेके आप बढ़ रही हैं। तो अब ये बताइए, जैसे आपके एक्स में विमेन में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर कौन सा होता है, ये किस तरह से क्या है इसके बारे में?
0: कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है फीमेल्स में, और उसके बाद में सर्वाइकल कैंसर, देन ओवरियन कैंसर. ये तीन ऐसे कैंसर्स हैं जो मतलब मालूम भी नहीं चलते और डेवलप हो जाते हैं. वैसे तो कैंसर खुद ही एक ऐसी बीमारी है कि हमारे बॉडी में डेवलप हो जाती है और हमें पता नहीं चलती, सालों तक
1: जी
0: पनपती रहती है, हमेशा
1: बिल्कुल
0: तीसरी या चौथी स्टेज पे. और अब तो खैर लोग काफी ज्यादा अवेयर हो चुके हैं. जब मैंने इस चीज को स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी. कई बार तो बीइंग फीमेल्स ही कह देते थे, और अच्छे अच्छे मतलब मैंने फैमिलीज की फीमेल्स को ये बोलते हुए सुना है कि नहीं हमें जरूरत नहीं है इस चीज की, हम बिल्कुल ठीक हैं.
1: ओके

0: और उसके बाद में जब वो लोग सेशंस अटेंड करते हैं तो उसके बाद में बोलते हैं कि नहीं, अगर हमने इसको मिस किया होता तो शायद हम आज बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे होते।
1: अच्छा,
0: तो अभी भी जो ये
1: तो
0: अवेयरनेस
1: मतलब
0: है महिलाओं के बीच में, ये बहुत ही कम परसेंटेज है, बहुत कम फीमेल्स इस पे ओपनली बात करती हैं। तो इसीलिए इस मिशन को मुझे आगे ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा चैलेंजिंग रहा, पर मजा बहुत आया क्योंकि मैं पैन इंडिया काम कर रही हूँ अपने मिशन को लेकर के। तो
1: अच्छा,
0: मेरी ट्रैवलिंग भी काफी होती है, बहुत सारे सिटीज और स्टेट्स में मैं काम कर रही हूँ, बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, इवन डॉक्टर्स भी हैं मेरे साथ में जो मेरे इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। जी
1: तो कोई ऐसे कोई दो चार टिप्स आप दे सकते हैं कि बेसिक साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर इस तरह का महिलाओं को कोई कैंसर की प्रॉब्लम है तो उनकी क्या ऐसा कुछ बता सकती हैं?
0: जी बिल्कुल। देखिए बेसिक सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो एक फीमेल जो है अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है, क्योंकि जब हम स्नान के लिए जाते हैं तो आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं। आपको उसमें अगर कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है, जैसे सपोज करिए कि कई बार हमें लगता है कि कुछ लंप्स वगैरह हमें ब्रेस्ट में फील हो रहे हैं, तो उसको नजरअंदाज ना करें। या फिर शेप और साइज में आपको अगर लग रहा है कि हाँ कुछ डिफरेंस है, या जैसे दोनों ब्रेस्ट में अगर साइज में चेंज आया है, शेप में चेंज आया है, तो आप इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करें। या आपको फील हो रहा है कि निप्पल में से कुछ अनवांटेड डिस्चार्ज हो रहा है, तो उन चीजों को लाइटली ना लें, आप उसके लिए इमीडिएट डॉक्टर को विजिट करें, आप अपना स्क्रीनिंग कराएं, मैमोग्राफी वगैरह होती है ब्रेस्ट की, तो वो सारी चीजें कराएं। तो स्क्रीनिंग से आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल इन्फेक्शन है या उसमें कुछ फर्दर प्रॉब्लम है। ऐसे ही इसी से रिलेटेड जैसे सर्वाइकल कैंसर है, सर्विक्स कैंसर जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए भी आप अपना जो है, अगर आपका लग रहा है कि एबनॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग है, अदर देन पीरियड्स भी आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप उसको नजरअंदाज ना करें, उसके लिए भी आप डॉक्टर को विजिट करें। पैल्विक पेन आपको ज्यादा है तो आप डॉक्टर को विजिट करें, या ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर आपको पेन हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर को विजिट करें। अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, किस कलर का डिस्चार्ज है आपको, फाउल स्मेल बहुत ज्यादा है, तो आप डॉक्टर को विजिट करें। ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर हम ओवरियन कैंसर की बात करें, तो अगर पेट में जैसे कई बार हमें ब्लोटिंग हो जाती है, खाना खाने की इच्छा नहीं करती, या एब्डोमिनल स्वेलिंग हो रही है पेट में तो भी हमें ब्लोटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन है, कई बार हम समझ लेते हैं कि यार पेट में ऐसे ही दर्द हो रहा है, तो उसको भी लाइटली ना लें। एक बार कुछ नहीं जाता, एक बार अगर आप डॉक्टर को विजिट कर लेंगे और डॉक्टर ओके कर देगा कि नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने आप को सेफ रख सकेंगे।
1: ब्यूटीफुल, तो बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि ये बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चलिए यहाँ रुक के एक गाने के लिए रुक जाते हैं, फिर आपसे थोड़ी वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपका ये टॉपिक तो मुझे लगता है कि पूरा हमें एक दो इंटरव्यू करने पड़ेंगे तब कवर होगा। काफी आपने इसमें गहन अध्ययन भी किया है और आप इससे दिल से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। चलिए रुक जाते हैं एक गाने के लिए, फिर आगे चलें।

0: अच्छा शिवांगी जी, आपने वीमेन एम्पावरमेंट में भी काफी काम किया है। हेल्थ के अलावा उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: जी, जब देखिए जो अदर देन हेल्थ अगर हम बात करें तो बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ में जब ड्यूरिंग सेशन जुड़ती हैं तो वो सब अलग अलग फील्ड से होती हैं या कुछ हाउसवाइफ्स ही होती हैं जिनका रुझान होता है स्टिचिंग में, ब्यूटिशियन में या कुछ ना कुछ ज्वेलरी मेकिंग का। बहुत सारी फीमेल्स है कुकिंग में इंटरेस्टेड होती हैं, तो हम लोग भी क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, हम लोग जैसे बुटीक्स वगैरह हैं या जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं स्टिचिंग वगैरह की जो ट्रेनिंग्स देते हैं उनसे हमारे मतलब कॉन्टेक्ट्स में होते हैं ऐसे लोग भी, तो उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि भाई
0: ओके
1: अगर आप यदि जैसे कोई सपोज करिए कोई स्टिचिंग में बहुत अच्छा है और
0: ओके
1: उसको फाइनेंशियल क्रंचेस भी हैं एंड शी वांटेड टू डू समथिंग पर उसको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो एक ब्रिज हम लोग क्रिएट करते हैं उन दोनों पार्टीज के बीच में कि जो करना चाह रही है फीमेल और ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस वो नहीं कर पा रही है, और जिनका इंस्टीट्यूट है तो दोनों को कोलैबोरेट करा दिया और उनको डिस्काउंटेड प्राइस में या कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ फीमेल्स होती हैं जो हमारे साथ में इनिशिएट ले लेती हैं कि कोई बात नहीं फीस एडजस्ट कर लेंगे हम लोग या फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेनिंग दे देंगे। तो इस तरीके से ऐसे ही ब्यूटिशियंस भी हैं या हम लोग ब्यूटी कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी हमारे पास होते हैं, तो कुछ ब्यूटिशियंस हमारे साथ में ऐसे एसोसिएट कर जाती हैं तो उनका जो है थोड़ा सा बेटरमेंट हो जाता है, उनके पार्लर्स पे उनके सैलॉन्स पे जो है फुटफॉल बढ़ जाता है क्योंकि ब्यूटी ट्रीटमेंट तो आपको पता है फीमेल्स को चाहिए ही होता है, तो वो भी हमारा हम लोग हाँ रूट कॉज फाइंड आउट करके ही ब्यूटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो जो प्रॉब्लम बार बार जो उनको रूटीन में प्रॉब्लम आती है स्किन रिलेटेड वो भी उनकी क्योर हो जाती है।
0: चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कि कोई ऐसी कोई खास टचिंग स्टोरी, कोई आपकी सक्सेस स्टोरी हो जो आपने किसी की हेल्प की है, ऐसी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी हो आपके बहुत करीब हो, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें।
1: जी ये आई थिंक 2022 की बात है। मैं एक बार दिल्ली के लिए ट्रेवल कर रही थी एंड बस से मेरी ट्रेवलिंग हो रही थी, तो बस में जो मेरी को पैसेंजर थी वो एक गांव से थी और जयपुर डॉक्टर को विजिट करके आ रही थी वो, तो हाँ शी वॉज हैविंग हर रिपोर्ट्स और उनके हस्बैंड भी थे साथ में, तो ऐसे ही जैसे आप बात कर रहे होते हैं दिल्ली तक का सफर है तो हम को पैसेंजर से बातचीत कर लेते हैं, तो मैंने उनसे बातचीत स्टार्ट करी, मैंने कहा रिपोर्ट्स आपकी, तो मैंने कहा देख सकती हूँ, बोले जी बिल्कुल देखिए। उनकी रिपोर्ट्स देखी तो उनके हस्बैंड ने बताया कि हर महीने लेके जाना पड़ता है और बोले 10-15 हज़ार का खर्चा हो जाता है, डॉक्टर कभी कुछ टेस्ट लिख देते हैं कभी कुछ लिख देते हैं और इसका दर्द तो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तो
0: अच्छा।
1: मैंने कहा भाई रिपोर्ट्स तो आपकी नॉर्मल है, रिपोर्ट्स में तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने अपने बारे में बताया, तो बोली वो मतलब ये पाउटा के पास में दातिल गांव है 5-7 किलोमीटर अंदर पाउटा से
0: अच्छा।
1: इंटीरियर में, तो वहां की रहने वाली थी,
0: ओके।
1: तो बोली कि मैडम आपको अगर मैं बुलाऊं अपने गाँव में तो आप आओगे, मैंने कहा बिल्कुल आऊंगी, तो बोले ठीक है, बोले थोड़े दिन बाद, बोले अभी हमारा उनका फसल कटाई का टाइम चल रहा था, तो बोले ये खत्म हो जाए 10-12 दिन बाद फिर मैं आपको फोन करूंगी, तो मैंने कहा ठीक है। 15 दिन बाद उनका कॉल आया कि मैं ऐसे ऐसे बस में मिली थी और आपने मुझे ये बताया था तो आप आएंगे क्या, तो मैंने कहा ठीक है मैं अपना शेड्यूल चेक कर लेती हूँ, तो फिर वहां मैंने विजिट किया तो शी गैदर्ड 50 to 60 फीमेल्स,
0: अरे वाह,
1: और
0: अच्छा।
1: उसके बाद में हमने मतलब ज्यादा उनको मेरे बारे में नहीं पता था कुछ नहीं पता था, पर फिर भी उन्होंने 50-60 फीमेल्स को इकट्ठा किया, हमने अपना सेमिनार कंडक्ट किया और उसके बाद में उन्होंने सैनिटरी नैपकिन और पैंटी लाइनर्स हमारे ऑर्गेनिक आते हैं वो उन्होंने यूज किए, और
0: अच्छा।
1: फिर उनका मतलब आफ्टर अ मंथ मेरे पास फोन आया कि मैम मेरे को तो दर्द ठीक हो गया, कोई दवाई
0: अच्छा।
1: मैंने ली कुछ नहीं लिया, आप दोबारा आ सकते हो क्या, मैंने कहा ठीक है मैं दोबारा आऊंगी। सेकेंड टाइम जब मैं गई तो उन्होंने अपने जो आसपास के 3-4 गांव थे वहां से फीमेल्स को बुलाया हुआ था एंड आई वाज
0: अच्छा।
1: रियली सरप्राइज कि दे डोंट हैव एनी मेडिकल फैसिलिटी देयर, मीन्स जो उनको व्हाइट वाटर डिस्चार्ज, जिसको हम लुकोरिया बोलते, छोटी छोटी बच्चियों को इतनी परेशानी थी लुकोरिया की, उनको मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी का इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया।
0: ओके
1: उसके बाद में वो मेरे साथ एसोसिएट हुए एंड शी वॉज अ आशा वर्कर, उन्होंने मेरे साथ में, हाँ वो एसोसिएट हुई और उन्होंने पूरा मतलब बोले मैम आप फिक्र मत करो, बोले मैं जितनी मतलब मेरे से हो सकेगा, जितने गांवों की फीमेल्स मैं आसपास से इकट्ठा कर सकती हूँ, बोले मैं आपको हर महीने बुलाऊंगी, आप हर महीने आओ और इस चीज को इनको समझाओ। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे उन एक मतलब ट्रैवलिंग में आप किसी से मिलते हैं और आज मेरा पारिवारिक संबंध है उनके साथ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
1: जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में ही गई हूँ।
0: देखिए बहुत सारे ऐसे पेन्स होते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं हो, और आपने वी सैल्यूट यू, आप हमारे लिस्टनर्स को बहुत अच्छा लगेगा कि इस तरह की सक्सेस स्टोरी सुन के, और आप जिस तरह से जुनून के साथ काम कर रही हैं इस मिशन पे, और महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो कई बार ओपन में डिस्कस नहीं होती हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और अगर उसमें आप कुछ हेल्प कर पा रही हैं तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो अब शिवांगी जी मुझे बिल्कुल हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं, अब थोड़ा सा ये बताइए कि आप शिवांगी के रिलैक्स कैसे करती हैं, आपके शौक क्या हैं, आप क्या पसंद करती हैं, म्यूजिक पसंद है, पढ़ना पसंद है, क्या आपके शौक हैं?
1: मेरे को अगर मैं अपनी हॉबीज की बात करूं तो मुझे ड्राइंग पेंटिंग या आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क बहुत अच्छा लगता है।
0: ओके ओके वेरी गुड,
1: एक्सक्यूज मी। और बाकी मैं गाने सुनना बहुत पसंद करती हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: स्पेशली ओल्ड सॉन्ग्स जो होते हैं या जो मतलब ऐसे तड़क भड़क वाले गाने मुझे पसंद नहीं है, बहुत माइल्ड से सॉफ्ट म्यूजिक वाले सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक।
0: ओके, तो आप गाती भी है, कुछ गाना गाती है, कोई एक लाइन गुनगुना सकती हमारे लिए, अगर अगर मन हो तो, आपका कंफर्टेबल हो तो? थोड़ा सा अपन ने बहुत हैवी बातें कर ली,
1: एक कभी-कभार गा लेती हूं, खुद के लिए कभी गा लेती हूं, ऐसे पब्लिकली मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया।
0: गुनगुनाना चाहे तो एक लाइन गुनगुना लीजिए रमात पे, जिससे आज हमने बहुत सीरियस बातें कर ली तो हम सोच रहे थोड़ा सा लाइट बातें कर लेते हैं।
1: जी बिल्कुल, मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो मतलब मैं अक्सर सुना करती हूँ, वो मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी
0: जी।

0: बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपकी बातचीत सुन के, और खास तौर से अब बाद में आपने जो लाइंस गुनगुना दी, ये भी बहुत बहुत बहुत बढ़िया गाना है और बड़ा प्यारा गाना है हमारे हिंदी फिल्म संगीत का। तो श्रोताओं,
1: थैंक
0: ये थी हमारी आज की खास बातचीत शिवांगी सक्सेना के साथ। आज की इस चर्चा से हमें ये समझ में आया कि स्वास्थ्य कोई ऑप्शन नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जागरूकता हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, चाहे बात हो महिलाओं के स्वास्थ्य की, या फिर कैंसर अवेयरनेस की, या फिर रोजमर्रा के दर्द और तकलीफों से राहत पाने की। अगर सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। हम शिवांगी जी को दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान को हमारे साथ इतनी सहजता के साथ साझा किया।
1: थैंक यू सो मच।
0: और आप सभी श्रोताओं से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपनी सेहत को कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तभी सब कुछ संभव है। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार, आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई प्रेरणा और नई मुस्कान के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए रेडियो SN। नमस्कार।
2: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

हेलो दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में हम बात करेंगे अलीशा चिनाई की। 1965 में गुजरात के अहमदाबाद में जन्मी अलीशा का असली नाम सुजाता चिनाई था। 1985 में उनका पहला एल्बम जादू आया था, लेकिन उन्हें असली पहचान तो मेड इन इंडिया गाने से मिली। आइए दोस्तों, सुनते हैं इन्हीं का ये शानदार गीत।

0: जादूगर
1: दिल से दिल की बात कर
0: चुप कर बैठ उधर
1: क्यों खफा है इस कदर
0: आ गई मेरा सर
1: देख मैं तो रो पड़ूंगी हाँ हाँ हाँ
0: अरे रे मेरे पीछे क्यों पड़ी
1: कुछ भी मैं मर मिटी
0: रोके क्यों खड़ी
1: बस आ दो घड़ी
0: लगती क्या है तुम रे
1: तू मेरी जिंदगी
0: इतना प्यार ना जता रे जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा

जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा

कितने ही गाने आएंगे जाएंगे, लेकिन 90 के पॉपुलर सॉन्ग मेड इन इंडिया को लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। 1995 में आए इस गाने को अलीशा चिनाय ने गाया था। इस गाने से ही अलीशा रातों रात संगीत की दुनिया की स्टार बन गई थी। अलीशा की गायकी की वजह से लोग उन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप कहकर बुलाने लगे थे। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं इनका यही मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग।

हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में अलीशा चिनाई की करियर की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो सिंगिंग की दुनिया से गायब हो गईं। कोई बात नहीं, लेकिन अपने पीछे वो इतने सुंदर सुंदर गाने छोड़ गई हैं जिनका मजा दुनिया हमेशा लेती रहेगी। लीजिए पेश खिदमत है एक और फड़कता हुआ गीत।

उनके गीत दिल ये कहता है, डूबी डूबी कांटे नहीं कटते, रुक रुक रुक और कजरारे जैसे सुपरहिट गाने हमेशा ही सबकी जुबान पर रहेंगे। लीजिए पेश खिदमत है एक और बहुत प्यारा सा गीत।

never. Love me forever. It's now or never. Love me forever.

कहा जाता है कि अलीशा को हिंदी सिनेमा में लाने का श्रेय बप्पी लहरी का था। बप्पी दा के साथ मिलकर उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कई हिट गाने दिए। यही नहीं, अलीशा चिनाई ने अनु मलिक के साथ भी कई हिट सॉन्ग्स दिए। लीजिए सुनते हैं उनका एक और हिट सॉन्ग।

2005 में अलीशा चिनाई का करियर सबसे ऊंचाई पर रहा जब उन्होंने कजरारे बंटी और बबली के लिए गाया। तो हो जाए इनका यही गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज की कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों, आज की गायिका है अलका याग्निक। जी हाँ, अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनकी माता का नाम शोभा याग्निक था। अलका ने अपनी पढ़ाई मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स कोलकाता से की। घर में संगीत का माहौल था तो बस अलका की रुचि भी संगीत की ओर हो चली। चलिए सुनते हैं उनका गाया हुआ ये गीत।

अलका ने अपने करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी, जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक भजन गाया। उसके बाद 10 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ बॉम्बे आईं। बॉम्बे में निर्माता निर्देशक राज कपूर से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलने की सलाह दी। तो हो जाए उनकी आवाज का ये प्यारा सा गीत।

1980 में अलका ने अपना पहला गाना गाया, पायल की झनकार। बतौर सिंगर अलका याग्निक के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जब उन्होंने गायन को अपना करियर चुना तो उनके सामने भारत के सुर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले थी। लेकिन अलका ने भी इन सब के बीच अपने आप को प्रसिद्ध करने की ठान ली। तो हो जाए इनकी आवाज का एक और नगमा।

1989 में अलका ने फिल्म कयामत से कयामत तक में उदित नारायण के साथ ऐ मेरे हमसफर, अकेले हैं तो क्या गम है, गजब का है ये दिन, सोचो जरा जैसे सुपर हिट युगल गाने गाए। इन फिल्मों की सफलता के बाद तो हल्का को कई अच्छी फिल्मों के ऑफर्स मिले। सन 1994 में फिल्म हमारा ही प्यार के सॉन्ग्स के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो पेशे खिदमत है दोस्तों उन्हीं की प्यारी सी आवाज में ये प्यारा सा गीत।

1999 में प्रदर्शित फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई भाषाओं की 700 से ज्यादा फिल्मों में करीब 20,000 गाने गाए। तो लीजिए उन्हीं की आवाज का ये गाना।

2012 में हिंदी सिनेमा के 100 सालों के दौरान फिल्म ताल के गीत ताल से ताल मिला को देसी मार्टिनी, हिंदुस्तान टाइम्स, फीवर 104 के द्वारा किए गए एक पोल में उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले। तो ये लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी आवाज में एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

आइए दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अल्फाज से एहसास तक के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में। हमारी रेडियो दोस्त आरती रॉय जी लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता अल्फाजों का, गजलों का। गजल सिर्फ शब्द नहीं होते दोस्तों, एहसासों की एक खूबसूरत दुनिया होते हैं जहां मोहब्बत, यादें, खुशी और दर्द सब अपनी आवाज पाते हैं। तो आइए कुछ देर के लिए हर फिक्र को पीछे छोड़ दें और डूब जाएं।

0: दिल को छू जाने वाली चुनिंदा गजलों के साथ जो आरती जी हमारे लिए लेकर आई हैं। शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को।
1: शाम महके तेरे तसव्वुर से,
2: अगर मौका मिला कभी तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगी, अगर मौका मिला कभी तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगी, मजबूत कंधों के पीछे छुपा वो छोटा सा इंसान लिखूंगी, वो जो हर मुश्किल में मुस्कुरा कर कहती है सब ठीक है, उस झूठ के पीछे दबे हजारों बेबस तूफान लिखूंगी, मैं लिख पाई कुछ तो, मैं लिख पाई कुछ तो मैं खुद को लिखूंगी, अपनी रूह के हर जख्म को अपना ही सम्मान लिखूंगी। नमस्कार, आदाब, 90.8 FM पर रेडियो SM और रेडियो टांटिया भील से मैं हूँ आपकी अपनी हमनफर, आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर की तरह है जिसके रास्तों में कई शहर आते हैं, हर शहर की अपनी एक हवा, अपनी एक खुशबू और अपनी एक कहानी होती है। जब कोई इंसान अलग अलग शहरों से गुजरते हुए हर जगह एक कल्चर और सुरों को चुनकर अपने साथ समेट लेता है तो उसकी पर्सनालिटी एक खूबसूरत किताब जैसी बन जाती है। आज अल्फाज से एहसास तक में हमारे साथ एक ऐसी ही बेहद नफीस, सादगी से भरी और सुरीली मेहमान मौजूद हैं, वीना नायक जी। मुंबई में जन्म हुआ, लखनऊ की नफासत, अहमदाबाद का चुलबुलापन, अजमेर का ठहरा और उडीपी की जमीन की खुशबू, इन सब रंगों को समेटे वीना जी रेलवे की एक आला दर्जे की अफसर भी हैं और सुरों की दुनिया से बेहद प्यार भी करती हैं। तो फिर क्या, चलिए बिना किसी देरी के सीधे जुड़ते हैं हमारी आज की खास मेहमान वीना नायक जी से। वीना, हमारे इस अल्फाज से एहसास तक की महफिल में आपका तहे दिल से खैर मकदम है, खुश आमदीद, स्वागत है आपका, आइए तशरीफ रखिए।
3: थैंक यू आरती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और मेरा नाम वीना नायक है और मैं बैंगलोर से हूँ। सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार।
2: बहुत खूबसूरत, हमारा भी बहुत बहुत नमस्कार और हमारे दोस्तों का भी नमस्कार। वीना जी, आपका जन्म बेंगलोर में हुआ, राइट? आपका जन्म
3: मुंबई में हुआ, यस।
2: मुझे ना मुंबई कहने में बड़ी अटपटी सी लगती है, मैं अभी भी मेरे मुंह पर बॉम्बे,
3: यस।
2: तो आपका जन्म मुंबई में हुआ, चलो। बचपन आपका लखनऊ और अहमदाबाद में बीता और फिर पढ़ाई आपकी अजमेर में हुई
3: जी।
2: आपके पापा के वेस्टर्न रेलवेज में ट्रांसफर की वजह से आप इतने अलग अलग कल्चर से गुजरे, लखनऊ में आपने कथक सीखने से लेकर अहमदाबाद में भरतनाट्यम, पतंगबाजी और साइकिल चलाने वाली वो एक्टिव टॉम बॉयश लड़की, जैसी आपने बोला आप थी, जब आप अजमेर पहुंची तो अचानक इतनी शांत और इंट्रोवर्ट कैसे हो गई? इस बदलाव की क्या वजह थी, हमारे साथ हमारे दोस्तों को बताइए ना जरा।
3: मैं जब खुद भी सोचती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैं इतनी चुलबुली सी थी जब मैं अहमदाबाद में थी। मैं वहां जाती फिर देयर वाज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे लगता है कि जैसे बोलते हैं देश काल पात्र का फर्क पड़ता है, जैसे बी रोमन इन रोम लाइक, तो वहाँ राजस्थान में, हाँ राजस्थान के परिवेश में, और फिर नया स्कूल, और इतनी छोटी भी नहीं थी कि जल्दी से एडजस्ट हो जाए. मीन्स आई वेंट देयर व्हेन आई वाज इन नाइन्थ स्टैंडर्ड, तो नया स्कूल, नए लोग, नए टीचर्स, नया माहौल, तो वो थोड़ा अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. और मतलब यू रिमेम्बर योर ओल्ड स्कूल और ओल्ड फ्रेंड्स, तो वो और फिर वो एक तरह से यू टर्न हो गया.
4: ओह
3: यस, तो आई वाज मोर इनटू स्टडीज एंड देन रीडिंग बुक, तो इस वजह से यस.
4: बहुत खूब बीना, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अलग अलग शहरों और कल्चर ने आपकी सोच को कितना रिच बना दिया अल्टीमेटली. तो आप हमें ये बताइए ना, आप पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही, बीएससी के बाद एमए इकोनॉमिक्स भी किया आपने ताकि आप यूपीएससी की तैयारी कर सकें, आपने जैसा मुझे बताया, लेकिन तकदीर आपको रेलवे में ले गई जहाँ आपके पिताजी ने भी सर्विस दी थी. एक ही बार में आरआरबी और एसएससी जैसे कई एग्जाम्स क्लियर करना और रेलवे ज्वाइन करना, इस सफर को आप अपनी किस्मत यानी डेस्टिनी मानती हैं या अपनी मेहनत?
3: हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने. एक्चुअली इसे तो मैं डेस्टिनी ही कहूंगी. एक्चुअली जब मैं अजमेर में थी, जैसे मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई का और बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो हम लोग घर में ये कंपटीशन सक्सेस रिव्यूज वगैरह मंगाते थे, तो फिर उससे काफी नॉलेज बढ़ी और मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया था. और मेरे से बड़ी दीदी थी तो उन्होंने भी, तो हम दोनों इतना ये कॉम्पिटिशन के लिए हम लोगों ने अपने आप को इतना रेडी कर लिया था कि हम लोग ने जो भी एग्जाम्स दिए वो इन वन गो वी हैड क्लियर्ड. तो फिर ऐसा हो गया कि मतलब मैंने एक्चुअली यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर किया और फिर आरआरबी की जो एग्जाम थी रेलवे बोर्ड की और फिर स्टाफ सिलेक्शन की, तो मुझे आज तक वो डेट हमेशा याद रहेगी कि 3 मार्च 1991 को मैं अजमेर से अहमदाबाद आई टू गिव द एग्जाम ऑफ. तो मॉर्निंग के सेशन में मेरा आरआरबी का एग्जाम था और आफ्टरनून के सेशन में मेरा स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम था. और दोनों एग्जाम देने के बाद मुझे अंदर से ऐसी आवाज आई कि मेरा तो होना ही है सिलेक्शन. तो या आई हैड दैट मच कॉन्फिडेंस, मतलब मेरा आउट टू आउट ऐसा पेपर गया था. तो फिर बाद में और हो भी ऐसा गया, तब तक डैडी की भी ट्रांसफर हो गई, अजमेर से अहमदाबाद आ गए. तो फिर जो अहमदाबाद की आरआरबी से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो फिर मैंने फर्स्ट जॉब वहीं पर ज्वाइन कर ली. तो ऐसा होता है ना कि जब आप ऑलरेडी किसी जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर प्रोबेबली वो थोड़ा इंटेंसिटी टू कम्पीट फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज एक ठहराव से आ जाता है. और फिर लड़की होने के नाते पेरेंट्स भी चाहते थे कि नहीं, बाहर वगैरह नहीं जाना है, साथ में ही रहना है. तो फिर वो शादी वादी का भी उनके मन में था, तो फिर उस वजह से फिर वो यूपीएससी का तो फिर रह ही गया. और फिर स्टाफ सिलेक्शन में भी मेरा हो गया था, तो लेकिन वो बाद में मालूम पड़ा, उसका रिजल्ट थोड़े एक दो महीने बाद आए. तब तक मैं यहाँ ज्वाइन कर चुकी थी और फिर ग्रेड वगैरह सेम होने की वजह से फिर मैंने चेंज नहीं किया. तो इस तरह से आई लैंडेड इन रेलवे. और आपको मैं क्या बताऊं, एक्चुअली मेरी दीदी ने भी रेलवे का एग्जाम क्रैक करके, शी वॉज इन अकाउंट और वो सीनियर सेक्शन ऑफिसर थी जब तक, मतलब बिफोर हर पासिंग अवे. तो हमारी फैमिली से लाइक मी, माय सिस्टर, माय डैड और उनके डैड भी, मतलब मेरे दादाजी भी रेलवे में थे किसी जमाने में. तो ये तो डेस्टिनी ही हुई आई फील कि फिर मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, मतलब मेरा सिलेक्शन होते हुए भी मैं नहीं गई, तो ऐसा हुआ. यस, बट आई वुड लाइक टू से कि श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगी कि आप जो अपने एम्स हैं वो उस पर अर्जुन की तरफ फोकस्ड रहे और मतलब किसी कम उस पर सेटल ना हो, ताकि आपको किसी बात का गम ना हो बाद में कि मैं अगर ये कर लेती तो अच्छा होता, वो कर लेती तो अच्छा होता. तो आप अपना 100% दें जो भी करें, ऐसा मैं चाहती हूँ.
4: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही कहा आपने, अर्जुन के फोकस होना चाहिए.
2: और फिर ये भी है कि आप बड़ी खुशकिस्मत भी रही कि आप फोकस थी और आपने जो जो रास्ता चुना, आपने जो जो चीज को फोकस किया, रास्ते बनते भी गए वैसे आपने अपनी विजन।
3: यस बिल्कुल बिल्कुल, या दैट वाज अमेजिंग। या ऊपर वाले का हाथ था मेरे शायद, और मेरी भी तैयारी भी वैसी थी, मतलब इसीलिए मैं ये बार बार कहना चाहूंगी, आई विल रीट्रीट कि मेहनत तो आपको करनी है।
2: बिल्कुल yes. तो आइए ना इस नोट पर सुनते हैं आपकी गाई हुई इतनी खूबसूरत सी गजल, वक्त में और पथ को निभाए तो निभाएंगे कैसे। आइए हमारे दोस्तों के साथ सुनते हैं आरती की गाई हुई ये गजल।
3: जी

0: बहुत खूबसूरत गाई है आपने ना, बहुत खूबसूरत से गाई है।
1: थैंक यू।
0: ना आप ये बताइए, आपकी मम्मी एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान थी, जिन्हें पापा की ट्रांसफर की वजह से गुजरात सेक्रेटरी से अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। आपने गाने का हुनर आपने बताया और कई लोग नहीं सीख पाए हैं। आप मानते हैं कि किसी भी कला को सीखना 10-12 साल की साधना बहुत जरूरी होती है उसके लिए। अपनी माँ की सुरीली और मल्टी टैलेंटेड विरासत को आप अपने किस तरह देखती हैं?
1: हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि वो मेरी माँ थी, और उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। वो अपने जमाने में रूपारेल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था बॉम्बे से, और वो शादी से पहले बॉम्बे ट्रस्ट में, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में काम किया करती थी। फिर पापा से शादी होने के बाद अहमदाबाद शिफ्ट हुई, और फिर बाद में वहाँ पे वहाँ के गुजरात सेक्रेटरी में नौकरी कर रही थी। फिर पापा ने का डेप्यूटेशन हो गया एज ऑफिसर इन लखनऊ, तो फिर बाद में और मेरी दीदी का भी जन्म हो गया था, तो फिर बच्चों की देखभाल वगैरह करने के लिए फिर उन्होंने नौकरी छोड़ ही दी। लेकिन वो बहुत वो बहुत टैलेंटेड थी और बहुत अच्छे से उन्होंने हमको संभाला, बड़ा किया। तो दैट इज द थिंग,
0: सैक्रिफाइस किया ना उन्होंने।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: घर परिवार को संभालने की खातिर। माँ की सीख और उनकी कला हमेशा बच्चों के सुरों में जिंदा रहती है, और ये भी आपकी आवाज से पता चलता है कि आपको कितनी अच्छी परवरिश मिली और उनकी आवाज आपको विरासत में मिली है। जैसे तो बिना, अब हमारा अगला सवाल आपसे ये है जो कि बहुत सैड है कि 2008 में आप की प्यारी माँ का जाना, उनका इंतकाल हो गया, और फिर 2016 में 8 साल के बाद आपकी बड़ी बहन का भी अचानक हार्ट अटैक से चले जाना, ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा झटका था। आपकी बहन जो हर रोज पापा से बात किया करती थी और जिनकी याद में आज भी आपके पापा की आंखें नम हो जाती हैं, इस पर्सनल लॉस ने आपके इमोशन और संगीत से लगाव को कितना और गहरा कर दिया?
1: बहुत गहरा कर दिया एक्चुअली। और हाँ, जैसे मम्मी और दीदी के जाने से ऐसा लगा कि जैसे माला से मोती बिखर गए। तो और मैंने पापा को दोनों की याद में काफी बार उदास देखा है, और फिर उससे मुझे काफी चोट पहुंची थी। मैं जब कार ड्राइव करके ऑफिस से आती जाती थी, तो फिर मैं बेसमेंट में कार में ही आधे घंटे बैठ के रो लिया करती थी, क्योंकि मैं घर जाके मतलब हाँ, मैं दिखाना चाहती थी कि नो आई एम ओके, और तो पापा को भी सहारा देना है इस तरह से। तो वो बहुत मतलब वी जस्ट कुड नॉट टेक की, बिकॉज इट वाज सो सडन कि वो जस्ट और वो भी उनके 2 दिन बर्थडे से पहले वो सडनली गुजर गए। तो फिर That was a biggest jolt.
0: Yes, that was indeed the biggest jolt. आपका ये दर्द और अपनी माँ और बहन के लिए ये प्यार सीधे हमारे दिलों को छू रहा है वीना। दोस्तों, वीना जी ये अगला बेहद खूबसूरत नगमा अपनी महरूम माँ और अपनी प्यारी बड़ी बहन की
1: और पापा के लिए भी, क्योंकि पापा भी नहीं रहे अभी, और दीदी के जाने के बाद फिर पापा बीमार रहने लग गए, और फिर वो 2023 में चल बसे।
0: तो आप ये गाना अपने पापा मतलब तीनों की ही याद में आप डेडिकेट करना चाह रही हैं।

0: थोड़ी मोहब्बत से आप डेडिकेट कर रही हैं, और ये नगमा है वो जब याद आए बहुत याद आए बिना, तो दो लाइन्स अगर आप खुद अपनी अनप्लग्ड अपना गा के हमें सुनाए हमारे दोस्तों को, अगर आप गा सकती हैं तो।
1: हाँ, क्योंकि ये मेरे पापा का भी बहुत फेवरेट सॉन्ग था तो
0: जी।

बहुत खूबसूरत आपकी आवाज से साफ पता चल रहा है कि आप कितनी उदास हो गई। ये सब कुछ करके इतना सुंदर गाना गा, इतना सुंदर नगमा गा के। तो दोस्तों आइए सुनते हैं अरे वीणा जी की आवाज में ये बहुत खूबसूरत नगमा जो कि उन्होंने अपनी मम्मी, अपने पापा और अपनी मरहूम बहन को डेडिकेट किया है। आइए सुनते हैं।

0: बीना, आपका परिवार बेसिकली कर्नाटक के कोस्टल बेल्ट उडुपी से है ना,
1: जी
0: और आपकी मदर टंग कोंकणी है।
1: हाँ
0: आपके बड़े दादा श्री वेंकट राव कालगिरी
1: यस
0: सेलगिरी
1: कलगेरी कलगेरी यस
0: कलगिरी कन्नड़ सिनेमा के जाने माने एक्टर थे
1: जी
0: और जिन्हें फिल्म वंश वृक्ष के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था।
1: जी हाँ
0: इतनी समृद्ध कलात्मक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड ने आपके सोचने और जीने के तरीके को कितना मुतासिर किया, कितना प्रभावित किया?
1: मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कला हमें विरासत में मिली, और लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मतलब कला के साथ साथ पढ़ाई पर भी बहुत जोर दिया। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में ज्यादा जोर दिया, तो उसके साथ साथ ये भी चलता रहा। जैसे मैंने कहा कि मैं बचपन में लखनऊ में मैंने 2 साल कथक सीखा, फिर भरतनाट्यम सीखा उस तरह से, और गाना तो क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसे ही, उन्होंने भी कहीं सीखा नहीं था, लेकिन वो बहुत सुरीली थी, वो भजन और गाने गाती थी, तो उनसे सीखकर फिर उनको देखकर मैं भी गाने लगी। और हम लोग वी आर साई डेवोटीज, तो हमारे घर में थर्सडे को साई भजन हुआ करते थे, तो फिर घर के सभी मेंबर्स भजन गाते थे। तो या हाँ, तो मतलब सुरताल तो सभी सब में सभी ठीक ही अच्छे ही थे। और मतलब आई फील कि इट इज जेनेटिक ऑल्सो, क्योंकि जो मेरी बुआ है, दो बुआ, उनके बच्चे भी टैलेंटेड हैं। मैं नाम लेना चाहूंगी, जैसे मेरी एक बुआ का बेटा विनय नाडकर्णी, जो मुंबई में उसकी आवाज डोनाल्ड डक की, जो इंडिया में डोनाल्ड डक का सीरीज चलता है उसमें उसकी वॉइस है। तो आप गूगल भी, हाँ यूट्यूब में भी देखेंगे तो उनके काफी सारे वीडियोज वगैरह हैं। वो अब नहीं रहे एक्चुअली, यस। और दूसरी बुआ के बेटे हैं उदय शिरूर, उनका वो विसिल करके पूरा गाना विसलिंग में बजाते हैं, और उनका लिम्का बुक ऑफ और रिकॉर्ड में भी नाम है। तो आई फील कि यस, वो शायद जेनेटिक ही है कि सभी को कुछ ना कुछ मिला। तो मेरे पापा भी ऑलराउंडर थे, वो गाना गाते थे, तुकबंदी मतलब पेरोडीज जैसे सडनली बना लेते थे, इंग्लिश में हिंदी में विस्लिंग करके वो भी पूरा गाना बजाते थे। हाँ, तो अपार्ट
0: वाह
1: फ्रॉम हिज करियर ही वॉज लाइक ए ऑलराउंडर, वो मतलब वो भविष्य भी देखते थे। सो मतलब वो जिस चीज में भी हाथ डालते थे उसमें पारंगत हो जाते थे। तो
0: बिल्कुल
1: रिटायरमेंट के बाद तो उन्होंने शौकिया ये एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, और फिर वो ऐसे जस्ट लाइक सोशल सर्विस सबको बताते थे फ्री में सब कुछ, तो वैसा रहा।
0: वाह
1: तो या आई फील ग्रेट कि मैं इस फैमिली में हूँ।
0: नहीं तो आपकी तो लेगेसी ही ऐसी ही चली आ रही है कि सब कलाकार ना होते हुए भी महान कलाकार थे अपने अपने फील्ड में। और आपको, आपने जैसे बताया ही कि आपको तो जीन्स में ही आपको सारा कुछ मिल गया ना,
1: हाँ
0: मम्मी की भी, पापा की भी,
1: यस
0: आपके बाकी लोगों की, आपकी बुआ और उनके बेटे, सारे परिवार में लाइक आपकी फैमिली लेगेसी है ना जो आपके पास आ गई।
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: बहुत बहुत, और वाकई ऐसे एसोसिएट होना वाकई बड़ी गर्व की बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब नवीना ये बताइए कि आपकी बेटी और बेटा दोनों ने बीबीए पूरा किया है जैसा कि आपने बताया, और अपने
1: जी
0: पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है दोनों बच्चों ने।
1: जी
0: तो रेलवे में आप एक वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ अपने बच्चों को इतनी अच्छी आपने परवरिश दी और फैमिली को संभाला, आपने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ये बैलेंस कैसे बनाया?
1: हाँ, इसका तो मैं क्रेडिट अपने हस्बैंड को भी देना चाहूंगी, क्योंकि
0: जी
1: उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। और कुछ टाइम तक पापा भी हमारे साथ थे, तो उनका भी काफी हेल्प हुआ मुझे। तो मेरे हस्बैंड
0: जी
1: एक्चुअली ही कम्स फ्रॉम ए वेरी बिग फैमिली, तो उनके छह,
0: ओ
1: वो खुद 6 भाई बहन थे, उनके घर में रिलेटिव भी थे, और मतलब दे वर स्टेइंग इन ए बिग हाउस विद इन हाउस सर्वेंट्स, उनके घर में सर्वेंट्स भी रहते थे। तो मतलब लड़का होने के नाते उनको कभी कुछ काम करना नहीं पड़ा वैसे घर में। बट जब वो बैंगलोर शिफ्ट हुए, उन्होंने अपना खुद का कारोबार वगैरह किया, तो एज ए बैचलर वो सीख गए खाना वगैरह बनाने में वगैरह खुद। और जब बच्चे शादी के बाद बच्चे आए जिंदगी में, तो वी जॉयफुली डिड एवरीथिंग टुगेदर.
0: वाह
1: सो आई विल गिव माई 100% क्रेडिट टू माई हस्बैंड. तो

0: यस, तो हाँ, तो इस तरह से आई आई विल से कि इट्स अ वेरी नाइस पार्टनरशिप हमारी. तो वी आर गुड फ्रेंड्स देन स्पाउस, टिपिकल स्पाउस. तो हम लोग एक दूसरे को
1: बहुत
0: हर चीज में काफी सपोर्ट करते हैं. तो
1: बहुत खूबसूरत
0: यस
1: केमिस्ट्री है आपकी अपने हस्बैंड के साथ, और जब हस्बैंड वाइफ में इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री हो तो बच्चों के ऊपर उसका असर होना लाजमी ही होता है। बच्चे भी वही सीखते हैं जो माँ बाप उनके सामने एग्जाम्पल पेश करते हैं। आप
0: जी
1: बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको इतने सपोर्टिव हस्बैंड मिले।
0: यस
1: मेरी तरफ से भी उनको हेलो बोलिएगा, और हमारे दोस्तों की
0: जी
1: तरफ से भी उनको बहुत बहुत मुबारक दीजिएगा कि आप
0: जी
1: दोनों की फैमिली लाइफ इसी तरीके से चलती रहे।
0: जी
1: तो अब इसी नोट पर आइए दोस्तों, सुनते हैं वीना की गाई हुई ये बहुत खूबसूरत सी ये गजल है जो मौसम पिक्चर से है। रुके रुके से कदम, रुके रुके से कदम, रुक के बार बार चले, यही ना?
0: यस
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये खूबसूरत गजल।

0: आई मस्ट से वीना, आप बहुत खूबसूरत आपने गाया है इसको, ये मुझे भी बहुत पसंद है। तो वीना, अब ये बताइए आप कि आपने बोला कि क्लासिकल म्यूजिक आपने फॉर्मल तरीके से नहीं सीखा, फिर भी आपकी गायकी में संगीत की बहुत अच्छी समझ है जो झलकती है आपके गाने में। आप मानती हैं कि हर किसी को 2-3 साल बेसिक जरूर सीखना चाहिए, आपने ये भी बताया
1: जी।
0: आपके लिए म्यूजिक केवल एक पैशन है या आज की बिजी लाइफ में सुकून पाने का एक जरिया? दोनों में बहुत अलग अलग चीजें हैं
1: जी। एक्चुअली इट्स अ पैशन, मुझे ये थेरेपी जैसा लगता है, मुझे ये मेडिटेशन जैसा लगता है। तो या जब भी मैं खाना भी बनाती हूँ तो मैं भजन गाती हूँ या फिर जो मुझे सॉन्ग आते हैं वो गाती हूँ, तो फिर अच्छा लगता है, यू नो, सो देयर इज अ पॉजिटिविटी इन दैट।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
0: वो कहते हैं ना, खाना बनाते बनाते अगर आप कोई भजन गा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, मेरी मम्मी भी बोला करती थी, तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके खाने में जायका ना आए। वो भगवान का प्रसाद जैसे बन जाता है और वो बहुत जायकेदार बनता है।
1: बिल्कुल ये
0: है ना।
1: हाँ जी।
0: तो तो हमारे ख्याल आप कितने मिलते हैं ना वीना?
1: ये बिल्कुल।
0: तो इसी नोट पर चलिए फिर, आपकी गाई हुई ये एक और खूबसूरत सी गजल अपने दोस्तों को सुनाते हैं, जो आपने, बहुत मुश्किल है ये गजल, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहले में बैठे रहो। दोस्तों आइए हमारी वीना की आवाज में सुनते हैं ये बहुत ही रूहानी गजल, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो।

0: बहुत खूबसूरत रीना, आई मस्ट से आपने बहुत खूबसूरती से इस नजर को निभाया है। बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारक रीना। अल्फाज से एहसास तक में अपनी लाइफ को आपने इतनी सुंदर इमोशनल और सुरेली जर्नी को हमारे साथ शेयर किया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जाते जाते हमारे उन सभी दोस्तों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपनी बिजी लाइफ के बीच में भी अपने सपनों और अपने पैशन को जिंदा रखना चाहते हैं?
1: अच्छा, ओके। मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि आप अपने एम पर कायम रहें, आप पूरा 100% दें और अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करें, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए आपको बड़ा करने के लिए। और अपने सिबलिंग से हमेशा बना के रखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके भाई बहन हैं उनसे बना के रखें। और जीवन में चलते हुए अगर जो मास है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि आपको सभी तरह के अनुभव आते हैं, अच्छे बुरे। तो अच्छे तो अच्छे ही लगते हैं याद करने के लिए, बुरे अनुभवों से आप सीखें, आप उनसे लेसन लें कि और आप एक एक सेटिंग द बाउंड्रीज जैसे बोलते हैं कि आप खुद को भी बदलें और ऐसी बाउंड्रीज सेट करें कि आपको उस तरह के कटु अनुभव वापस से ना आए जिंदगी में, और आप एक एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए। मैं यही कहना चाहूंगी। यस, खुशियां बांटें, खुश रहें। और मैं ये बोलना चाहूंगी हमारे एज ग्रुप के लोगों को कि आपने बहुत सारे कर्तव्य किए, एज अच्छे संतान का एग्जाम्पल दिया आपने, अच्छी बहू होने का या बेटा होने का, आपने सभी कर्तव्य पूरे किए। और प्लीज बी नाइस टू योर सेल्फ, अपने लिए भी अब थोड़ा समय निकालें, अपनी सेहत के लिए, अपनी हॉबीज के लिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आप वो अपनी हॉबीज डेवलप करें, पुराने फ्रेंड्स से मिलें वगैरह वगैरह। तो फिर देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन मेक यू हैप्पी, जो अपना जिसे कहते हैं मी टाइम, तो वो जरूर करें। यस, वो जरूर करें।
0: बहुत दुरुस्त फरमा रही हैं आप। मी टाइम होना तो ऐसा है सांस लेने के बराबर जरूरी हो गया है आजकल की रस्साकशी भरी जिंदगी में। तो यहाँ इसी नोट पर वीना, आप हमारे दोस्तों को कहिए बाय बाय।
1: सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने मुझे बुलाया और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और यस, श्रोताओं को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना।
0: ये हमारे श्रोता नहीं है वीना, ये हमारे दोस्त हैं, सारे
1: फैमिली मेंबर्स।
0: यस, फैमिली मेंबर्स हैं। और हमारे बाकी जो टांटिया भील के रेडियो के भी जो लोग हैं वो सब हमारे दोस्त हैं। फैमिली, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। हाँ बोलिए, आप क्या कह रही थी?
1: नहीं, हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने दोस्तों, कितना कितना मधुर, कितना सुंदर पैगाम दिया है वीना ने। और अब जाते जाते उनकी गाई हुई हम गजल सुनते हैं, जो उन्होंने कौन सी गाई है। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो बात कर ले तो मुझते शराब जलते हैं। बहुत खूबसूरत थी ना। आइए आपकी गाई हुई ये आखिरी गजल हम सुनते हैं सब मिलके।

0: सुना आपने दोस्तों, कितनी खूबसूरत गजल गाई वीणा ने। बहुत बहुत शुक्रिया वीणा, इतनी सुंदर गजल हमको सुनाने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे वीणा की पसंद की ये आखिरी खूबसूरत गजल। आज वीणा के साथ बात करते हुए ये एहसास हुआ कि जिंदगी में चाहे कितने भी शहर बदल जाएं, अगर दिल में संगीत का प्यार है, अपनों की यादें जिंदा हैं, तो हर सफर फिर भी खूबसूरत बन जाता है। वीणा जी ने जिस तरीके से अपने हस्बैंड की तारीफ की, अपने बच्चों की तारीफ की कि सारा परिवार मिलके एक एक इकाई की तरह काम करता है, तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। चलते चलते आज की इस सुहानी शाम के नाम बस ये दो मिसरे, यादों के चिरागों को दिल में सजाए रखना, यादों के चिरागों को दिल में सजाए रखना, सुरों के सफर में ये मिठास भी बनाए रखना। इसी प्यारे से ख्याल के साथ अब आपकी दोस्त आरती रॉय आपसे चाहती है इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नए अल्फाजों, कुछ नए एहसासों और किसी नई सुरीली कहानी के साथ। तो सुनते रहिए तब तक आप 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो तांडा भी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपनों से बहुत मोहब्बत करिएगा, अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते भी रहिएगा, गुनगुनाते भी रहिएगा। तो शब खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।
1: वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठी।
2: तो दोस्तों, कैसा लगा ये गुलदस्ता जो आरती जी ने सजाया? तो आज की इन गजलों ने आपके दिलों को छुआ होगा और कुछ तो खूबसूरत एहसास आपके लिए छोड़ गई होंगी। अगली मुलाकात के लिए फिर लेकर आएंगी आरती जी ऐसे ही शानदार गजलें और दिलकश नगमे। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने सभी का ख्याल रखिए। मिलते हैं।

0: એક કૃષિ થા જોડાયેલા અનુભવી અને વિશેષજ્ઞ લોક અને હાથે હાથ એવા કિસાન ભાઈ ત્યાં યુ કામ કરીને ઘણો અસલ અને મોટો મુનાફો કમાઈ રહ્યા છે. તો ચાલો કિસાન ભાઈઓ, આજના કાર્યક્રમમાં આપો હામળીએ ખેતીવાડીની તકનીકી વાતો.
1: हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो किसान अलग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं. हमारी कोशिश यही रहती है कि आप उनकी दास्तान को जानें और आप भी अपनी खेती किसानी को बेहतर बना सके. आज की हमारी इस कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले एक किसान से. बता दें आपको, ये पहले भी पारंपरिक खेती किया करते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि खेती किसानी में क्यों ना कुछ हटकर किया जाए, और इसी सोच के साथ ये आगे बढ़े. इन्होंने अपनाया प्राकृतिक खेती को, और आज के समय की अगर हम बात करें तो इनके फार्म में सब्जियों के साथ अन्य फसलों की खेती होती है, और ये बहुत ही सफलतापूर्वक बागवानी भी कर रहे हैं. तो आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का.
2: भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ कृषि है, और लगभग 65% की आबादी किसी न किसी रूप से कृषि क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं. कृषि उत्पादन के साथ ही ये लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है. भारतीय किसान विभिन्न परंपरागत और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि फसल की बीज उत्पादन, जल संरक्षण तकनीक, कृषि मशीनरी, सूखे से लड़ने के लिए बुनियादी ढांचे जैसे कि जल संचयन एवं समय पर समाधान की तकनीक. आज का किसान समय के साथ बदल रहा है और खेती किसानी को नया रूप दे रहा है. गाजियाबाद. जी हाँ, गाजियाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है जो NCR क्षेत्र में आता है. यहाँ के किसान शहरों के चकाचौंध वातावरण से हटकर गांव के वातावरण में रहना पसंद करते हैं. गाजियाबाद, जो कि अपनी कृषि और औद्योगिक सक्रियता के लिए काफी प्रसिद्ध है, यहाँ के किसानों ने कृषि को अपना मुख्य आजीविका स्रोत बनाया है. गाजियाबाद के किसान अपनी मेहनत और समर्पण के साथ भूमि की संपत्ति को सही ढंग से प्रबंधित करते हैं, और न केवल अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं. खेत में फसलों की देखभाल करते किसान हैं सूबे सिंह यादव, जो खेतों में दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और खुद में मगन रहते हैं. खेती की परंपराओं के बारे में बता रहे हैं आज के सफल किसान सूबे सिंह यादव जी.
3: पहले समय में हम पारंपरिक खेती करते थे, जैसे करते आए हैं, तो उस समय हमें सब्जी की, फल की ऐसे जरूरत पड़ती रहती थी कि क्या करे जाए. लेकिन गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा इनसे उब चुके थे. लेकिन धीरे धीरे हम सब्जी की तरफ मूवमेंट करा, हम सब्जी बोने लगे. सब्जी के बाद में कुछ नींबू के बाग लगाए हैं 5 बीघे में, तो उस नींबू के बाग से आमदनी बढ़ी. नींबू के बाग का हमने शुरुआत में, जैसे लागत के बारे में बताऊँ थोड़ी सी, तो 30,000 की लागत आई उसमें. जैसे उसमें पेड़ आए, कुछ मजदूर लगे, खाद लगा, तो उसमें वो होती रही. उसके बाद में जैसे भी वो चलता रहा, तो इसमें अब आमदनी, इसमें मसूर और मूंग ये सारी चीज़ बोते रहे, तो आमदनी की अच्छी आमदनी हुई इसमें. अब तीसरी साल में इसमें 45,000 के नींबू बिके पिछले साल. अब के साल को अब डिलीवरी करेंगे तो शायद और भी ज़्यादा बिकेंगे, तो ये भी अच्छा रहा. दूसरी है सब्जी के लिए. सब्जी में जैसे आलू बोए हैं, आलू के बाद में हमने पेठा बो दिया. पेठे में हमने मूली बीच बीच में जो 10 फुट का डिफरेंस है उसमें मूली बोई, और मूली के साथ में धनिया बोया. तो मूली और धनिया में उसकी लागत तो हमें वसूल हो चुकी है, बाकी अब पेठा रहेगा, पेठा चलता रहेगा इसमें, तो वो भी आमदनी बढ़ी है इसमें.
2: कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं. गाजियाबाद के किसान इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं. कृषि का क्षेत्र किसानों के लिए अनमोल है. गाजियाबाद के किसान विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित करते हैं, जिनमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, अरहर, मसूर, मिलेट्स और आलू शामिल हैं. आज के सफल किसान सूबे सिंह यादव भी खेती को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं. इनका मानना है कि खेती में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर खेती में नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं. इन्हीं सोच के साथ सूबे सिंह यादव आगे बढ़े और एक पॉली हाउस का निर्माण किया, जिसमें वे विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं.
3: पीछे जो पॉली हाउस है मेरे दिखाई हो रहा होगा, इस पॉली हाउस में हमने ये सोची कि भाई कुछ प्योद बनाने के लिए सिस्टम बनाए जाए इसके, जैसे तो प्योद बनाने के लिए मक्खी मच्छर दवाई की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए हमने नेट हाउस लगाने के बाद में हमें कीड़े मच्छर की इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, और इसमें बेहतरीन सब्जी भी होंगे तो सब्जी होते हैं। 6 महीने कम से कम टमाटर चल रहे हैं, आज इसमें मिर्ची की बढ़िया चल रही है, नर्सरी इसमें उगाते हैं, ये अपने पर्सनली अपने रिस्क के अनुसार हमने ये आमदनी के लिए बनाई। सब्जी हम और ले रहे हैं, टमाटर होगी, मिर्च होगी, खीरा होगा, घिया होगी, तोरी भी हैं, ये समय समय के अनुसार ये लगाए रखते हैं जिसमें चलती रहे। टिंडे भी हैं, भिंडी भी बोते हैं कभी, तो इन सब्जियों की खेती कर रहे हैं। आलू का सीजन के बाद धान और गेहूँ ये तो हमारी मेन क्रॉप है ही हैं, लेकिन सीजनेबली जैसे आलू बो दिए, आलू के बाद में सब्जियां बो दी, सब्जी के बाद कुछ चारा बो दिया, कुछ ऐसी सरसों की भी फसल साथ में चल रही है, तो ये सब सब्जियों का हमें ब्यौरा रखकर।
2: पॉली हाउस एक विशेष प्रकार की संरचना है जो फसलों के उत्पादन और संरक्षण के लिए डिजाइन की जाती है। ये एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है जिसमें उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता वाली फसलें उत्पन्न होती हैं। पॉली हाउस में फसलों की उत्पत्ति वातावरणीय प्राथमिकताओं के अनुसार नियंत्रित की जाती है। सफल किसान सूबे सिंह यादव भी पॉली हाउस के महत्व को समझ चुके हैं और इसके लिए भविष्य की रणनीति भी तैयार करके रखे हुए हैं।
1: यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान से हम जानेंगे कि इस दिशा में बढ़ने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इनोवेटिव फार्मर के सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आइए इन सब के बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए रुख करें हमारे सफल किसान का, उनसे जाने उन्होंने ट्रेनिंग के लिए किस ओर अपने कदम बढ़ाए थे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड उन्हें कब और किस लिए दिया गया था। आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान का।
1: किसान खेत में जी तोड़ मेहनत के साथ नवाचार को भी अपनाता है ताकि खेती में कुछ बदलाव लाया जा सके। इसी सोच के साथ सफल किसान सूबे सिंह यादव जी आगे बढ़े और नवाचार अपनाकर खेती में कुछ अलग करने की ठानी। सूबे सिंह यादव जी ने कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग ली और अन्य फसलों का उत्पादन करने लगे। इसके लिए इन्हें इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
2: सर, हमें 2017-18 में एक इनोवेटिव अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया, जिसका पूरा श्रेय केवी के मुरादनगर गाजियाबाद से को जाता है। वहाँ के डॉक्टरों ने एक थोड़ी सी बात हमें कही, हमने पहले सब्जी बोने के इरादे था और हम सब्जी के लिए तो तैयार थे, खेत खाली है हमारा, लेकिन उस समय उन्होंने कही कि भाई आपने मसूर दाल के लिए आपको दाल बोनी पड़ेगी हमारे डैमों के लिए। मोगी जी ठीक है, हम दाल बोएंगे और मसूर की दाल बोई हमने, लेकिन उनके बगैर बताए हमने उसमें बीच में नाली बना कर और हमने लो टनल में खीरा लगा दिए, क्योंकि हमारी प्लानिंग पहले से ही खीरे की ही। तो लो टनल में जैसे ही हमने खीरा लगाए तो वे 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद में देखने को केवी के डॉक्टर आए, तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या है मगोदी, ये तो आपके बगैर बताए हमने कर दिया, लेकिन देख लो अब चल जाए तो नगर नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। तो हमें और ज़्यादा अच्छा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद में हमें उसी खीरे में घिया की बेल लगा दी, घिया की प्योत बनाकर घिया के वो लगा दिए। जैसे ही लोटन नल को हमने कवर्ड करा, जैसे खीरा लगाया, तो उस समय उसके अंदर हमने पालक और धनिया दोनों बीच में नीचे नाली में डाल दिया, जिससे हमें पालक और धनिया से भी आमदनी हुई, खीरे की आमदनी हुई, खीरे के बाद में घिये से आमदनी हुई। तो हमारे यहाँ ICR पूसा की टीम आई, उन टीम ने ये इनोवेटिव अवार्ड के लिए वो करा, उसे ट्रेनिंग भी दी हमें, और उसके बाद में 18 मार्च 2018 को हमें एक अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें ट्रेनिंग भी देते रहे। अब वहाँ हम जाते भी रहते हैं, ट्रेनिंग भी लेते रहते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ 2 यूनिवर्सिटियाँ और हैं, जैसे KVK होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है हमारी मोदीपुरम में, वहाँ भी ट्रेनिंग लेते रहते हैं, जाते रहते हैं, डॉक्टर भी यहाँ आकर हमें ट्रेनिंग देते हैं और उनके भी अवार्ड से हम सम्मानित हुए हैं। यूनिवर्सिटी से भी, KVK से भी सम्मानित हुए हैं, ICR पूसा से भी सम्मानित हुए हैं, और जिले लेवल में तो हमें कई बार सम्मान हो रहे हैं। हमारी ये हमारी दिनचर्या रही है।
1: किसान को सही खेती तकनीकों की शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो अपनी खेती को सही और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित कर सकें। ये उन्हें अद्वितीय उत्पादकता और उत्पादकता में सुधार

0: मौसम के तापमान की वजह से हमने दूसरी 3 HP की और सोलर पंप लगाया, जिससे 6 HP से अब हमारी सिंचाई सोलर से ही हो रही है, संपूर्ण सोलर, घर की बिजली भी सोलर से कम कर। और उसके बाद में हम जैसे हमने गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ है, तो जैसे गोबर गैस प्लांट में हमने जैविक के तरीके से सैलरी को खेती में ही यूज कर रहे हैं, जो पानी के साथ में सैलरी को बहा देते हैं, तो जैविक विधि से उसे हो रही है। इसमें जीवा अमृत भी बना के डालते हैं और भी जैविक के जो भी प्रोसीजर हैं वो करके ही डालते हैं, जो जैविक खेती पर आधारित है पूरी संपूर्ण 4 एकड़ जमीन।
1: सफल किसान सूबे सिंह यादव जी खेती के सभी गुर को समझ चुके हैं। आज इनके फार्म हाउस में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। कृषि विभाग की मदद से सोलर पैनल सेट एवं ट्रैक्टर के साथ अन्य प्रकार के कृषि यंत्र भी मुहैया कराए हैं, जिससे उन्हें खेती किसानी में काफी सहूलियत मिलती है।
2: यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं।
3: बने

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका के बारे में, किस तरह से वो किसानों को जोड़ रहे हैं प्राकृतिक और जैविक खेती से।
1: प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों ही एक ऐसी पद्धति है जिसमें रसायनों का प्रयोग न करके घरेलू संसाधनों के उपयोग मिलाकर खेती में प्रयोग किया जाता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है एवं पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। इस प्रकार से किए गए खेती के प्रकार उन्नति के माध्यम से साथीकृत नवाचार और परंपरागत ज्ञान का मिश्रण प्रदान करता है। प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर जगनीश शर्मा।
2: हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में हमारे सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 30 दिवसीय सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जिसमें हम प्लस टू तक के जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती के ऊपर। सर्टिफिकेशन के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाई जाती है और उनको कहीं भ्रमण पर भी ले जाया जाता है। तो इस तरह से 30 दिन में उनको एक्सपोज किया जाता है सभी प्रकार के जैविक खेती में, प्राकृतिक खेती की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब उनसे उनको अवगत कराया जाता है। 20 लेक्चर्स रखे जाते हैं जो हमारे नेशनल लेवल के एक्सपर्ट होते हैं, वो चाहे साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों IARI के या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उनको हमने एम्पैनल और एक्सपर्ट्स को अपने पैनल में रखा होता है, उनको बुलाया जाता है इन ट्रेनिंग्स को करवाने के लिए। इसके साथ साथ हम

कंपाइलेशन करते हैं डिफरेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा वैलिडेटेड टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के फॉर्म में पब्लिश करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का न्यूज़लेटर भी है, बायोफर्टिलाइजर न्यूज़लेटर

0: में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। इन्होंने नवाचार तकनीकों एवं ज्ञान के साथ साथ कौशलों का प्रयोग करके खेती को एक नई ऊर्जा और प्रगति का क्षेत्र बनाया है। सूबे सिंह यादव की खेती में बदलाव का प्रमुख कारण उनकी निरंतर रुचि और उत्साह है, जो उन्हें नए और उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इनसे प्रेरित होकर अन्य किसान भी खेती को नए आयाम दे रहे हैं, जिससे खेती के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक सुधार हो सके।
1: से आरजे राकेश
2: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
1: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। तो सालो किसान भाइयों, हाव लई एक नानो ब्रेक अने हामली आपड़ा झाबवा जिला मा आदिवासी समुदाय भील मा जब लाडो पहिने अने तीन मा जो गीत गावे त्यू मजानु गीत हामली ने पासा भेला था हूँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी मा।

0: मिले हैं वहां पर विलुप्त होने की कगार पर पहुंची काला नमक की खेती को दोबारा से प्रोत्साहित करने का। जी हां, यहां पर एफपीओ से जुड़े जितने भी किसान हैं उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा काला नमक चावल की खेती करें। और आज हाल ये है कि काला नमक चावल की जो खुशबू है वो देश विदेश तक पहुंच रही है। और इसी एफपीओ से जुड़े हुए हैं रामचेत चौधरी जी, जिन्होंने इस कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो फिर आइए इन्हीं के सफर को जानने के लिए, काला नमक चावल की खुशबू को पहचानने के लिए और इसकी खेती की महत्ता को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का।
1: काला नमक चावल। जी हाँ, काला नमक धान से निकला काला नमक चावल। बात काला नमक धान की हो तो इस विशिष्ट धान के बारे में भी जानना जरूरी है। काला नमक चावल एक सर्वश्रेष्ठ सुगंधित एवं पौष्टिक गुणों वाला चावल है, जिसकी खेती पूर्वी उत्तरी उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसकी खेती का लिखित इतिहास करीब 3000 वर्ष पुराना है। काला नमक का इतिहास भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में प्रारंभ होता है। उस समय से अभी तक इस काला नमक धान की खेती नेपाल से सटे इस तराई इलाके में होती आ रही है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के रूप में जानी जाती है, लेकिन आज यहाँ का इलाका काला नमक चावल की खेती के लिए भी मशहूर है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 11 जिलों में काला नमक चावल की खेती की जाती थी, लेकिन कम उत्पादन के कारण किसानों से इसकी खेती करने से मुंह मोड़ लिया था, जिससे इसकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में जाने जाने वाला काला नमक चावल की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिक रामचेत जी के नेतृत्व में चल रहे किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से नाबार्ड ने एक परियोजना चलाई, जिससे काला नमक धान का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित PRDF की कोशिश के चलते काला नमक की खेती के लिए चलाई जा रही परियोजना सफल हो रही है। आज परियोजना से जुड़े 100 किसान 100 एकड़ में काला नमक की खेती कर रहे हैं। इस बारे में जानते हैं रामचेत जी से ही।
2: पहले किसानों को 100 किसानों को प्रशिक्षित किया गया कि आखिर रासायनिक खेती जो अभी तक करते आ रहे हैं उसके क्या नुकसान हैं। उनको प्रशिक्षित किया गया कि किस तरह से वो जो जीवामृत निमास्त्र ये सारी चीज़ें अपने घर पर बना सकते हैं, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से और बेसन और गुड़ से, वो भी आपको उनको जो है वो बताया गया। तो ये किसान प्रभावित हुए हैं और उनको दो फसल, ये जो क्षेत्र है यहाँ का कुशीनगर जिले का, ये धान और गेहूँ का क्षेत्र है। तो धान में हमने जो काला नमक की सर्वश्रेष्ठ

0: खेती के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के लिए किसानों को फिल्म भी दिखाई गई। इसके बाद से किसान जैविक खेती की ओर मुड़े और आज ये प्रशिक्षण के बाद जैविक खेती करते हुए काला नमक धान की खेती करते हुए लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित PRDF के प्रयास से कुशीनगर में काला नमक की खेती से किसानों की आमदनी दोगुनी तिगुनी हुई है। किसानों को मालूम हो चुका है कि जैविक खेती से आमदनी और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी होती है। नाबार्ड का प्रयास सफल रहा है।
1: खरीफ के मौसम में काला नमक धान की एक प्रजाति है, काला नमक किरण, और गेहूं की एक प्रजाति है जो रबी मौसम में कर रहे हैं, HD 2967। तो इनके लाभ इनको मिल रहे हैं और इनको प्रशिक्षित किया गया है, और कोई भी ये उपादान या इनपुट जिसको कहते हैं ये बाजार से नहीं खरीद रहे हैं, अपने घर पर ये लोग बनाते हैं, चाहे वो पोषक तत्व देने वाले जीवामृत हों या जो कीड़ों बीमारियों से बचाने के लिए सारे हैं, सब घर पर बनाते हैं। तो इनको इसी तरह इनकी लागत कम होती है क्योंकि उनको बाजार से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता। परियोजना के तहत इनको बीज भी दिया जा रहा है, तो एक तरह से कहिए कि लागत इनकी खाली मेहनत और इनके खेत की है, दूसरी कोई लागत इनकी नहीं है। जहाँ तक लाभ की बात करें तो इनका जितना भी उत्पाद है, पहले तो ये लोग स्वयं अपने परिवार को खिलाते हैं और जो भी कुछ मार्केटेबल सरप्लस है या बाजार में बेचने के लिए उनका सब का सब बिकवा दिया जाता है। अभी काला नमक की फसल इनकी कटी है और सारा का सारा उत्पाद इनका बिक चुका, खरीदा जा चुका, या जो कुछ इन्होंने अपने खाने के लिए रखा है वो रख लिए हैं।
2: यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे काला नमक चावल उत्पादक किसानों को मिलने वाले जैविक प्रमाण पत्र के बारे में, और साथ ही साथ इन किसानों के अनुभवों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब जानते हैं कि काला नमक चावल उत्पादक किसानों को जैविक प्रमाण पत्र जो मिलता है वो किस तरह से मिलता है और उसके लाभ क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ इसकी खेती कर रहे किसानों के अनुभव भी जानने हैं। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: प्राकृतिक खेती कर काला नमक उत्पादन करने वाले किसानों के उत्पाद को जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे उनके उत्पाद की कीमत बहुत अच्छी मिलती है। इस प्रमाण पत्र को मिलने के बाद किसानों को कई फायदे मिलते हैं। किसानों का उत्पाद खेत तक ही सीमित न रहकर एक ब्रांड बनता है। इस बारे में बता रही हैं काला नमक चावल का प्रमाणीकरण उपलब्ध कराने में मदद करने वाली अंजलि साहनी।
2: मैं पीआरडीएफ संस्था जो कि रीजनल काउंसिल है पूरे पूर्वांचल में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का परीक्षण करके उनको सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने में, जिसके माध्यम से वे बाजारीकरण करेंगे। भारत सरकार की एक योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना एवं नमामि गंगे, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में यह किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है कि किस तरह वो अपने खेती की जो मिट्टी मर चुकी है उसमें उसको जीवन दें और उसमें केचुए जो हम आंखों से देख सकते हैं ऐसे जीवाणुओं को उपलब्ध करें। इसके साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, नव युवक ही नहीं जो किसान है वो भी अपनी आमदनी दुगनी से तिगुनी कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारे किसान सिर्फ खेतों तक ना रहें, वो बाजार तक पहुंचे और अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं हमारी संस्था की, तो हम एज ए रीजनल काउंसिल किसानों के खेत पे जो धान या चावल जो भी उत्पादन वो लगाते से किसान में अपने खेत में लगाते हैं और जो भी उनसे उपज निकल कर आती है उसके बाजारीकरण के लिए ये सामान्यतः मांगा जाता है कि ये जैविक है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है। मान लीजिए अगर मैं ही 10वीं पास हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा कि आप 10वीं पास हो, इसका क्या साक्ष्य है मेरे पास, तो मुझे अपना 10वीं का रिजल्ट दिखाना होगा। उसी तरह जब किसान से पूछा जाता है कि आपका जो जैविक उत्पाद है वो जैविक है या आप सिर्फ मुंह से कह रहे हैं, इसके लिए हमारी संस्था जो रीजनल काउंसिल है ये प्रमाण पत्र उपलब्ध कराती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 साल का प्रोसेस होता है। इसमें प्रथम और द्वितीय वर्ष में पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने जो आपका प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेच तो सकते हैं, लेकिन ये बताते हुए कि आपका प्रोडक्ट अभी जैविक नहीं हुआ है, जैविक होने के क्रम में है। लेकिन जब आपका तृतीय वर्ष शुरू हो जाता है और वो अंतिम क्रम में आ जाता है 3 साल पूरे होने पर, तो आप अपने उत्पाद को जैविक पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक के नाम से बाजार में बेच सकते हैं।
1: खेतों में लगी फसल को परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत उत्पादित जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र मिलने के बाद काला नमक चावल का बाजारीकरण बेहद आसान होता है और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होती है। इस बारे में बता रही हैं अंजलि साहनी।
2: हमारे जो समूह हैं उनका नाम है, समूह का नाम दिया गया है पंजीकरण नंबर, कि जिसके माध्यम से आप इसकी पूरी जानकारी एवं इतिहास देख सकते हैं। उनका गांव, जनपद, समूह द्वारा उत्पादित जो उत्पाद है उसका नाम, किसान का नाम, और ये जो हमारे उत्पाद हैं 4 उत्पाद आप इसमें देख सकते हैं, गेहूं, चावल और दालें। यहाँ भी पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो लगा हुआ है, जिसका अर्थ है कि ये पूर्ण रूप से जैविक हो गया है। 3 साल इसको पूरे हो चुके हैं और ये उत्पाद अब जैविक होने के साथ साथ अब बाजार में बिकेगा और किसान की आमदनी दुगनी होगी। नीचे यहाँ पे कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, क्योंकि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में आता है इसलिए यहाँ पर कृषि विभाग उत्तर प्रदेश और हमारी संस्था का नाम लिखा हुआ है। ये उत्पाद ऐसे बाजार में बेचा जाता है ताकि जो भी उपभोक्ता इसको खरीदे वो इसके साथ साथ इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं, और अगर किसी को इससे संबंधित
1: करा रहे हैं पीआरडीएफ से जुड़े देवेंद्र पटेल। देवेंद्र पटेल बताते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर युवा अपना भविष्य बना सकते हैं और बिना पैसे लगाए सीधे उपभोक्ता से जुड़ सकते हैं।
3: हम लोग जो है कि काला नमक की मार्केटिंग करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और जो कि सरकार सपोर्ट भी करती है कि आप जो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए, और सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती है कि आपके प्रोडक्ट को लोग जाने। पीआरडीएफ भी जो है कि किसानों से डायरेक्ट बाय करती है और उनका जो है कि मार्केटिंग करती है, और इनके एफपीओ के थ्रू जो किसान संगठन है जो अपने एफपीओज बनाए हुए हैं उनके थ्रू भी इसका मार्केटिंग करती है। लेकिन सबसे जो बेस्ट रहता है कि आप जो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इसका जो है कि मार्केटिंग

0: करते हैं, इसके वजह से आपका प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुंचता है, जो एंड कंज्यूमर है उनके तक पहुंचता है और वो सीधे आप उनसे जुड़ पाते हैं।
1: प्राकृतिक और जैविक खेती से उत्पादित काला नमक और दूसरे प्रोडक्ट से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। खेत की दशा और किसानों की आमदनी बेहतर हुई है। नाबार्ड की मदद को किसान बेहद उत्साहवर्धक मानते हैं। नाबार्ड की परियोजना के बारे में बताते हुए किसान कहते हैं,
2: मैं नाबार्ड से जुड़ा हूं और इसमें मैं काला नमक खेती के बारे में मुझे अच्छी जानकारी दी गई है और मैं उसको करता हूं विधिवत रूप से और इसमें लागत भी कम पड़ती है, बहुत ना के बराबर है और उसे रासायनिक चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं और इसको काला नमक धान के ऊपर बताया गया है और मैं इसी को करता हूं और खाता भी हूँ, इसको पूरे परिवार को भी खिलाता हूँ और जो है कि इसके बारे में डॉक्टर चौधरी साहब के द्वारा मुझे पूरा दिशा निर्देश दिया गया है कि मैं ऐसे ऐसे करना है, उसी को मैं फॉलो करता हूँ और उससे मुझे बहुत लाभ है और इसको आगे भी और भी बढ़ाऊँगा।
3: यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कुशीनगर जैसे इलाके में काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाबार्ड के क्या क्या प्रयास रहे और साथ ही साथ नाबार्ड के अधिकारियों से जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इसकी खेती के अलावा और भी ज्यादा जो अन्य उत्पाद हैं उनकी खेती के लिए कैसे किसानों को प्रोत्साहित किया है।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आइए अब आपको बताते हैं कि कुशीनगर में नाबार्ड के क्या प्रयास रहे जिससे काला नमक चावल की खेती को यहां पर बढ़ावा दिया जा सका। आइए जानते हैं कि और कौन से उत्पाद हैं जिनकी खेती को यहां पर प्रोत्साहित किया जा रहा है।
1: पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और यह संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों से, किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। नाबार्ड ने भी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के नुकसान से किसानों को परिचित कराया है और उन्हें प्राकृतिक व जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जिससे खेत और किसानों की दशा में सुधार आया। इस बारे में कुशीनगर में कार्यरत नाबार्ड के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रदीप कुमार यादव बताते हैं।
2: आज इस आधुनिक युग में अंधाधुंध कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है। जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग ना करके हम नीमा शास्त्र अग्निशास्त्र का प्रयोग करके जो है कीट को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई रसायन का प्रयोग हम पौधों पर करते हैं तो पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे हमारी मिट्टी भी खराब होती है, क्योंकि मिट्टी में उपस्थित सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक नीम शास्त्र और नेचुरल जो भी हमारे पास कीटनाशक है उसका प्रयोग करें। अगर क्रॉप में फसल में किसी भी फसल में कोई अगर रोग लगता है तो उसमें हम छाछ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि छाछ में क्या होता है, ये छाछ के प्रयोग करने से जो भी रोग लगने वाला है वो उसके जो है स्पोर को एक्सेप्ट नहीं करने देता है।
1: खेतों में जैविक अनाजों के उत्पादन और प्राकृतिक खेती के लिए नाबार्ड लगातार प्रयास कर रही है। नाबार्ड कृषि के मामले में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। किसानों को जानकारी देने के लिए नाबार्ड के अधिकारी भी खेत तक पहुंच रहे हैं और किसानों के उपज की मार्केटिंग में भी मदद कर रहे हैं। नाबार्ड के DDM सूरज शुक्ला कहते हैं कि जल्द जैविक खेती से उत्पादित उत्पाद रासायनिक मदद से उत्पादित उत्पाद के बराबर पहुंच जाएगा। आइए इस बारे में नाबार्ड के DDM सूरज शुक्ला से ही जानते हैं।
3: अभी ये जो परियोजना है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2021 में स्वीकृत की गई थी। यह 3 वर्षों की परियोजना है जिसमें कि कुशीनगर जिले के कप्तानगंज ब्लॉक के 4 गांवों में 100 किसानों को चिन्हित करके और प्रति किसान 1 एकड़ यानी कि 100 एकड़ में प्राकृतिक खेती के माध्यम से धान और गेहूं के उत्पादन से जुड़ी हुई ये परियोजना है। इसमें नाबार्ड अपनी व्यय करके PRDF संस्था के साथ मिल करके ये प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से भी अच्छा उत्पादन किसान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के उत्पादन से ना केवल भूमि की हास कम होगी बल्कि स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव जो रसायनों का पड़ता है वो इसमें नहीं पड़ेगा। इस परियोजना के माध्यम से किसानों को तमाम तरह की सहायताएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि बीज, ट्रेनिंग, उनका एक्सपोजर विजिट अन्य संस्थाओं में, उनके एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर स्थापित किए गए हैं जो कि समय समय पर उनको गाइडेंस प्रदान करते रहते हैं कि उनको कोई अगर यदि रोग लग जाता है तो उससे कैसे डील करना है, अगर सिंचाई किस प्रकार से करनी है, किस समय कौन सा चीज़ें डालनी है खेत में, इन तमाम तरह की जो सहयोग हैं ये 3 वर्षों के लिए हैं। इसके अलावा नाबार्ड की तरफ से भी कम से कम 3 महीने में एक बार इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि इन खेतों में किस तरह से प्रगति हो रही है। इसमें जो हमारा अनुभव है वो यह है कि प्रथम वर्ष चूंकि ये परियोजना लगभग 3 वर्षों से चल रही है, प्रथम वर्ष जरूर कुछ जो उत्पादन में कुछ कमी थी रसायन से और प्राकृतिक खेती में शिफ्ट करने पे, लेकिन जैसे कि अभी तीसरा वर्ष चल रहा है, अब धीरे धीरे वो जो गैप है वो काफ़ी कम हो गया है और हमें यह उम्मीद है कि अगले 1 वर्ष या 2 वर्षों के अंदर जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो उत्पादन है वो रासायनिक खेती के माध्यम से उत्पादन के लगभग बराबर पहुंच जाएगा। और तो इसका मतलब जो पूरा साइकिल है वो 3 से 4 वर्षों का है। यदि 3 से 4 वर्षों तक किसान प्राकृतिक खेती करते रहें तो उनको रसायनों के उत्पाद प्रयोग की जरूरत बिल्कुल समाप्त हो जाएगी।
1: केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए FPO यानी किसान उत्पादक संगठन की अवधारणा बनाई है। इस संगठन में सदस्य किसान ही होते हैं। किसान उत्पादक संगठनों के पीछे अवधारणा ये है कि किसान जो कृषि उत्पादों के उत्पादक हैं समूह बना सकते हैं और भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत कर खेती से जुड़ी गतिविधियां जैसे फसल उत्पादन, विपणन, मार्केटिंग आदि कर सकते हैं। इसमें सरकार संगठनों की आर्थिक मदद भी करती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बने इस FPO को नाबार्ड ने काला नमक चावल की प्राकृतिक खेती के लिए चुना, जिसका फायदा किसानों को हो रहा है। ऐसे में दूसरे क्षेत्र के किसान भी सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसान अपनी आमदनी को FPO के माध्यम से दोगुनी चौगुनी कर सकते हैं।
4: तो किसान भाइयों, यो तो आज नो कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आज ना खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आप युवा थामली सब्जियों की खेती में सफल किसान नी वात्यो। कार्यक्रम खेतीबाड़ी नी बीजी कड़ी में आप युवा थामली काला नमक चावल अने किसान उत्पादक संगठन केवी रीते काम करे ये वात्यो आज आप इना कार्यक्रम में सांभळ्यो। किसान भाइयों, हम रोज तमारी हारू एवी असल थी असल तकनीकी खेती नी जानकारी लावी से अने आशा करी से कि हमारा झाबवा जिला ना किसान भाई ये बड़ी बातें सांभळे अने आपड़ी खेतीवाड़ी में सुधार करे अने असल मोटो मुनाफो कमाई सके। तो किसान भाइयों, आ सारू वचे इतनी बात केम की हाउ समय थाई गयो से बीजा कार्यक्रमों नो। हूँ RJ राकेश लू से तमारी देखी इजाजत, पण तमु जाजो मती कहता हमलता रेजो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबवानी आवाज तमारा ज रेडियो खतवार RJ राकेश नी हाथे।

आइए दोस्तों, एक बिल्कुल ही नए सीजन के साथ मैं समीर और नितिन हाजिर हैं आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रोग्राम अब नोटिस किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है। कई प्रोडक्शन हाउसेज हमें अप्रोच कर रहे हैं हमारे टैलेंट्स की गायकी को सुनकर। ये बहुत ही अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का और प्रोफेशनल सिंगर्स बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को आप सबके ही कोलैबोरेशन से। It's my आज के कलाकार के इस बेहद बेहद स्पेशल एपिसोड में दोस्तों आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। वी आर ऑनर्ड, वी आर सीरियसली हैप्पी दैट हमारे साथ जो टैलेंट है, जो कलाकार है, जो गायिका है, वो बहुत दूर देश से है। मैं अभी इस राज को नहीं खोलूंगा। हमारे साथ हैं विन्नी जी, हम उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से उनका परिचय जानेंगे एंड विल कम टू

0: नो विनी जी कहाँ हैं, कौन हैं, क्या करते हैं? विनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। हमारे सुनने वालों के लिए जो कि बहुत एंग्शियस हो रहे हैं मेरी ही तरह, अपना परिचय दीजिए, कहाँ हैं आप, कौन हैं आप, क्या करते हैं?
1: थैंक यू सो मच समीर जी फॉर हैविंग मी इन द शो। एंड मैं बहुत दूर नहीं हूँ, मैं नजदीक ही हूँ। आई रिसाइड इन मलेशिया, बट मैं हार्ड कोर इंडियन हूँ। मेरा निकनेम विनी है, सब मुझे विनी के नाम से जानते हैं क्योंकि विनी प्रोनाउंस करने में इजी है। वैसे मेरा नाम है विनती थापा,
0: विनती मैं देहरादून की रह
1: जी विनती थापा
0: okay.
1: और मैं रहने वाली हूँ देहरादून की और हमारे थोड़े से रूट्स नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, शिलोंग। तो मैं ज्यादा क्या कहते हैं, मतलब इंडिया में साल में एक दो बार ट्रैवल करती हूँ, पेरेंट्स से मिलती हूँ, बट अभी मैं मलेशिया में रहती हूँ।
0: बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो आपने सुना कि विनती थापा जी ओरिजिनली भारत से हैं और देहरादून से बिलोंग करती हैं, लेकिन अभी मलेशिया में हैं। फैबुलस। तो चलिए दोस्तों, इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम को शुरू करते हैं विनी जी के ही गाए हुए इस बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से गीत से।